0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक दूसरा लाभ की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ, चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ, शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित

होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति अग्निसार भस्त्रिका भ्रामरी अग्निसार, क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम कपालभाति अग्निसार भस्त्रिका भ्रामरी, यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस स्फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित, जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठ करके योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है
और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं। अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है, वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है। इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, भाभी हैं या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जाने और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं।
और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है, या हम कहें ऐसी अवस्था है, जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित होकर के हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट, या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्रित करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती इस पर लगाते हुए, एकाग्रचित होकर के लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे तो हमें कुछ भी दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हमें श्वास लेने में, अगर हमने अधिकतर लोगों को देखा है कि वह जल्दी जल्दी श्वास लेने लगते हैं और प्राणायाम के बाद में उन्हें कुछ दिक्कतें इस प्रकार की होने लगती हैं, जैसे तेज धूप में निकल के जाते हुए उन्हें श्वास का जो चलन है वह अपने आप में इस तरीके से प्रतीत होगा जैसे जल्दी जल्दी श्वास चल रही है, या श्वास भारी होने लगती है, या यदि हम भोजन करते हैं उसके बाद श्वास का भारीपन हो जाना, फेफड़ों में भारीपन लगना। तो हम पहले से ही यह सावधानियां करेंगे तो हमें यह दिक्कतें नहीं आएंगी। श्वास अपने ही स्वतः जिस तरीके से आपको लगे कि हम यह हमारे लिए सावधानी और हमें आसानी होगी, उस तरीके से हम श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। प्राणायाम को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं। इनहेल यानी श्वास लेंगे, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, इनहेल, रेस्ट, यानी हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते समय हम रेस्ट बोल रहे हैं, यानी हमें आराम की स्थिति में आ जाना है। यह प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है। इस प्राणायाम में श्वास की गति नियंत्रित रूप से सामान्य स्थिति में होनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी किया। अगर आपको समय का बोध है, यानी समय बोध का मतलब हुआ हम अपनी घड़ी में 20 मिनट यानी 15 मिनट यानी 10 मिनट यानी 5 मिनट, हम अपनी सुविधा अनुसार 5 मिनट से शुरू करते हुए एक टाइमर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हम टाइमर लगा सकते हैं अपनी मोबाइल में, अपनी घड़ी में, ताकि आपको यह प्राणायाम या कोई भी आगे प्राणायाम करने में सावधानी और सुरक्षा एवं आपको आसानी होगी। जैसे हमने अगर टाइमर लगा दिया तो वह टाइमर जो आपने टाइम सेट किया है उसी पर करके वह टाइमर स्टॉप होगा और आपका वह प्राणायाम एक नियमित रूप से, एक नियमित गति से होता रहेगा। बच्चों के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग में 2 मिनट से हम करेंगे, जैसे कोई भी प्राणायाम हो, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, ध्यान योग मुद्रा हमने आज टॉपिक लिया हुआ है, हम आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ध्यान और भस्त्रिका, यह दोनों प्राणायाम हम बड़ों के लिए 5 मिनट जैसा कि हम लोगों ने अभी किया, और बच्चों के लिए 2 मिनट। हम फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आएंगे। जैसे श्वास हम ले रहे हैं और श्वास को छोड़ रहे हैं, तो आइए अब हम जानेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के करने से हमारे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, किसी न किसी को कोई ना कोई परेशानी शरीर से लेकर के, रोगों को लेकर के होती रहती है, जैसे दमा, अस्थमा व फेफड़ों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह आपकी एकमात्र भस्त्रिका प्राणायाम करने से दूर होती है। और यह प्राणायाम करने से जितनी भी आपको दिक्कतें होंगी श्वास से रिलेटेड, हम श्वास ले रहे हैं, श्वासों से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वह आपकी दूर होगी। जैसे फेफड़ों से संबंधित हमें श्वास लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें जल्दी जल्दी कोल्ड हो जाता है, हमें जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम हो जाता है, तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी भस्त्रिका प्राणायाम को नियमित रूप से करने में
करते रहने से दूर होती है। सूक्ष्म व्यायाम करते समय यदि अगर हम भस्त्रिका प्राणायाम को उस गति में हम समाहित कर रहे हैं तो हमें इसका लाभ पूर्णता दुगना होकर के मिलने लगता है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, जैसे हमने आपको अभी बताया कि श्वासों से नियमित रूप से करने से श्वासों की गति को संचालित करने के लिए यह प्राणायाम है, तो हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम को आपके सामने, आपके साथ में हमने आज भस्त्रिका प्राणायाम किया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आज आपने यह अभ्यास हमारे साथ किया और यह अभ्यास आपको समझ में आया होगा और हम इसको नियमित रूप से इस अभ्यास को करते रहेंगे। और यदि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करने में कोई भी परेशानी हो तो आप जैसे प्रश्नोत्तरी में आप हमसे इनबॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने आज बात करी

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या बात है, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉ का। जितना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 99.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई आज है फ्राइडे और फ्राइडे स्पेशल मॉर्निंग में आपकी सभी को विशेज हमारी तरफ से, यानी मॉर्निंग जॉ का अर्जुन नान की तरफ से। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 99.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: वैसे यार ये जितने भी हॉरर मूवीज के सॉन्ग्स हैं मुझे लगता है काफी रोमांटिक होते हैं और काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं अपना मुझे तो लगा ये 1920 एविल रिटन का सॉन्ग है और ये बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग है। यस ऑफ कोर्स लेजेंडरी सिंगर सोनू निगम की आवाज में बहुत पसंद आता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो और आज है चूंकि फ्राइडे इसलिए और भी ज्यादा स्पेशल हो जाता है। सो आपका वेलकम करने के बाद अब आपको सीधे ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और आज का थॉट ऑफ द डे आपसे कुछ कहना चाह रहा है, इवन एक अल्तजा है, एक बात है जिसको आपको हमेशा भी याद रखना है। अब से अपने आसपास अगर आप देखते हैं ऐसा कुछ तो आपको ये थॉट याद आ जाना चाहिए। थॉट क्या है चलिए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे आखिर बात क्या कह रहा है? आज का थॉट ऑफ द डे बहुत अहम बात कह रहा है। थॉट कहता है कि किसी का अकेला होना, गौर फरमाइएगा, किसी का अकेला होना सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की गलती है। जी हाँ, किसी का अकेला होना, किसी का अकेला होना सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की गलती है, ऐसा कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। कोई अकेला है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो अकेला ही रहना पसंद करता है या वो अकेला। अक्सर हम लोग कहते हैं भी हैं कई लोगों को कि भाई वो अकेले रहना पसंद करती है, वो अकेले रहना पसंद करता है, या इवन अपने बारे में भी समटाइम्स हम यही कहते हैं कि हमें अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। वजह क्या है कि शायद हम उस शख्स को इतना अपनापन फील ही नहीं करा पा रहे हैं जिसकी वजह से उसको अकेलापन सा महसूस हो रहा है। जी बेशक, यानी अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो ये नाकामयाबी हम सब आसपास रहने वालों की है। उसको उतना अपनापन फील ही नहीं करा पाया, उतना सेफ। इवन अब तो हम अपनी कोई भी चीज़, कोई भी बात कहने से डरते हैं, क्योंकि आप आज अपनी कोई बात शेयर करते हैं, आपको लगता है आपके क्लोज रिलेशंस हो गए हैं, आपको सामने वाला मान रहा है, लेकिन कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि वो उन चीज़ों को फैला दिया जाता है, जैसे आपसे रिलेशन अजीब होते हैं, जैसी दुनिया बनती हैं उसको अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है, और इसीलिए शायद आप डर जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपकी लाइफ में कोई सच में कायदे का बंदा आता है तो फिर आप उस पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि आपने पहले ही देखा था जिस पर यकीन किया था उसने न जाने आपको जो बात बताई गई थी, आपने बहुत ज़्यादा कोर हार्ट से वो न जाने कितने लोगों के बीच गलत ढंग से पेश की गई, और उसी वक्त आपने ठान लिया कि अब किसी और से शेयरिंग नहीं करनी है। सो इस तरह से कुछ एक्सपीरियंसेस के वजह से जो सही रिलेशन हमको इन फ्यूचर मिलते हैं उस पर भी हम डाउट्स करने लग जाते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि भाई अकेलापन जो है वो हमारी नाकामी है, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा, हम उसको सेफ फील कराएं और हम उसके अकेलेपन में भागीदारी लें। क्यों? क्योंकि ये हमारी भी नाकामी है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल पर्सन तो हैं ही।

हमारी सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और यही कहना चाह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे, क्योंकि आज का थॉट कहता है किसी का अकेला होना सिर्फ उसकी नहीं हम सबकी गलती है। इस थॉट को सुनने के बाद आप इस थॉट से कितना रिलेट कर पा रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं, चलिए फटाफट से बताइए कि आपको क्या समझ आया है इस थॉट ऑफ द डे से। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज है फ्राइडे मॉर्निंग स्पेशल शो, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके साथ है। थॉट पर चर्चा हो गई है और आपने ट्यून कर लिया है रेडियो गार्डन से, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के एप्लीकेशन से, और साथ ही साथ अपनी कार में फ्रिक्वेंसी से। तो चलिए भाई, आप किचन में हो या खाना खा रहे हो या ऑफिस निकल रहे हो या रास्ते में हो या तैयार हो रहे हो, आप सभी की सुबह और दिन अच्छा हो।

0: yes, yes. Say it again.
1: अरे भाई बस इतना छोटा सा तो मंत्र है और यही तो बोलना है आपको, यू आर द बेस्ट, ऑफ कोर्स आई एम द बेस्ट। और ये किससे बोलना है? नहीं नहीं नहीं नहीं, किसी और से नहीं, खुद से ही बोलना है ये। और ये एक करेगा काम मंत्र की तरह। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग जॉगर जो इतना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो

0: So fam, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned, so अब चलते हैं सीधे ये देखने के लिए कि भाई राबता आपने किया है तो क्या मैसेजेस आए हैं, थॉट को लेकर क्या रिएक्शंस हैं और कैसी रही आपकी सुबह। चूंकि आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से, तो चलिए देखते हैं भाई एप्लीकेशन की चैट पर और डायरेक्ट लाइव शो में किन किन लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भाई अगर हम मैसेजेस की बात करें तो हम मैसेजेस की तरफ आ गए हैं और कमल नयन जी का पहला मैसेज आया है आरजे अदनान से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कमल जी, कैसे हैं आप? और रात के सितारे जो ख्वाबों में संजोए थे, कमल जी ने वो बिखेर दिए हैं चैट बॉक्स पर एक मैसेज में। वाह, क्या शख्सियत है आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश मौजूद हैं, मुकेश यादव गोंडा से लिखते हैं, गुड मॉर्निंग से दिल से, गुड मॉर्निंग टू यू मुकेश, आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। प्रशांत सोनी मौजूद हैं, आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रशांत। एंड सविता दुबे जी मौजूद हैं, लिखती हैं, सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। मुस्तफ़ा फ्राम सऊदी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम है मुस्तफ़ा मॉर्निंग के स्पेशल शो में। मीनू जी लिखती हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी वेलकम करते हैं। एंड आशु जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने थॉट पर अपने रिएक्शंस दिए हैं, सो क्या रिएक्शन दिया है आइए बताते हैं भाई। थॉट को लेकर के जो कहना है सुनना है उसको मुकेश ने बताया, नाइस थॉट, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमने इसको डिफाइन करके बताने की कोशिश भी की कि किस तरह से ये जो थॉट है वो कितना प्यारा थॉट है कि अगर कोई अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये गलती उसकी नहीं, आप और हम सब की गलती है। तो इतना सेफ़ क्यों नहीं फील करा पाएँ कि हम अपने आसपास के लोगों को इतना सेफ भी फील नहीं करा पाते, हम सिर्फ अपनी तारीफ बस यूँ ही करा करते हैं कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये आज से ड्यूटी लगा लेते हैं हम सब लोग अपनी कि हमारे एटलीस्ट जो आसपास रहने वाले वो हमसे सेफ फील कर सके, अपनी बातों को कह सके, और हमारा भी काम हो कि लाइफ टाइम ता उम्र तक हम अपने अंदर उनके बातों को, उनके राज को दफन कर दें और वो कहीं और ना चाहे, तो शायद इंसान उस पर बिलीव कर पाएगा। सो शुभम शर्मा मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड यस, आप सब लोग आ चुके हैं गोंडा एफएम के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, जो कि मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान लेकर आते हैं, जिस पे आपको थॉट ऑफ द डे के साथ आपके दिन की शुरुआत के अलावा आपको जॉब अपडेट, गोंडा की सिटी अपडेट, हिस्ट्री, तो समटाइम्स क्या कुछ चल रहा है देश में बेहतरीन, और क्या कुछ चेंजेस हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं असर डालने वाले, इन सब बातों को लेकर आते हैं मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, वो भी एंटरटेनिंग अंदाज में। तो चलिए भाई, इसी अंदाज को जारी रखते हैं और चलते हैं दिल धड़काने की तरफ, और ये है दिल धड़कने दो मूवी से पहली बार।

0: हाँ जी, पहली बार आप भी सुन लीजिए भाई, और आज तो हम काफ़ी कुछ सुनाने और बनाने लाए हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में। सो फिलहाल आपको बहुत कुछ याद दिलाने वाले हैं, क्योंकि आज से ही लेकर काफ़ी पीछे तक आपको लेकर के जाने वाले हैं और काफ़ी कुछ हम बताने वाले हैं। फिलहाल अब चूँकि अगर मॉर्निंग में भी आप स्ट्रेस्ड हैं और स्ट्रेस लेकर बैठे हैं, तो चलिए हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि भाई किस तरह से अगर आप मॉर्निंग अपनी सही रखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक काम बिल्कुल मत करिएगा, बहस करना। बहस बहुत बेकार है। बहस करने का मतलब है कि आपने अपना लेवल गिरा लिया है। सो देखिए, बहस करने से दिमाग वाले जो हैं उसको नुकसान भी हो जाता है। सो दिमाग को क्या नुकसान होता है बहस करने से, आइए ये भी आपको बता देते हैं, ताकि आप आज का दिन ऐसे ही लेके जाओ और आप कहें कि भाई बहस तो नहीं करने वाला, कुछ भी कोई कर ले सामने, बहस तो नहीं करने वाले, क्योंकि बहस से होता है बड़ा नुकसान।
1: Now you're listening, Good Morning Kota, with your favorite, RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बताने वाले हैं कि बहस से कैसे नुकसान होते हैं। देखिए, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर आप तू तू मैं कर रहे हैं, तू तू मैं समझते हैं ना, बहस और बहस समझते हैं ना, तू तू मैं, हाँ वही है। तो बहस के दौरान जो है बॉडी में फाइट मोड में ये चला जाता है। सो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो है वो बढ़ते हैं, जिसमें होता ये है कि अगर आपको सिम्टम्स से बताएं तो दिल तेज़ धड़कने लगता है, इसके साथ ही बेचैनी बढ़ने लगती है, माइंड जो है वो हैवी लगने लगता है। ये क्या है? ये सारे लक्षण हैं स्ट्रेस हार्मोन्स के। और ये कब रिलीज़ होते हैं? जब आप तू तू मैं करते हैं या फिर आप बहस करते हैं। बात देखिए, सो ओवर थिंकिंग से शुरू हो जाती है। जी हाँ, बहस ख़त्म होने के बाद सिलसिला ख़त्म नहीं होता, एक नया सिलसिला शुरू होता है जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। सो बहस ख़त्म होने के बाद भी दिमाग बार बार वही बातें दोहराता है, मुझे ये बोलना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कहा, ये बात क्यों कही, मैं ऐसा भी तो बोल सकता था, मैं ऐसा कह सकती थी, ऐसा आता है ना। सो इससे क्या है, माइंड लूप बनता है। अब माइंड लूप यानी आप नहीं भी चाह रहे हैं बट आपने अपने दिमाग को घन चक्कर बना दिया है और उसी जगह नाच रहा है तब से। करना क्या होता है? देखिए, प्रॉब्लम ये होती है कि इससे फोकस भी कमज़ोर हो जाता है। सो दिमाग की जो एनर्जी है बहस में खर्च हो जाती है, फिर काम, पढ़ाई या रोज़मर्रा का जो भी आप डेली रूटीन में वर्क करते हैं, जो टास्क करते हैं, उस पर फोकस करना मुश्किल होने लगता है। इससे ये प्रॉब्लम होती है। और एक जो बड़ा इम्पैक्ट आता है जिसको आपको बनाए रखने पे हम हमेशा कहते हैं भाई इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, वो है मेंटल पीस, वो ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, छोटी बहस भी पूरे दिन मूड ख़त्म और ख़राब कर सकती है। सो अननेसेसरीली जो है नेगेटिव स्टेट में रहता है माइंड, और इस तरह से कुछ ऐसी बातें भी होती है जो आपको परेशान करने वाली होती है। और ऑफ कोर्स क्या होता है, सो देखिए मेंटल पीस तो ख़त्म होती है, इसके अलावा आपकी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, गुस्से में दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है वो स्लो हो जाता है और इसीलिए इम्पल्सिव बातें निकल जाती है जिसका बाद में अफसोस भी होता है। कुछ ऐसी बातें जो दिमाग उस वक्त रही आपको बोलना था लेकिन आप बोल के निकल जाते हैं, बाद में ऐसा लगता है। नेगेटिव थिंकिंग बढ़ती है इवन आपकी। सो बार बार बहस करने से दिमाग जो है हर सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट ढूंढने लगता है। कोई भी सिचुएशन होगी आपको लगेगा अब यहाँ पे कभी क्या हो सकता है, यहाँ बहस हो सकती है, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ। इस चक्कर में आप सब कुछ खो देते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट आप ढूंढने लग जाते हैं, धीरे धीरे नेगेटिविटी आपकी हैबिट बन जाती है, हर चीज़ में फिर प्रॉब्लम है। इसके अलावा स्लीपिंग पर भी असर पड़ता है, रात को वही बातें वापस से याद आती है जिससे फिर ओवर थिंकिंग करते हैं, और इससे क्या है, निंदी रानी जो भी है वो भी ख़राब हो जाती है। सो निंदिया भी नहीं आती है। तो करना क्या है? अच्छा, ये नहीं पता, चलिए हम बताते हैं करना क्या है, लेकिन उससे पहले इस गाने को सुनना है, कूल होना है, बहस से दूर होना है, वापस आना है, फिर हम बताते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन में आपको खुद को बैलेंस रखना है तो आखिर आप क्या कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती है। बेशक सही सुना आपने, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हाँ जी, तो आखिर कैसी बेसब्रियाँ, ये कभी सोचा है? नहीं, चलिए तो हम बताते हैं आखिर कैसी बेसब्रियाँ हैं। वैसे फ़िलहाल ये गाना सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा, और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा बेहतरीन जो हम बातचीत कर रहे थे, याद है ना, स्ट्रेस हार्मोन कैसे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ अब बताने वाले हैं कि आखिर इन पर काबू कैसे किया जाए, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करके आप इन पर काबू कर सकते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

वैसे उससे पहले आशु मिश्र जी का एक कमेंट आया है, सर जी लखनऊ में मौसम बहुत ही ख़राब हो रखा है, सुबह मैं लखनऊ से निकल के आया हूँ और एकदम सब सही था, ये मेरे सामने क्यों नहीं होता, बल्कि मैं मिस कर रहा था यार कि निकलते टाइम अगर मौसम थोड़ा चेंज हो गया तो मज़ा आएगा। खैर चलिए, आपको ही मुबारक हो ये मौसम। और हमने बताया स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं तो बॉडी जो है वो फाइट मूड में चली जाती है, कार्टिसोल और एड्रेनालिन जो है वो बढ़ते हैं जिससे दिल तेज़ धड़कता है, बेचैनी बढ़ती है और दिमाग हेवी लगता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, माइंड लूप पर चला जाता है, फोकस करने की पावर कम हो जाती है, जो रोज़मर्रा का काम है वो काफ़ी कम हो जाता है, मेंटल पीस ख़त्म हो जाती है, फैसला लेने की पावर ख़त्म हो जाती है और नेगेटिव थिंकिंग भी बढ़ जाती है, इवन सोने पर भी असर आता है कि सोते हम लोग कम है, नींद ख़राब हो जाती है ओवर थिंकिंग के वजह से। सो करना क्या है, देखिए बहुत छोटी सी कुछ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप जहन में रखेंगे तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहस में जाने से बचना चाहते हैं तो आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप बच सकते हैं। पहली बात, हर बहस में जवाब देना ज़रूरी होता ही नहीं है। बहस का मतलब ये नहीं है कि आप जुट जाइए, बहस है तो मेरा पक्ष कौन रखेगा, लाओ जुट जाओ उसी में, नहीं, हर बहस में नहीं, कुछ जगह आपको जहाँ रखनी ही रखनी है, जहाँ से आपका काम ही होगा, नहीं होगा तो बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, वहाँ आप बात रख सकते हैं, लेकिन आपको बताए जहाँ पे बात ही ना सुनी जाए, जिस बात का मतलब ही ना हो, वहाँ बहस करना बेकार हो जाता है। तो हर बहस का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है 10 सेकंड का पॉज ले, जी हाँ। सो 10 सेकंड तक रुकने से क्या होता है ना, जो हमने बताया था कि भाई स्ट्रेस्ड आप ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि आपकी लॉजिकल जो एक माइंड है, जो दिमाग का हिस्सा है, वो धीमे पड़ जाता है। 10 सेकंड लेने से वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, तब तक आप सोच पाते हैं एक्चुअल में यहाँ पर अब क्या किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा दे। इसके अलावा आप ये पूछिए, क्या ये बहस मेरी शांति के लायक है, यानी जो आपका पीस है, मेंटल पीस, उसके लायक है। सो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चुप रहना जीत होती है, हमेशा बहस करके अपनी बात कह देना नहीं जीत होती है, बल्कि चुप रहना कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी जीत बन जाता है, क्योंकि वहाँ बहस नहीं करना होता है, और बहस नहीं करना कई बार यही सबसे बड़ी आपकी जीत बन करके सामने आता है। बस इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, यानी अपने से सवाल पूछते हैं क्या आपकी ये बहस मेंटल पीस के लिए सही है, और दूसरी चीज़ 10 सेकंड का पॉज ले लेते हैं तकरीबन, या फिर आप ये समझ ले कि हर बहस में आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आप इस स्ट्रेस्ड हार्मोन्स से बच जाएंगे जिसकी वजह से इतने सारे लॉसेस होते हैं। देखा, हमने कहा था कि भाई हम बहुत कुछ बताने वाले हैं और बहुत कुछ आपके काम का होने वाला है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा काम का फ़िलहाल अभी आपको कहीं मिलने वाला है। चलिए, सुबह सुबह आपने बता दिया ताकि किसी से बहस ना हो और आपका मूड ख़राब ना हो और आपके अंदर स्ट्रेस्ड हार्मोन्स रिलीज ना हो, बल्कि आप इन सारी चीज़ों से बच लीजिए और चलिए डगरिया।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

हाँ जी, एक बार बाबा से आपका वेलकम कर रहे हैं। और आने के साथ भाई चलिए एक नए गाने को एंजॉय किया। अब चलते थोड़े से पुराने गाने की तरफ और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, एंजॉय करते वापस से आते हैं। बताने को बहुत कुछ है और कुछ आपसे ओपिनियन भी आपकी चाहिए, सो इसलिए बी रेडी, एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए अपना गुड मॉर्निंग गुंडा विद यू मॉर्निंग जॉक आरजे इतना।

0: भैया आप यकीन करेंगे अगर आपसे हम कहें कि रात भर में बदल गए इंस्टाग्राम के आंकड़े और स्टार्स के फॉलोअर्स में भारी गिरावट आई है, तो आप सोचेंगे अरे एक की आई होगी, दो की आई होगी और शायद उतने फेमस ना हो। ना ना ना, आप ये गलती कर रहे हैं सोचने की। भाई इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं कि पूरी दुनिया भर में ये सब छाए हुए हैं। सो आखिर किस तरह से रात भर में बदल गए इंस्टाग्राम के डेटाज और स्टार्स के फॉलोवर्स में क्यों आ गई भारी गिरावट, चलिए हम बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो आपको बता दें, फिलहाल विराट कोहली समेत कई ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब आप सोचेंगे, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी यार, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स में अचानक से, अरे थोड़ी बहुत कमी हो तो चलो चलता है, भारी गिरावट कैसे? और सिर्फ विराट कोहली नहीं, और भी कई बड़े दिग्गज हैं। वजह क्या है ये जानकर आप कुछ हैरान होने वाले हैं। सो रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो मेटा ने इंस्टाग्राम पर फेक, बॉट और इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं उसके खिलाफ एक बड़ा क्लीनअप अभियान चलाया। यानी जो फेक अकाउंट्स थे, बॉट अकाउंट्स थे और इनएक्टिव अकाउंट्स थे जो एक्टिव नहीं थे, इसके लिए उसको क्लीन करने का मेटा ने अभियान चलाया, जिसके तहत कई स्टार्स के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स रातों रात कम हो गए। सो इस कार्रवाई का असर सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनी मेसी और कई हॉलीवुड बॉलीवुड सितारों पर भी पड़ा है। सो सोशल मीडिया पर इसे ग्रेट पर्ज ऑफ 2026 कहा जा रहा है। फिलहाल अब इतनी बड़ी अगर गिरावट दर्ज की जाएगी, वो भी ऐसे बड़े बड़े स्टार्स में, वो भी उनके जब कहीं ना कहीं फेक अकाउंट्स और इनएक्टिव अकाउंट्स और बॉट अकाउंट्स हटाता है मेटा, उसके बाद तो आपका क्या मानना है? यानी कहीं ना कहीं अब आपको भी लगता है कि भाई कई सारे जो फॉलोअर्स हैं इसका मतलब फेक होते हैं, यानी वो जेन्युइन ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजर्स वो नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं ये फेक फॉलोअर्स की वजह से भी ये नंबर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। फिलहाल इस बात पर आपकी क्या राय है ये आप ज़रूर बता सकते हैं, कि जिस तरह से भाई इतने बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टार्स के इतने सारे फॉलोअर्स जो है वो घट गए, कब? जब मेटा ने क्लीनअप अभियान चलाया उन अकाउंट्स के खिलाफ जो या तो फेक थे यानी झूठे अकाउंट्स हैं, या तो इनएक्टिव हैं बस बना बना करके और उसके बाद उसका कोई काम नहीं है, एंड बॉट अकाउंट्स जो हैं। इन तीनों के खिलाफ जब अभियान चला करके उसको क्लीनअप अभियान में लाया, तो उसके बाद से जिस तरह से नंबर्स घटे हैं उसको लेकर के अब आपका क्या है मानना, आप क्या कहते हैं, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आप अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को कैसे बढ़ा रहे हैं? कोई है तरीका आपका अपना जो अपनी तरह से आप सोच करके बढ़ा रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो वो भी साझा कर सकते हैं। और फिलहाल चलते हैं इस जबरदस्त सॉन्ग की तरफ, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गुड अप विद योर मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान, और मैं हूँ आपके साथ

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: तो चलो बच्चों बताओ, भवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। चिंटू, इस सॉन्ग में लेखक क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेन करो।
2: टीचर जी, इस लाइन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा सब्र करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो आपकी मलाई रबड़ी छक्कन हलवाई की हो जाती है।

0: फिलहाल नीट जो है इस वक्त काफ़ी ट्रेंडी हो रहा है, क्योंकि जब से पेपर लीक और पेपर कैंसिल की बात हुई है तब से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को नज़र आई। लेकिन उसी बीच में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, कई जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, कार्रवाई की बात भी की गई। साथ ही साथ अभी एक बिल्कुल नए सीएम बने थलापति विजय, जी हाँ, जो तमिलनाडु के हीरो रहे भाई, अब वो फिलहाल हीरोइक एंट्री करते हुए सीएम तो बन गए। साथ ही साथ उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं नीट को लेकर के कि भाई नीट जैसे एग्ज़ाम की ज़रूरत ही नहीं है, ट्वेल्थ के बेस्ड पे नंबर जो हैं उन पर ही क्यों ना इस तरह से नीट की तैयारी के लिए बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाए। सो आइए, क्या है पूरी बात आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, और सुनने के बाद आप भी बताइए कि भाई आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बेहतर होगा अगर हम नीट के बारे में बात करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

नीट की अगर हम बात करें तो पेपर लीक के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। राजस्थान, केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र समेत 10 स्टेट्स में नीट पेपर लीक के जो तार हैं वो जुड़े थे और नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद कई स्टेट्स में सैकड़ों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उतर कर आए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ऑफिस के बाद कल हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सो NTA ऑफिस के बाहर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई और इसी बीच तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय ने नीट खत्म करने की मांग की है। क्यों, बताते हैं। सो तमिलनाडु की सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार नीट की शुरुआत से ही लगातार सर्वसम्मति से इसका विरोध करती आ रही है। नीट की शुरुआत से जो है जो ग्रामीण एरिया के क्षेत्र के सरकारी स्कूल्स हैं, तमिल माध्यम से पढ़ाई करने वाले और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों और स्टूडेंट्स को गंभीर नुकसान पहुँचा है। सो तमिलनाडु सरकार अपनी उस पुरानी मांग को फिर से दोहरा रही है कि नीट को ख़त्म किया जाए। जी हाँ, सो नीट नहीं तो क्या फिर? सवाल तो ये आता है कि अगर मान लीजिए नीट ख़त्म कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? सो CM विजय थलापति के जारी बयान में नीट के बजाय 12th के जो नंबर्स हैं उनके बेस्ड पर मेडिकल एडमिशन की मांग रखी है। सो उनके बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार को नीट ख़त्म करके राज्यों को MBBS, BDS और आयुष कोर्स में राज्य कोटे के तहत सभी सीटें 12th जो कक्षा है उसके नंबर्स के बेस पर भरने की अनुमति देनी चाहिए। बयान वाले नोटिस में लिखा गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए 3 मई 2026 को 5,432 केंद्रों पर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट UG 2026 ऑर्गेनाइज की गई थी। अकेले तमिलनाडु में ही ये एग्ज़ाम 31 शहरों में आयोजित की गई थी। सो इस एग्ज़ाम में जो है वो बताया जाता है कि भाई 22,05,035 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे जिसमें से तमिलनाडु के लगभग 1,04,000 उम्मीदवार शामिल थे। एग्ज़ाम कैंसिल ने पूरे देश में लाखों मेडिकल जो उम्मीदवार थे उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। सो नीट से पहले क्या था जिससे बनते थे डॉक्टर, सवाल ये आता है। सो आपको बता दें, साल 2016 से पहले डॉक्टर बनने की अलग एक व्यवस्था थी। तब कोई कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट नहीं था। 12th रिज़ल्ट में जो नंबर्स मिलते थे उसके बेस पर स्टूडेंट्स को MBBS, BDS जैसे UG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते थे, जैसे ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT। ये CBSE के ज़रिए ऑर्गेनाइज किया जाता था और देश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की 15% सीटें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पर की जाती थी। दूसरा, स्टेट पर PMT होता था। राज्य अपने अपने लेवल पर प्री मेडिकल टेस्ट आयोजित करते थे। राजस्थान RPMT, उत्तर प्रदेश का CPMT और मध्य प्रदेश का MPMT, ये सब था। इसके ज़रिए राज्य के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी 85% सीटें भरी जाती थी। बाकी परीक्षाएं एम्स, JIIM, PER, AFMC खुद की अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते थे। इस तरह से कुछ निजी कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कोमेडिक, मणिपाल, DY पाटिल, ये सब मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते थे। सो क्यों बदला गया आखिर डॉक्टर बनने का सिस्टम, ये भी बात आती है। सो नीट से पहले डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले जो युवा थे उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अलग अलग एग्ज़ाम्स जो है वो देने पड़ते थे, जितने फॉर्म उतनी फीस। परीक्षाओं की डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अलग हो जाता था, कहीं पेपर आसान तो कहीं टफ़। एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट क्लैश हो जाती थी। सिलेबस भी अलग था, इसलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक साथ तैयारी का दबाव ज़्यादा था। सो निजी कॉलेजेस में ट्रांसपेरेंसी कम थी। मैनेजमेंट रिजर्वेशन के नाम पर मेडिकल एस्पिरेंट्स से जो है कई बार पैसे ले लिए जाते थे। सो इन परेशानियों और चुनौतियों के चलते कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की मांग उठी थी। साल 2013 में पहली बार नीट जो है वो प्रस्तावित हुआ था, लेकिन तत्कालीन अड़चनों के चलते इसे लागू करने में कई साल लगे। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जो है हस्तक्षेप के बाद नीट एग्ज़ाम को अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। सो इस तरह से तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री हैं थलापति विजय, इन्होंने
नीट को ख़त्म करने की मांग की है और कहा है कि ट्वेल्थ बेस पर जो नंबर्स आते हैं उसी पर ही मेडिकल कोर्स में एडमिशन की मांग रखी है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि भाई जो नीट है इसका होता रहना सही है या फिर जिस तरह से सीएम विजय ने अपनी एक मांग रखी है कि ट्वेल्थ के जो नंबर है उसी बेस्ड पर ही मेडिकल कोर्सेज में जो है एडमिशन मिल जाए, जैसी रैंक उसी हिसाब से एमबीबीएस, पीडीएस या आयुष। सो इसको लेकर के आपका क्या है मानना आज के सिनेरियो को देखते हुए और भविष्य के लिए बेहतर क्या लग सकता है आपको? अगर आपकी भी कोई राय है तो आप बता सकते हैं। और फिलहाल ये थी एक बड़ी अपडेट जो कि आप तक पहुंचानी थी। आई होप कि भाई ये अपडेट वैसे ही आप तक पहुंच भी गई है। तो चलिए अब क्या है भाई, बादल घेर चुके हैं। अगर आप झांक कर देखेंगे अपनी खिड़की से या छत पर जाएंगे तो आपको घेरे हुए बादल नज़र आने वाले हैं। सो मौसम बदला है तो क्यों ना मूड भी बदल लिया जाए। और चलिए चलते हैं बहुत ही उम्दा गाने की तरफ अपने मॉर्निंग शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून किया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

सुबह नीट को लेकर अभी हमने बातचीत की थी, जिस पर प्रीति जी ने अपनी राय लिखी है और अच्छी बात है। सुबह हमने पूछा था कि आपका क्या है माना, यानी इस चीज़ को आप कैसे देखते हो। सुप्रीति जी ने कहा, ट्वेल्थ में सब अपनी मेहनत से नहीं पास होते, और जो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से पास होते हैं उनके प्रति नाइंसाफ़ी होगी भावी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और राइट सुबह, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के गौर करने वाली बात है, और सिस्टम में जहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड है वहाँ चेंज भी करने वाली बात है। सो चलिए, फिलहाल आपने अपनी राय रखी, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आप सबको बिला देते हैं, क्योंकि मौसम जैसे जैसे काला गहराता जा रहा है, वैसे वैसे शरबत घुलता जा रहा है। किसका? रंगों का। क्योंकि देखिए ना, सफ़ेद से किस तरह ग्रे हो गया, और ग्रे से काले की तरफ।

0: 14 हफ्ते बस दे दिए और फिर देखिए किस तरह से एआई डेटा साइंस में आप जो हैं डेटा एनालिसिस्ट बन सकते हैं। नहीं पता, चलिए हम बताते हैं कि भाई कौन सी ऐसी जानकारी लाए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

सो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड बनकर उभरी है जिसमें आने वाले कई सालों तक नौकरियों की कोई कमी नहीं दिख रही है। ऐसे में हर कोई अब एआई डेटा साइंस के बारे में पढ़ना चाहता है। कोई इस फील्ड से जुड़ी डिग्री भारत में ही ले रहा है तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो विदेश जा कर के पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें एआई और डेटा साइंस के बारे में पढ़ना तो है लेकिन वो ऑफलाइन क्लास या कॉलेज जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते। सो इस कैटेगरी में आने वाले ज़्यादातर लोग जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अच्छी बात ये है कि एआई डेटा साइंस के लिए दुनिया की नंबर वन यूनिवर्सिटी अब घर बैठे ही इस फील्ड की पढ़ाई करवा रही है। अब आप सोचेंगे, हाँ घर बैठे? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने कि वर्ल्ड की नंबर वन यूनिवर्सिटी जो है घर बैठे इसकी ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही है। सो आपको बता दें कि वो नंबर वन यूनिवर्सिटी कौन है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT, इसको QS सब्जेक्ट रैंकिंग में AI डेटा साइंस कैटेगरी में पहला नंबर मिला है। MIT अप्लाइड AI एंड डेटा साइंस प्रोग्राम करवा रही है जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसे पढ़ने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि घर से ही क्लास ली जा सकती है। सो क्या है 14 वीक्स का ये पूरा कोर्स इसके बारे में? सो देखिए, MIT प्रोग्राम का करिकुलम कैसा है, अप्लाइड AI डेटा साइंस प्रोग्राम। सो MIT की फैकल्टी ने तैयार किया है इसे और पढ़ाने का ज़िम्मा भी इन्हीं के पास है। सो प्रोफेसर मंथूर दहलेह, प्रोफेसर स्टेफनी जगलका, प्रोफेसर देवव्रत शाह, प्रोफेसर कैरोलिन उहलर और प्रोफेसर जॉन सिटसिकल्स इस कोर्स के इंस्ट्रक्टर हैं। ये पूरा कोर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक बेहतरीन मिक्सचर है जिसे पूरा होने में 14 हफ्ते का वक्त लगेगा। इस कोर्स को कई तरह से बांटा गया है, जैसे फाउंडेशन 2 हफ्ते यानी बेसिक समझ डेवलप करने के लिए, इसके बाद 8 हफ्ते जो हैं इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, एजेंटिक AI है, एथिकल AI है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे एडवांस टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। एक हफ्ता जो है स्टूडेंट्स ने जो सीखा है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और बचे हुए जो 3 हफ्ते हैं जिसको हम कैपस्टोन प्रोजेक्ट कह रहे हैं यानी 3 हफ्ते का वक्त, वो एक फाइनल प्रोजेक्ट है जो कि आपकी स्किल्स को निखारेगा, संवारेगा। सो इस तरह से ये 14 हफ्तों को बांटा गया है, 2 हफ्ते, 8 हफ्ते, 1 हफ्ता, 3 हफ्ते। और इसके बारे में अगर ज़रूरी बातें बताएं तो ये 14 हफ्ते का कोर्स है। कोर्स शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख जो बता दें, 16 मई से शुरू हो रहा है, 20 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 मई 2026 है, यानी ऑब्वियस सी बात है कल लास्ट डेट है। एंड इसके अलावा कोर्स की जो फ़ीस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकती है। दरअसल कोर्स की फ़ीस $3,900 है यानी लगभग 373,000 यानी पौने 4 लाख रुपए जो है इसकी फ़ीस है 14 हफ्तों की। एंड ऑफ कोर्स ये उन्हीं को करना चाहिए जो इसमें प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और काफ़ी आगे तक जाना चाहते हैं, उनके लिए अपडेट था। और MIT कोर्स में ख़ास क्या है और किसे पढ़ना चाहिए ये भी हम आपको बता देते हैं। सो MIT के इस कोर्स में स्टूडेंट्स को ग्लोबल फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा यानी वर्ल्ड क्लास की जो फैकल्टी है, मुंथर डाहलेह और स्टेफनी जगलका जैसे दिग्गज MIT प्रोफेसर हैं, इन्हें AI और डेटा साइंस से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताएंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी AI और प्रोजेक्ट्स को लीड करने की इच्छा रखने वाले लोग भी ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स को ख़त्म करने के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो इस प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट्स को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्टैटिक्स की बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए। सो ये क्राइटेरिया है, अगर ऐसे लोग हैं, इन दो रिक्वायरमेंट के लोग और आपकी बेसिक्स नॉलेज है एनालिटिक्स के बारे में, तो फिर आप इसके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके काम की होगी और आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी। वापस से आएंगे, कुछ नए मैसेजेस आ चुके हैं, कुछ नए लिसनर्स जुड़ चुके हैं, आइए हम उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग की तरफ क्योंकि मौसम ने
इशारा कर दिया है रोमांटिक होने का।

0: ऐसा लग रहा है जैसे मौसम आज इशारा कर रहा भैया दोपहर के खाने में कुछ मस्त सा होना चाहिए, सोंधा सोंधा सा। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

होता है ना, जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही प्लान बनने लग जाते हैं कि आज लगता है दोपहर में मुझे निकलना पड़ेगा, कहीं घूम के आते हैं, मस्त मज़ा आ जाएगा, ऐसे कई सारे प्लान्स बन जाते हैं। तो चलिए, अगर आपके प्लान्स भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ऐसे मौसम में ये ज़रूर देखते हुए निकलिए कि भाई आंधी आंधी ना आए, आंधी आने से बड़े मसले हो जाते हैं। आप रोड साइड होते हैं जहाँ पर टीन के गिरने का या किसी सामान के उड़ के आने का जो है वो, आप अभी बरेली में जो दो दिन पहले आंधी आई उसमें एक शख्स को उड़ते हुए बाकायदा दिखाया गया है, वो टीन पकड़ के खड़ा था और हवा के साथ टीन नीचे रह गई और वो इंसान उससे ज़्यादा उड़ करके गिर गया खेतों में। तो इस तरह से ये बड़े मसले हो जाते हैं, तो ये काफ़ी रिस्की होता है। तो ऐसे बदलते हुए मौसम में मज़े ज़रूर लें, लेकिन फ़िलहाल सेफ्टी इज़ फर्स्ट। ओके, चलिए बताते हैं कौन कौन आ गए हैं चैट बॉक्स पर। मिश्र ऑप्टिकल गोंडा से मैसेज है, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आशु मिश्र जी हैं लखनऊ से, गुड मॉर्निंग। अनुष्का जी श्रावस्ती से मैसेज कर चुकी हैं, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप कि श्रावस्ती में भी ऐसा मौसम होगा। कमल नयन जी ने काफ़ी डांस किया है, मज़ा आया इनको सॉन्ग सुन के। प्रीति जी मौजूद हैं बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। सविता दुबे जी ने अपडेट दे दिया है अपनी तरफ के, सर काले बादल आ गए हैं, लगता है बारिश होगी, क्या बात है, वेरी नाइस आपने अपडेट दिया। एंड इसके बाद चलते हैं, उदयलक शर्मा भी मौजूद हैं, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही साथ एनालिसिस और स्टेटिक्स नॉलेज के बारे में कायनात को अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। सो चलिए भाई, आप लोगों ने बड़े ही अच्छे से इस शो को एंजॉय किया, साथ दिया, काफ़ी मज़ा आया और आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला, क्योंकि आज आर्ज अदनान पूरे मूड में थे आपको बहुत कुछ ला करके बताने वाले। एंड डेफिनेटली मैंने कोशिश भी की, बट कितनी हुई पूरी ये तो खैर आप ही बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल अब चलने का वक्त आ गया है, रात में फिर से मिलते हैं आपके अपने बहारी गज़ल फ्राइडे स्पेशल में। फिलहाल आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827। अरे सुना?
0: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट समता गांव के गूंज के अपार सफलता के बाद सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर से हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड लाए हैं, जिसमें हमारी मुख्य गायिका किरण पांडे जी के मधुर आवाज में गीतों की माला फिर से पिरोई गई है और जिनका साथ देने आ रही हैं जिमी जी, श्वेता जी और संतोष जी। इस बार हमारे जो गांव की गूंज का विषय है वो बहुत ही प्यारा सा लोकप्रिय है। इस बार आप सभी को अपनी कृष्णा मैडम के गांव नौबस्ता लेकर चलने वाले हैं, तो आइए चलते हैं।
1: अच्छा, सब बैठकर चाय पियो और हम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं उसको ना सुनो।
2: अरे अब बता भी दो, अगर नहीं कहेंगे तब भी आप बताएंगी ही बताएंगी।
0: किरण दी, आप लोगों ने गांव की गूंज प्रोग्राम क्यों शुरू किया था, बताइए बताइए।
3: अरे गांव की गूंज एक कोशिश है गांव की मिट्टी से जोड़ने की, एक एहसास है मिट्टी की सौंधी खुशबू को दिल से और दिमाग में रखने को, जिंदा रखने को।
4: इसलिए हम लोग चल रहे हैं एक इतने प्यारे गांव जो हर किसी को जाकर देखना चाहिए, एक आदर्श गांव।
3: सच में समता, अरे तुरंत चलो, चाय छोड़ो, रास्ते में चाय पियेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुम दोनों ने, चलो चलो कार में बैठो।
2: अरे कोई हमें भी बताओ कुछ।

0: सबके चेहरे पे खुशी तो झलक रही है, आवाज में कितनी खनक है सबके। एक बात तो समझ में आ गई है कि नौबस्ता गांव में कुछ तो खास है, पर बताइए ना कि क्या खास है नौबस्ता गांव में।
1: जिमी, जब गांव देखोगी ना तब जान जाओगी हम इतना खुश क्यों हैं। क्या खास है नौबस्ता गांव में?
2: कोडर झील शुरू हो गई, किनारा कमल की पत्तियों से भर गया है, कितनी सुंदर लग रही है। अरे देखो नाव भी खड़ी है। अरे बरसाती भैया, राम राम, कैसे हो? हम सबको भी नाव पर जरा घुमा दो।
1: किरण दीदी, बरसाती भैया बोल रहे हैं कि नाव पर ले चलेंगे तो गाना भी सुनाना पड़ेगा।

0: ये डूबते सूरज की परछाई झील में कितनी सुंदर लग रही है, या घर लौटते जानवर आसमान पर हल्के बादल, लग ही नहीं रहा है कि हम किसी गांव में हैं। कितना नेचुरल सीन है।
1: चलो अब बोटिंग खत्म करके घर चलते हैं, हम सबका वो लोग वेट कर रहे होंगे।
2: नमस्ते जमुना चाचा। अरे सुरेश चाचा भी यही है। नमस्ते सुरेश चाचा। नमस्ते किशोर चाचा। अरे अरे ब्रह्मादीन चाचा भी यही बैठे हैं, और बिंदे चाचा भी यही हैं। कैसे हैं आप सभी?
3: कैसे हैं आप लोग? ये है जिम्मी, शाम को रेडियो पर डोडो के साथ आती है।
0: नमस्ते नमस्ते, ये इतना सुंदर घर किसका है?
1: ये कृष्णा मैडम और रमेश बाबू जी का घर है। वो लोग तो अब नहीं रहे, पर देखो कितना सुंदर घर है, कितना प्यारा मंदिर है, झूला भी है, और ये सब देखभाल अब वही करते हैं।
2: देखा जिम्मी, ये है गांव की खूबसूरती। इंसान चला गया, पर उतने ही अपनेपन से ये लोग इस घर की देखभाल करते हैं। शहर में तो जीते जी लोग एक दूसरे का ध्यान भी नहीं रखते हैं।
3: चलो देखो, बिंटू, नीलम, सरिता सब ऊपर इंतजार कर रही हैं।
4: चलिए दीदी, खाना तैयार है, पर पहले खोया खा लीजिए, रामदयाल काका ने आज ही निकाला है।
0: अरे कितना टेस्टी है ये तो, बिना चीनी के भी कितना मीठा लग रहा है, खाने की भी कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है।
4: छत पर सोने का इंतजाम कर दिया है, तो आप लोग मुंह हाथ धो के आ जाइए।
3: अरे शिवा, कितना बड़ा हो गया, कैसे हो सब लोग? चेहरा देखकर जान गए हैं, खाना तब तक नहीं मिलेगा जब तक एक गाना नहीं सुना देंगे। चलो सब बैठो, सुरेश तुम ढोलक पर आओ, ढोलक तुम बजाओ। दिन भर चाहे जहाँ

0: या भौरी है? अरे अपनी बाटी, देसी घी, चोखा यानी भरता, लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, गलका, पूरा जो खाना हम सब खा रहे हैं ना, ये उन्हीं की खेती की है, सब कृष्णा मैडम के खेत से हैं।
1: घी की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। छत पर बैठकर चांदनी रात में इतना स्वादिष्ट खाना कोई सपना तो नहीं? अरे प्लीज पिंच मी, हम सपना तो नहीं देख रहे हैं?
2: देखो छत पर लाइन से सबके पलंग लगे हैं, मच्छरदानी भी शिवा ने लगा दी है, पर सबको सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पीना पड़ेगा, वो भी हल्दी वाला, नहीं तो गौ माता गुस्सा हो जाएंगी।
0: अरे नहीं नहीं, हमें दूध से एलर्जी है। कोई नौटंकी नहीं, दूध तो सबको पीना पड़ेगा। चलो आंगन में थोड़ी देर टहलते हैं, फिर सबको बिंदु गांव के भूत की कहानियां सुनाऊंगी।

0: उठो उठो गुड मॉर्निंग। इतनी खूबसूरत सुबह हम मिस नहीं करना चाहते, इसीलिए सबसे पहले उठ गए हैं। सच में नौबस्ता इज अमेजिंग।
1: इस मंदिर का नाम रामेश्वर नाथ धाम है। ये भजन दिवाकर द्विवेदी, जो अवधी सिंगर है, उन्होंने लिखा है।
2: शिवा थैंक यू अदरक और तुलसी की चाय के लिए। बिल्कुल फ्रेश हो गए हम सभी। सबता देख कितने लोग योगा करने के लिए तैयार खड़े हैं।
3: अरे सुरेश सिन्हा वाटिका में घास पर पूरी योगा की तैयारी करके रखी है। चलिए आइए हम सब लोग, इतनी जगह है, हम सब आराम से सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे।
1: वहाँ राम किशोर भैया गद्दे बिछाकर बरगद के नीचे पूरी तैयारी कर दी है उन्होंने। अरे ऐसा लग रहा है कि हम कोई शो करने जा रहे हैं। बिल्कुल समा बांध दिया है।

0: हम किसी सपनों के शहर में हैं। रोज समता मैम को तो योगा करते देखते हैं, पर आज तो गजब का था। गांव वाले ऐसा योगा कर रहे थे जैसे उन्हें ट्रेनिंग मिली हो। मैंने पूरी वीडियो बना ली है। किरण मैम का तो कोई ग्रैंड शो चल रहा था। ऐसा लग रहा था कितना सुंदर है सब कुछ। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए।
1: शिवा ने नाश्ता लगा दिया है और LED यूनिट के सभी लोग वेट कर रहे हैं।
2: गांव में नौकरी नहीं होती, पैसा कमाने के लिए शहर जाना पड़ता है। जैसे हम सबको अपना अपना घर छोड़कर शहर जाना पड़ा, पर इस गांव के बेटे दीपेंद्र सिन्हा जो अमेरिका में रहते हैं,
3: उन्होंने नौबस्ता इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री खोली है गांव के लोगों के रोजगार के लिए, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके।
0: सब बता रहे थे कि दीपेन भैया ने एक पोल फैक्ट्री डाली है एक LED बल्ब की। चलो ना देखते हैं।
1: चलो NIPL के पंकज दुबे, देवी प्रसाद, गुड्डू, अशोक, श्रीनाथ, आशीष, दद्दन, दीपू, आलोक और कोतवाल सब बुलाने आए हैं LED बल्ब कैसे बनता है ये दिखाने के लिए।
2: किरण दी, इतना सुंदर मौसम, ट्रैक्टर की सवारी, गाना तो बनता है भाई। इतना बड़ा काम किया है भैया ने, जो गांव के लोगों को ट्रेंड किया। कितना फटाफट बल्ब बना रहे हैं, रोशनी भी कितनी तेज है।
3: जिमी, आप समझी नौबस्ता गांव क्यों खास है। काश ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर गांव नौबस्ता जितना सुंदर हो जाए।
0: कितना सुंदर मौसम हो गया है, लगता है पानी बरसेगा। जमुना चाचा ने ट्रैक्टर भेजा है, चलिए धान की खेती हो रही है, देखने चले। किरण दीदी, कितना सुंदर मौसम है और इस मौसम में एक ट्रैक्टर की सवारी वाला गाना तो बनता है।

0: वहाँ ट्यूबवेल चल रहा है, कितना ठंडा पानी है। अरे ब्रह्मा दीन भुट्टा और हरी चटनी लेकर आ ही गए हैं।
1: किरण दीदी, यहाँ की हवा में कितना अपनापन है ना, और सभी एक दूसरे का कितना ध्यान रखते हैं। हमारे शहर में तो कोई एक दूसरे का ध्यान ही नहीं रखता है, क्योंकि सभी के पास टाइम ही नहीं है।
2: अरे किरण दीदी, श्वेता के लिए एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए और चलिए चल के ट्यूबवेल के पास बैठते हैं।

0: देखो देखो पोल फैक्ट्री के आशीष, अजीत, विनोद, साधु, राजेश, विनोद चाचा, झींगुर चाचा, अलख सब आए हैं हम लोगों को फैक्ट्री घुमाने के लिए।
1: ढलाई हो रही है, देखो जिमी कैसे ये लोग कितने बड़े बड़े बिजली के खंभों की ढलाई कर रहे हैं।
2: चलो हम सब मिलकर ढलाई करते हैं और बेल का शरबत पीते हैं और जमकर धमाल मचाते हैं।
0: हो जीनी जी।

0: शाम होने आई है और कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। पर अगर यहाँ आते नहीं तो पता कैसे चलता कि नौबस्ता क्यों इतना खास है। एक बात और बताइए, यहाँ सच में हर घर में शौचालय है, यहाँ के लोग इतना अवेयर कैसे हैं?
1: आर्यन सिन्हा फाउंडेशन की मदद से आज लगभग हर घर में शौचालय है।
2: काश नौबस्ता गांव की तरह हर गांव इतना स्वच्छ, सुंदर और इतना ही खुशहाल हो। हम सबको अपने गांव के बारे में सोचना चाहिए और अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए।
3: चलो चलो, गांव के लोगों के साथ इस शाम को यादगार बनाते हैं। चलो

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: Dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, dinner, d

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ यार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और भाई अब तो दोपहर का वक्त है, वैसे हम आपको मिलते हैं, जब मिलते हैं तो शुभ संध्या होती है, लेकिन आज शुभ दोपहरिया है। और उसकी एक वजह है भाई कि आज का दिन बहुत ख़ास है, और आज का दिन इसलिए ख़ास है क्योंकि हमारी बहुत ही एक हिंदी फिल्म सिनेमा जगत की अगर हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लीजेंड बनकर रहे। होता है कि कुछ लोग चले जाते जैसे दिन रात गुजर जाया करते, कुछ लोग शरद के बादल से चुपचाप बिखर जाया करते, कुछ लोग मगर भर जाते हैं रजनीगंधा मन प्राणों में, खामोश बसा जाते बस्ती चुपचाप पड़े वीरानों में। तो ज़िंदगी में आपके कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो आए और गए और उनका आने और जाने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इस धरती पर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। और भारतीय फिल्म जगत की अगर हम बात करें तो बहुत सारे नायक और नायिकाओं का नाम हमारी ज़ुबान पर है, लेकिन एक ऐसी नायिका जिसने सोचा था कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनेगी, कथक उन्होंने सीख रखा था, नाम था माधुरी शंकर दीक्षित। जी हाँ, आज ही के दिन 15 मई 1967 को उनका जन्म हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को भाई हैप्पी बर्थडे टू माधुरी, धक धक गर्ल के नाम से आप उनको जानते हैं। जी हाँ, और उन्होंने कई दशक तक हिंदी फिल्मों में दर्शकों के हृदय पर अपनी आवाज़ से, अपने नृत्य से, अपने अभिनय से एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी वो धक धक गर्ल की उपाधि किसी और एक्ट्रेस को नहीं मिल पाई। और माधुरी दीक्षित को पसंद करने वाले लोग जानते होंगे कि माधुरी दीक्षित एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी, वो बनना चाहती थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इसलिए उन्होंने इसकी डिग्री भी हासिल की थी। लेकिन कहा जाता है कि मेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और, हम चाहते कुछ है और होता वो है। और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि आप ज़िंदगी में करना कुछ चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आप वो करते हैं जो आप ऊपर वाला आपसे करवाना चाहता है। माइंड प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, वी आर ओनली द पपेट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ गॉड। हम क्या हैं, सिर्फ ईश्वर के हाथ की कठपुतलियाँ ही तो है, डोर ऊपर वाले के हाथ में है, वो जैसा चाहेगा वैसा न चाहेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, जिसमें ईश्वर को खुशी है, जिसमें उसकी मंजूरी है, हमको वही करना चाहिए। और जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने बिल्कुल वही किया। उनकी ज़िंदगी का सपना था माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने का, और बनी वो एक ऐसी कलाकार, बनी वो एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी छाप आज भी हम सभी के हृदय में उपस्थित है। क्या कहती हैं पायुषी, ऐसा है क्या? नहीं,
1: बिल्कुल। देखिए, जो माधुरी दीक्षित जी हैं वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं, बल्कि उनकी हर एक एक मूवी में जो उनका रोल था वो आज भी कहीं ना कहीं सारे दर्शकों के दिल में छा गया है। अगर हम बात करें फैशन की, तो माधुरी दीक्षित के जो फैशन सेंस है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि आज भी जब वो अमेरिका में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, वहाँ पर भी जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है उसको भी लोग काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं। जहाँ भी अगर आपको पर्पल साड़ी दिखती है तो लोग यही कहते हैं कि अरे जल्दी से ये साड़ी ले लो, हमें भी उनके जैसा लुक करना है। या फिर अगर आपको येलो सूट दिखता है तो भाई माए नहीं माए सबको याद आ जाता है, और सभी लेडीज चाहती है कि उनकी तरह खूबसूरत दिखे।
0: जी, और ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों का जो मतलब हम कहते हैं कि जो मिश्रण है, जिसे कुछ लोगों का चेहरा होता है वैसी आवाज नहीं होती, और जैसी आवाज़ होती है वैसा नृत्य नहीं होता। लेकिन मैंने मुझको लगता है माधुरी दीक्षित एक कंप्लीट पैकेज है, चेहरे से भी उतनी ही मासूम, आवाज़ में भी उतनी ही मासूमियत, और अभिनय करते समय उनका चेहरा भी बोलता है, आंखें भी बोलती हैं, मतलब आपको नहीं लगता कि उनका चेहरा बोलता है?
1: देखिए सर, यही तो है एक कलाकार की, एक अच्छे कलाकार की निशानी, कि जब वो अभिनय करने पे आती हैं तो ना तो सिर्फ उनके शब्द बल्कि उनके फेस एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी उनके साथ ही ढल जाते हैं। तभी तो वो आज एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनको आज भी लोग पसंद करते हैं, और हर आने वाली पीढ़ी में जो लोग एक्ट्रेस बनना चाहती हैं कहीं ना कहीं उनकी ये आइडल भी है।
0: जी हाँ, और कहा जाता है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहने को ज़िंदगी में कई लोग थे मगर वो हर तरह से लेकिन औरों से था जुदा सा। जी हाँ, बहुत सी अभिनेत्रियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये धक धक गर्ल का अवार्ड शायद किसी और को न मिल पाए।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों फिलहाल चल रहा है आपका अपना शो ज्ञानस्थली लाइव। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब देखिए, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, जैसे मैं हो गई हूँ। अब देखिए ना, अभी जल्दी ही हमारे गोंडा में हुई थी थोड़ी सी बारिश, और कहते हैं ना कि पहली बारिश जो है अच्छी तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान भी पहुँचाती है। तो बारिश में अगर आप भीगना पसंद करते हैं तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए, अभी भीगने का मौसम नहीं आया है, नहीं तो आपकी भी तबीयत मेरी तरह खराब हो जाएगी।
0: नहीं आयुषी जी, आपकी तबीयत नहीं खराब हुई, मतलब आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी।
1: मतलब
0: आप बारिश में भीग गई।
1: हाँ, ये देखिए बारिश देखते ही ना हर एक एक जो इंसान होता है उसका मन बड़ा बच्चा सा बन जाता है कि अब तो भीगना है।
0: फिर वो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते कहीं रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, मुझसे कहते तो मैं आंखों में बसा लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। तो जी हाँ, हमारी आंखों में इतने आंसू हैं कि वो आपके लिए पर्याप्त होते, लेकिन आपको लगता है कि वो सलाइन वाटर नहीं, वो बारिश, हमको वही पानी चाहिए, तो आप भीग गए।
1: बिल्कुल। अब देखिए, भीगने का मज़ा बारिश में ही है, अगर आंखें भी भीग रही हैं तो वो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा ऐसा लगता है।
0: हाँ, मतलब आंखों का भीग जाना अच्छा नहीं है। और कहा जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा जो लिक्विड होता है वो आंसू होता है, जिसमें 99% दर्द होता है और 1% पानी होता है।
1: बिल्कुल। देखिए, अगर कोई आपको पानी ऑफर करता है तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कोई आपके लिए आंसू बहा रहा है, आपके दर्द में आपके साथ है, तो वो उससे भी ज़्यादा कीमती होता है।
0: बिल्कुल कीमती होता है, और इस दर्द को समझने वाले लोग थोड़े से कम हो गए मुझको लगता है दुनिया में।
1: कोई नहीं, हम ये ज्ञान फैलाएंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखिए दोस्तों, ब्रेक पे हम जा रहे हैं, आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं माधुरी दीक्षित स्पेशल प्लेलिस्ट। साथ ही हमारे साथ काफी सारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं, जिनमें अभी तक हमारे पास मैसेज आया है मीनू जी का, जो कि गोंडा से ही हमें सुनती हैं। उन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी आप? मीनू जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर्दी जुकाम है। साथ ही साथ लिख रही है कि गुड आफ्टरनून सर
0: जी। बिल्कुल, आपको भी गुड आफ्टरनून
1: जी। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और करेंगे आपसे ढेर सारी बातें क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। स्टे ट्यून।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: वेलकम बैक लिसनर, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी आज की होस्ट आयुषी, और मेरे साथ है आपके हमारे फेवरेट आरजे मनु।
1: जी हाँ, और भाई माधुरी दीक्षित की बात की जाए तो जो उनकी पहली कामयाब फिल्म हुई वो बनी वही तेजाब। अच्छा सोचिए, पहली फिल्म जो जिसने उनको रातों रात स्टार बनाया अनिल कपूर के साथ, उसका नाम कितना अजीब था, तेजाब। क्या हंसी नहीं आती सुन करके कि वो लड़की जो कभी धक धक गर्ल के नाम से मशहूर हुई और उसकी पहली सुपरहिट फिल्म का नाम तेजाब हो।
0: देखिए, अजीब ये नहीं है कि नाम इसका अजीब है, मैटर ये करता है कि इनका वर्क इस मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छा था,
1: बहुत अच्छा था। और फिल्मों की अगर नाम की बात करें तो मैं आपको एक घटना बताऊं कि लखनऊ में कुछ समय पहले जब थिएटर लगे होते थे
0: जी
1: सिनेमा हॉल में, तो एक जगह पर जाइए तो मीनाबाद में कई सारे थिएटर हैं, तो उन सभी के पोस्टर्स लगे होते हैं कि इस यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ इस, ताकि मेरी मूवी चल रही है। देखा होगा कभी आपने।
0: हाँ हाँ।
1: तो ऐसे ही मैं खड़ा था लखनऊ में तो कई सारी फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे
0: जी।
1: मैंने कुछ नहीं किया, उन पोस्टर्स को पढ़ना शुरू किया
0: जी।
1: अब आप भी ध्यान सुनेगा कि उन पोस्टर्स में क्या था, केवल फिल्मों के नाम थे। ठीक है, तो फिल्मों के नाम, दो प्रेमी,
0: हाँ,
1: फरार, लैला मजनू, गिरफ्तार, नदिया के पार। पहली खाली फिल्मों के नाम है, दो प्रेमी, फरार, लैला मजनू, गिरफ्तार, नदिया के पार। फिर लिखा था, आन मिलो सजना दो गज जमीन के नीचे,
0: दो
1: ये पिक्चर का नाम है। हमने कहा भाई क्या क्या बात है। उसके पश्चात लिखा था सास, फिर लिखा था नागिन, फिर अगली फिल्म भाई मैं इंतकाम लूंगा, अगली फिल्म थी दादाजी जन्म समझा करो, और अंतिम पंक्ति तक आते आते तो मेरे होश उड़ गए, लिखा था गांधी, फिल्म का नाम है गांधी, एक बार चले आओ हसीना मान जाएगा। मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें मेरी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मैंने सिर्फ उन पोस्टर्स को क्रम से पढ़ा था। वो भी मुझको याद आता है कि मतलब क्या से? तो जो फिल्मों के नाम है तेजाब, मतलब नाम से ही लगता है कि मतलब यार इसमें कोई तेज मतलब बहुत ज़्यादा और आब मतलब पानी बहुत तेज वाला पानी कोई आने वाला होगा। तो ये तो मतलब माधुरी दीक्षित की कामयाबी पर क्या कहा जाए, मतलब कि वो बनना चाहती थी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बन गई धक धक गर्ल, और युवा दिलों की धड़कन, जैसे गोंडा शहर की धड़कन 9.6 FM है
0: जी,
1: तो उसी प्रकार से शादी के बाद भी अभी भी उनका बड़ा क्रेज है लोगों में, महसूस करती हैं आप?
0: बिल्कुल, देखिए क्रेज तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मैं खुद माधुरी दीक्षित लवर हूँ और मैं भी उनको सोशल मीडिया पे कह सकते हैं स्टॉक करती हूँ, क्योंकि देखिए स्टॉक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं डेली चेक करती हूँ कि क्या नई पोस्ट है। ये जब उनकी शादी हुई तो काफ़ी लोगों ने कहा कि शायद वो अपना करियर छोड़ देंगी या फिर अब उनकी लाइफ जो उनका करियर है वो यहीं पे समाप्त हो रहा है, लेकिन उनकी जो फिटनेस है, ब्यूटी है और उनके जो छोटे छोटे टिप, और जो सबसे बड़ी बात है कि उनके जो फ़नी रील्स वो बनाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आती हैं और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं।
1: हाँ, उन फनी रील में कहीं भी आपको कभी भी वल्गैरिटी देखने को नहीं मिलती, ये बहुत बड़ी बात है।
0: ये एक बहुत ही बड़ी बात आपने कही। देखिए, हर इंसान फेम पाने के लिए आजकल क्या करता है कि वो वल्गैरिटी के पीछे ज़्यादा भागता है कि हम ये करेंगे जल्दी फेमस हो जाएंगे, लेकिन वो एक्ट्रेस जो सिर्फ और सिर्फ अपनी कला के दम पर आगे बढ़ी हैं उनका, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि जब आप मेहनत से करके बिना किसी गलत काम के से जो आप काम करते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है, और जो काम आप बहुत ज़्यादा चमक धमक के पीछे भागेंगे वो काम बहुत ही सीमित समय के लिए होता है।
1: बिल्कुल, और उनके लिए कहा भी जा सकता है कि पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। तो इंसान जब कामयाब होता है तो बहुत से लोग उस कामयाबी को देख कर सोचते हैं कि यार ये इतना कामयाब हो गया, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया है, शायद उस संघर्ष की गाथा, उस संघर्ष की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे सोने को जो आपने देखे, सोने के जो है वो ज्वेलरीज पहनी हुई है तो सोना चमक रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है मुझको
0: जी,
1: लेकिन इस सोने को चमकने के पीछे इसको कितना जलाया गया है, कितना तपाया गया है, ये सिर्फ सोना ही जानता है।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे ऊंचाई पर देखकर हैरान है कई लोग, पर किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। तो मतलब आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो लोग आपको देखकर हैरान होते हैं। और बशीर बद्र साहब की एक शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। उनकी गजल है कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हो गई है दिन में घर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। और पत्थर, ये इस लाइन पर गौर कीजिएगा योशी जी, कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने कभी छू कर नहीं देखा। मतलब इंसान होता है कि मतलब हाँ दिखाई पड़ रही है, लेकिन विराट कोहली अगर चौका मारते हैं, रोहित शर्मा सिक्स मारते हैं तो दिखाई पड़ता है कि हाँ वाह, लेकिन ग्रेट पीपल एंड ग्रेट प्लेयर्स डू देयर वर्क्स व्हेन नोबडी सीज देम। मैंने एक चीज़ देखी, महान खिलाड़ी और महान लोग वे होते हैं वो तब काम करते हैं जब उनको कोई देख नहीं रहा होता है। जब उन्होंने कत्थक सीखा था और वो कत्थक की घंटों प्रैक्टिस करती थी, तब माधुरी दीक्षित को किसने नहीं देखा। लेकिन जब वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में देवदास में आई, आहा, गाना आपको याद है
0: जी, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, आई गेस।
1: नहीं, आप सोचिए, देव संजय लीला भंसाली की फिल्म है, माधुरी दीक्षित के साथ ऐश्वर्या राय है, गीत कौन सा हो सकता है?
0: डोला रे डोला।
1: जी हाँ, ये मतलब सोचिए, मतलब ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित क्या जोड़ी है। और वही संजय लीला भंसाली फिर दो एक्ट्रेस को लेकर आते हैं, और अब की बात होती है पर्दे पर प्रियंका चोपड़ा के साथ दीपिका पादुकोण, बताइए गाना कौन सा?
0: ये एक मराठी गाना है, मुझे याद आ रहा है, ये बाजीराव मस्तानी मूवी।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन दोनों ही फिल्मों के निर्देशक जो है वो संजय लीला भंसाली भी थे। तो वो जिनको लेकर आते थे तो उनको लगता था कि ऐश्वर्या राय के साथ अगर कोई डांस कर सकता है तो वो माधुरी दीक्षित। तो आपको एक नाम बताऊं, अगर फिल्म जगत में बात करें तो सबसे अच्छा जो अब तो वो कोरियोग्राफर भी है, आपने नाम सुना होगा प्रभु देवा का।
0: जी जी, प्रभु देवा जी। हाँ जी।
1: और प्रभु देवा ने एक बात बोली थी कि अगर मेरे साथ बहुत सारी एक्ट्रेस ने डांस किया, लेकिन जिसका नाम उन्होंने लिया था सबसे ऊंचे पर और जो गाना बताया था, वो पता है आपको कौन सा है?
0: कौन सा
1: आप बताइए, प्रभु देवा के साथ माधुरी दीक्षित ने कौन सा डांस किया है?
0: मुझे नहीं याद है, आप बता दीजिए। मतलब मुझे नहीं याद है ये कोई,
1: मतलब आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है तो ये गाना।
0: अरे तो और सारे गाने तो मुझे याद है, प्रभु देवा के साथ,
1: प्रभु देवा के साथ कौन सा डांस किया?
0: छम्मा छम्मा
1: ना,
0: तो
1: छम्मा छम्मा तो वो है भाई,
0: सॉरी छम्मा छम्मा तो दूसरे का है,
1: उर्मिला
0: का है, नहीं याद है, आप ही बता दीजिए। चलिए,
1: अच्छा चलिए, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, फिल्म का नाम है पुकार।
0: सर मैं पुरानी मूवीज ज्यादा नहीं,
1: पुरानी नहीं है, माधुरी दीक्षित की मूवी कहाँ पुरानी है, बहुत ज्यादा। चलिए, नो आइडिया। है के जरा
0: जरा
1: जो भी हो सको।
0: जी जी,
1: आप चाहे तो YouTube पर सर्च कीजिए और चलिए इस गाने को एंजॉय कर लेते हैं लोगों के साथ, क्या लगता है आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मतलब प्रभु देवा ने कहा था कि भाई बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों के साथ मैंने डांस किया, लेकिन माधुरी दीक्षित ने फिल्म पुकार में जो मेरे साथ डांस किया, और शायद मुझे लगता है कि उससे अच्छा डांस मैंने अपनी लाइफ में किसी दूसरे एक्ट्रेस के साथ नहीं किया था। ये उनकी उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं, और उनके उस इंटरव्यू में ये बात सामने आई, उन्होंने इस बात को खुलकर बोला कि जी मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा, जैसा डिफिकल्ट स्टेप्स होते हैं मेरे, और मेरे जो डिफिकल्ट स्टेप्स से अगर किसी ने बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए, तो जब मैं फिल्म पुकार में डांस कर रहा था तो मुझको लगा कि ये माधुरी जी कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि इसके पहले मैंने उनको इतने टिपिकल गीत पर डांस करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब उन्होंने डांस किया तो प्रभुदेवा भी एक बार सोचने पड़ गए कि हाँ यार क्या बात है। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने अगर डांस अपनी लाइफ का बताऊँ तो उन्होंने इस चीज़ को शेयर किया, जी हाँ, और आज इस खास मौके पर प्रभुदेवा के साथ उनके डांस की ये सुपर डुपर परफॉर्मेंस अब आपको सुनाते हैं। सुनते रहिए और रेडियो गन स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ और को होस्ट हूँ आज मैं आपकी फिर टारजे आज आयुषी का।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
3: नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: कहिए क्या सुनेंगे आप?
4: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
3: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
4: कौन है वो?
3: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
4: कैसे?

जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये गिनतियाँ आपको याद रहेंगी, और ये याद रहेंगी माधुरी दीक्षित भी, और साथ ही साथ आपको बताते चले मित्रों कि आज सिर्फ माधुरी दीक्षित का जन्म ही नहीं हुआ है, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है। जी हाँ, तो घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। कुछ दिन पहले आप सभी जानते हैं कि मई मास के दूसरे रविवार को हम मनाते हैं मातृ दिवस, तो हमने मातृ दिवस मनाया, और माता के बिना परिवार की कल्पना हो ही नहीं सकती। तो उसी महीने में फिर आता है 10 मई के बाद, आज 15 मई है और आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो आप सभी लोगों का परिवार बसा रहे, खुशहाल रहे, ईश्वर ऊपर वाला आप सभी लोगों को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी का कल्याण हो, सबका हित हो, कोई भी रोगी ना हो, और इस जहान में मोहब्बत ही मोहब्बत हो। इस पैगाम को देते हुए अब आपसे लेते हैं अनुमति। आसमान मिलने चाहो तो फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन। जी हाँ, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी, जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोडा शहर की धड़कन।
2: नमस्कार मेरे सेहतमंद साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आरजे आकांक्षा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके आरजे अदनान। हम फिर हाजिर हैं एक नए जोश नई उमंग और नई जानकारी के साथ आपके पसंदीदा शो में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई, क्योंकि जब सेहत होगी फिट तो खर्च जाएंगे मिट।
0: बिल्कुल सही कहा, तो चलिए खोलते हैं सेहत के वो राज जो न सिर्फ बीमारियों से बचाएंगे बल्कि आपकी जेब को भी देंगे चैन की सांस। सेहतिया सिंह और टीकन भाभी के साथ।
2: अरे अरे अरे रे, एक मिनट, मैं तो बताना ही भूल गई कि टीकन भाभी और सेहतिया भैया तो आज लाभांत्री को लेकर टीका लगवाने गए हैं पास के PHC में।
3: आज शायद वो हमसे बात करने स्टूडियो नहीं आ पाएंगे।
0: अरे तो कोई बात नहीं, आज हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, पर उससे पहले मैं सुनाना चाहूंगा आपको एक कहानी। एक युवा दंपत्ति की कहानी जो अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ एक गांव में रहते थे। क्योंकि खुशहाल जिंदगी थी उनकी, बड़े ही प्यार से रखते थे वो अपनी उस बच्ची को। हर सुबह माँ बिटिया के बालों में तेल लगाती, चोटी बनाती और फिर पिता खुद अपने हाथों से उस बच्ची को नाश्ता खिलाते। पर एक दिन बिटिया को तेज बुखार हो गया। पहले तो दंपत्ति ने सोचा शायद ये मौसम का असर होगा, लेकिन अगले ही दिन बच्चे की सांसें उखड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच की और बताया न्यूमोनिया है। फिर पूछा कि क्या आपने टीका लगवाया था? माँ और पिता चुप।
2: बस वही चुप्पी बन गई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, क्योंकि कई बार जो बीमारी हमें दिखती नहीं वही सबसे घातक साबित होती है, और उनकी ये चुप्पी उनके बच्चे की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बन गई।
0: बिल्कुल, और कई लोग तो कहते हैं कि टीकाकरण की आखिर क्या जरूरत होती है, पर सच तो ये है कि कई बीमारियां चुपचाप आ जाती है और वो बीमारियां होती है जानलेवा,
2: जैसे कि मीजल्स, डिप्थीरिया, पोलियो। मीजल्स से निमोनिया और दस्त जैसी जटिलताएं हो सकती हैं और पोलियो से जीवन भर की लाचारी। हेपेटाइटिस बी से लीवर फेल हो सकता है। रुबेला गर्भवती महिलाओं के बच्चे में जन्मजात दोष ला सकती है। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बनता है।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 12 खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीके देता है, जिसमें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, टीबी, हेपेटाइटिस बी, HIV, निमोनिया, रोटा वायरस और जापानी इंसेफेलाइटिस।
2: और याद रखिए, 5 साल 7 बार पहला टीका जन्म के समय, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल और 5 साल पर।
0: बिल्कुल, और अगर इनमें से एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ जाती है और बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है।
2: पर भैया, अब भी सवाल तो कई हैं। अगर कोई टीका छूट जाए तो? अगर बच्चा उस दिन बीमार हो, क्या प्राइवेट में टीका लगवाना बेहतर है? और वो जो कहते हैं कि सरकारी सुई में दर्द ज्यादा होता है, उसका क्या? और क्या टीकाकरण के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं?
0: बिल्कुल सही सवाल हैं आपके, और जिसका जवाब भी जरूरी है। इसी सोच के साथ मैं और आरजे आकांक्षा कल पहुंचे थे एक खास वर्कशॉप में, और हमारे सारे सवालों का जवाब देने वहां कई एक्सपर्ट्स मौजूद थे। तो पेश है स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, राज्य टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण NHM, डॉक्टर दीप ठक्कर, उप निदेशक UPTSU, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, WHO NPSP, डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज और डॉक्टर आशीष मौर्य, JSI। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो अब वही बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं, कानों को खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बात है आपके बच्चे के सेहत की।
4: 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा की बात करें तो आप जानिए इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि हम लाखों करोड़ों बच्चों की जान इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हम बचा पाते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो जितनी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, वैक्सीन लगाने से हम लोग लगभग 20 से ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनसे हम जान बचाते हैं बच्चों की। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो जितनी भी हमारी बच्चों की उम्र है वो लंबी होती है और साथ में एक हेल्दियर लाइफ जीते हैं, बीच बीच में बीमार नहीं पड़ते हैं, जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं इनकी वजह से। अगर विजन की बात करें कि किस तरह से हम इन्वेशन एजेंडे की विजन को देखते हैं, तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी किसी भी एज का हो,

0: कहीं से भी छूट न रहा हो कोई भी वैक्सीन लगवाने से। इस बात के लिए हम पूरी तरह से एसेस देते हैं। कोई जेंडर इक्विटी का मामला होता है, कभी हम बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं। और ओवरऑल इंश्योर हमको यही करना है कि सभी के लिए एक अच्छी हेल्दी वेल बीइंग लाइफ कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तो उसको मिलना चाहिए। इंडिया के अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो UIP बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो गोल है कि मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। दूसरा गोल हमारा होता है कि अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं कि मीजल्स रूबेला जो एक बीमारी, जैसे आप जानते ही होंगे कि स्मॉल पॉक्स हम लोग इरिगेट कर चुके हैं बहुत पहले ही, MR इसी तरह से मीजल्स रूबेला भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बच्चों में होते हैं। तो आप रिसेंटली देख रहे होंगे बहुत ही कम इस तरह की बीमारियां आती है। इनको एलिमिनेशन की बात करते हैं 2026 तक इनकी बात कर रहे हैं। साथ में जो अभी 2013 में हम पोलियो फ्री हो चुके हैं पूरे मतलब अपने इंडिया से, बट अभी भी देखिए अफगानिस्तान पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं मुल्क हैं उनके अंदर भी अभी पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं। तो उस चीज़ की स्टेटस अपने इंडिया के अंदर जो पोलियो फ्री स्टेटस उसको मेंटेन करना। रिसेंटली पहले आपने देखा होगा बचपन में कई बार हम लोग देखते थे कि कुछ एक दिन दो दिन तीन दिन के बच्चे अमूमन वो धनुष टंकार की बीमारी होती है जिसको न्यूनेटल टेटनस कहते हैं, उनसे काफ़ी कुछ बच्चे हमारे काल कवलित असमय हो जाते थे। तो इस तरह की जो मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस है उनको एलिमिनेशन की जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक मिनिमम लेवल पे ही रखना इसकी वैक्सीनेशन से। उसके अलावा जो AFI सर्विलेंस है उसको भी हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। एक ऑब्जेक्टिव UIP का ये भी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी एक सपोर्टिव सुपरविजन होनी चाहिए सो देट कि ये दिखाई पड़े कि जो हमारी NM है जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं अच्छी तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं प्रॉपरली लगा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो उनको हम ऑन द स्पॉट उनको ट्रेन कर पाएं, अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा है तो हम उनको रीट्रेन कर पाएं। और जो हमारा UIP प्रोग्राम है अब तक आप लोगों ने देखा होगा अब तो हमारे मोबाइल्स में सारी उसकी माइक्रो प्लानिंग होती है, उसके अलावा डिजिटलाइज कर चुके हैं हम लोग सारे के सारे अपने उसको। और अगर ज़रूरत है फील्ड के अंदर या कहीं भी तो केस बेस स्टडी के बाद या फिर डिजीज बर्डन को देखते हुए कोई न्यूअर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करनी है इस पे भी, ये भी एक हमारा एम्स ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली UIP के अंतर्गत हम लोग HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है टाइफाइड की भी वैक्सीन हमारी UIP में फ्री हमारी जनता के लिए अवेलेबल हो।
1: सो अभी जो बात हो रही थी टीकाकरण कैसे हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुरक्षित है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट से कहना चाहेंगे कि जो भी टीकाकरण हम बच्चों के लिए या गर्भवती माताओं के लिए कर रहे हैं ये पूर्णतः सुरक्षित है और ये उनके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए यानी कि उनको जीवित बनाए रखने के लिए, उनको किसी बीमारी से बचाए रखने के लिए, उनको अच्छा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रही बात वैक्सीन्स कैसी हैं, तो वैक्सीन्स की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं किया जा रहा है। वो मैन्युफैक्चरर से लेके बेनिफिशियरी तक, चाहे वो शिपमेंट हो रहा हो बड़े लेवल पर या फाइनली ब्लॉक लेवल से किसी आउटरीच सेशन साइट पर शिपमेंट हो रहा हो, इन सभी पर वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है, जो तापमान है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए इवन नेटवर्क भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, और इस नेटवर्क से हम कहीं पर भी कोल्ड चेन के ब्रेक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ या स्टोरेज कहाँ कितना हो रहा है ये भी हमें पता है। तो इस तरह से हमारी वैक्सीन्स बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही किफायती क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जिनसे कि हम टीका लगा रहे हैं वो क्या तालिका है और किन किन बीमारियों से हम बचाते हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ का पता चलते ही पहला टीका लगवा लेती है और 1 महीने बाद दूसरा टीका लगवा लेती है तो गर्भावस्था में टिटनेस और डिप्थीरिया इन दोनों बच्चों दोनों बीमारियों से वो स्वयं भी सुरक्षित रहती है और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो करीबन 6 सप्ताह का समय तक सुरक्षित रहता है। 6 सप्ताह के बाद हमारा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला एक बार प्रेगनेंसी में पूरा टीका करवा लेती है और विद इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स दोबारा उसको प्रसव होना है

0: हम टीईटी बूस्टर देते हैं तब हमें 2 बार टीके लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र एक टीका लगाना पर्याप्त है और ये गर्भ का पता चलते ही लग जाना चाहिए और इस टीके को हम बूस्टर का नाम देंगे और इस तरह से उसका टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है। बच्चों में अगर टीकाकरण की बात करें तो बच्चों में एट बर्थ जो हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हैं, जो अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, दोनों ही स्थानों पर BCG जो टीबी का टीका है इसकी पहली डोज, हेपेटाइटिस बी की 0 डोज, यानी कि बिल्कुल चूंकि जन्म के समय ही लग रही है और इसको शून्य इसलिए भी कहा जाता है कि ये 24 घंटे के अंदर ही लग सकती है। तो अगर बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में और वहीं पर उसको 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस बी की 0 डोज दे दी जाए तो इसका फायदा यह होगा कि अगर खुदा न खास्ता मां को हेपेटाइटिस बी पहले से बीमारी है तो बच्चे में ये ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह से तीसरी जो ओपीवी की डोज है वो हम देते हैं और ये सारे टीके बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले, मां के डिस्चार्ज होने से पहले अस्पताल में ही लग जाने चाहिए और बेहतर है कि लेबर रूम में ही या पीएनसी वार्ड में पहले 24 घंटे में ही ये टीके लग जाए। अगर किसी भी कारण से ये टीके वहां पर नहीं लगे हैं देन वी रिकमेंड की BCG का टीका तो आप साल भर तक लगवा सकते हैं, BOP भी 15 दिन तक लग सकती है, अन्यथा फिर जो OPV हमारी टीकाकरण में लगती है कार्यक्रम में वो लगेगी, लेकिन हेपेटाइटिस बी का टीका फिर आप नहीं लगवा सकते। जिन बच्चों को जो घर पे पैदा हुए हैं या ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पर टीकाकरण नहीं हो पाया है तो हम उन बच्चों को सीधे 6 सप्ताह की आयु पर 5 टीके देते हैं और 5 टीकों में ओपीवी जो पोलियो वैक्सीन है, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV जिस पर बात की थी अभी डॉक्टर अजय ने उसकी फर्स्ट डोज, रोटा वायरस वैक्सीन की डोज और PCV, ये 5ों टीके हम 6 सप्ताह पर देते हैं। 6 सप्ताह के बाद 4 सप्ताह के अंतराल पर यानी कि 10 सप्ताह पर हम 3 टीके देते हैं, BOPV2, Penta2, RVV2 और 14 सप्ताह पर फिर वही 5 टीके की नेक्स्ट डोज मिल जाती है जो 6 सप्ताह पर लगाए गए थे, यानी कि OPV, पेंटा, FIPV, RVV, PCV। 9 से 12 महीने पर हम मीजल्स और रूबेला का एक टीका देते हैं, वाइटामिन ए की खुराक पिलाते हैं, जैपनीज इंसेफलाइटिस जो प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में वो काफी प्रभाव रखता है और करीबन 42 जिलों में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं तो वहां पर जैपनीज इंसेफलाइटिस की फर्स्ट डोज देते हैं, PCV का बूस्टर भी हम देते हैं, जिस डोज को हम फर्स्ट और सेकेंड डोज को 6 और 14 सप्ताह पर दे चुके हैं उसका बूस्टर हम PCV का देते हैं और इसी तरह से FIPV जो फ्रैक्शनल IPV है उसकी भी 3rd डोज देते हैं। तो इस तरह से 9 से 12 महीने पर हम टीका देते हैं और अगर बर्थ डोज से लेके 9 से 12 महीने तक के ये सारे टीके किसी बच्चे को मिल जाए तो इस बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित भी कहते हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जितने भी टीके लगने हैं यदि वो सारे टीके इस बच्चे को मिल गए हैं तो हम बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित फुल्ली इम्यूनाइज कहते हैं। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, 16 से 24 महीने पर बूस्टर्स की नेक्स्ट डोज यानी कि DPT का बूस्टर, BOPV का बूस्टर, मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज और विटामिन ए, ये सभी हमें देना होता है और इसी तरह से 5 से 6 साल पर हम DPT का सेकेंड बूस्टर देते हैं उसको कवर करता है, यानी कि अगर 5 साल की उम्र तक 7 कॉन्टैक्ट्स में और हर कॉन्टैक्ट में ये सारे टीके लग जाएं तो बच्चा काफी हद तक सुरक्षित है और ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं ये या तो बिल्कुल नहीं होंगी और अगर हो भी जाएंगी तो उनका जो खतरा है, जो उनका उनकी धार है, उनकी जो पैनापन है जिसकी वजह से बच्चे की मौत तक हो सकती है या बच्चे को हॉस्पिटलाइज रहने की नौबत आएगी वो सब कम हो जाएगा। फिर हम 10 और 16 साल पर TD10 और TD16 देते हैं, ये सभी लड़के और लड़कियों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे 10 साल के और 16 साल के हम उनको दे रहे हैं। मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि अगली 24 तारीख से यानी कि 24 अप्रैल से जब इम्यूनाइजेशन वीक भी शुरू हो रहा है 10 मई तक हम लोग पूरे प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं जो कि क्लास 5 और 10 में आमतौर से होते हैं उन सभी बच्चों को TD10 और TD16 का टीका लगाने जा रहे हैं। ये पूरी कैंपेन पूरे प्रदेश में होगी। कि हम केवल अस्पतालों में ही टीका नहीं लगा रहे हैं, लगभग 92% जो टीके हैं, जो सत्र हैं, वो हमारे VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज में हो रहे हैं, जो आउटरी सत्र हैं। और शहरों में भी यही है, शहरों में भी हम अपने PHC, CHC और जिला अस्पताल के अलावा कई घरों में, कई मोहल्लों में कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, सेशन साइट्स हैं, वहां पर टीकाकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 92% तो आउटरीच के सत्र होते हैं, लगभग 5.4% सेशंस जो हैं वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, मेडिकल कॉलेज या और भी जो सब सेंटर्स वगैरह हैं, हम वहां पर करते हैं। 2.5% अन्य स्थान हैं और 0.5% प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो योगदान है टीकाकरण में वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो संस्थागत प्रसव शहरों में हो रहे हैं या जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं उनके टीके वहां पर लग रहे हैं, तो हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं और जो भी उनकी रिपोर्टें उसको भी शामिल करते हैं, टीका लगाते हैं। तो हम अभी WHO के आंकड़े में आपको दिखा रहा था कि 24-25 में लगभग 83% बच्चे तो फुल्ली इम्यूनाइज थे, लेकिन रिमेनिंग जो 17-18% बच्चे हैं वो हमारे पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। उनमें से कुछ तो लगभग 1-2% ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टीका लगवाया ही नहीं। हो सकता है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के हों, हो सकता है वो विरोधी परिवार हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई टीका नहीं लगवाया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरुआती डोज लेने के बाद, चाहे वो बर्थ डोज मिली हो, चाहे वो 6 सप्ताह पर मिली हो, उसके बाद उनका टीकाकरण कंटिन्यू नहीं हो पाया और दे आर पार्शली इम्यूनाइज, वो अधूरा टीकाकरण है। और ये अधूरा टीकाकरण या जिन बच्चों ने बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं लिया है, जब उनके परिवारों से बात हुई कि क्या कारण है कि आपने टीकाकरण नहीं करवाया है, तो कई कारण निकल के आए। कुछ ने कहा सर हमसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, लगभग 25% ने कहा कि हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। 33% ने कहा कि सर हमें टीकाकरण के बाद कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उनकी वजह से डर लगता है, बुखार आ जाता है, दर्द हो जाता है, रात भर बच्चा रोता है, तो ये कुछ कारण है, कहीं फोड़ा ना हो जाए, तो ये तकलीफें हैं, इसलिए हम बच्चे को टीका नहीं लगवाते। कुछ बच्चे यात्रा में होते हैं, कहीं गए हुए थे, मौके पे नहीं थे, शादी ब्याह में चले गए थे, कुछ बहुत खुलेआम मना कर देते हैं कि सब बीमार वगैरह हम कुछ नहीं, हम तो टीका लगवाएंगे नहीं, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लगवाया। कुछ में अवेयरनेस गैप है, उनको बताया तो गया टीका लगवाने, लेकिन उनको इतना नहीं लगता कि उनके लिए 3 बार लगाने की जरूरत है, एक बार टीका लग गया अब बाकी कंप्लीट करने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी हमारे भी ऑपरेशनल गैप्स हो सकते हैं कि हम जहां सत्र लगाना था ANM बीमार हो गई, वो नहीं लगा पाई, या और कोई कारण है, बाढ़ आ गया, तो ऑपरेशनल गैप्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का जो पार्शली इम्यूनाइज है या अनइम्यूनाइज है। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी हमने टीकाकरण नहीं किया है, यानी कि जो अनइम्यूनाइज है या जो पार्शली इम्यूनाइज है, जिनको पूरा टीकाकरण नहीं मिला, वो खतरे में है। और न केवल वो स्वयं खतरे में है, बल्कि अपने आसपास के और बच्चों में भी टीका न लगने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके प्रसार को करने में योगदान देते हैं। वो बच्चे जो इम्यूनिटी में कंप्रोमाइज हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उन बच्चों में भी खतरा ये पैदा करते हैं। जो वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर है उस पर भी बात करते हैं। मैंने भी एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि कुछ लोग टीका लगवाना ही नहीं चाहते, चाहे वो डरते हो AFI से, या उनको कोई भ्रम हो कि बच्चा नपुंसक हो जाएगा, या कुछ और समस्या है, वो नहीं लगवाना चाहते। कुछ लोग सरकारी सेवाओं से नाराज होते हैं कि सब कंट्रोल का राशन नहीं मिला था इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे, सब हमें कॉलोनी नहीं मिली इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये तो मतलब एक इस तरह की बात हो गई कि एक सर्विस नहीं मिली तो दूसरे को मना कर दिया, बट ओवरऑल दिस विल हैम्पर देयर ओन लाइफ, उनके अपना बच्चे के जो जीवन है उसके लिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इन वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले लोगों से रूबरू होते हैं, आशा आंगनवाड़ी और एनम तो स्वयं प्रयास कर ही रही हैं। इसके बाद ब्लॉक पर एक ब्लॉक रिस्पांस टीम बनी हुई है और वो ब्लॉक रिस्पांस टीम जो है उन लोकल इश्यूज को कि वहां उस लोकली कौन प्रभावशाली है या किसकी बात समझेंगे या क्या मान लिये राशन कार्ड के ही इश्यूज हैं तो उनको वो प्रशासनिक लोगों से अधिकारियों से मिलके सुलझाने की कोशिश करते हैं।
1: पोलियो में और नियमित टीकाकरण में फर्क नियमित का ही है, जो डॉक्टर मनोज ने बताया भी था। पोलियो आपने एक बार पिला दिया, अगली बार जब आए तब आपने पिला दिया, दैट्स ऑल। उसमें कोई ऐसा फॉलोअप नहीं था। बट फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन, अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली, एक विजिट कर ली, उसके बाद अगर आप छूट गए तो दैट इज इनकम्प्लीट।
2: शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या CHCs है, वहां पे प्रतिदिन टीकाकरण लग रहा है, जिसका कम्युनिटी में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि अब ऐसा नहीं है कि खाली वहां पे बुधवार और शनिवार को ही टीका लगाए जा रहे हैं, अब तो किसी भी दिन जाके लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग संडेज। जो हमारे UPSC हैं वो सोमवार को छोड़ के हर दिन टीकाकरण कर रहे हैं, और जो जिला अस्पताल है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, वहां पे मतलब पूरे 7 के 7ों दिन टीकाकरण किया जा रहा है। सांसद, एक और भी चीज दूसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज्यादातर शहर के लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अर्बन के जो UPSCs हैं उतने ज्यादा अच्छे से नहीं बने हुए, वहां पर टीकाकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड का सेंटर बनाने के लिए एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, जो हर जिले में स्थापित होना है। अभी तक हमारे पास लगभग 20 जिलों में 43 उन्नत किस्म के टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे उनको अच्छा सा एम्बियंस दिया जाता है, वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम्स है कि वेटिंग के लिए एक प्ले एरिया बना हुआ है, ताकि 30 मिनट तक अपने बच्चे को वहां पे छोड़ सकें, ताकि वैक्सीन के लगने से अगर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो उसको उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो वो भी एक अच्छा माध्यम रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पास अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं।
3: एक जो जैसे आपने भी कहा, माइग्रेशन की एक समस्या है, बच्चा चला जाता है और फिर हमें नहीं पता लगता कि उसको दूसरी जगह उतने उतने टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो ये कैसे देखा जाए कि बच्चे को सारे टीके लग रहे हैं, भले ही वो माइग्रेट हो गया है तो दूसरी जगह लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, या फिर वो आया है तो कितने लगा के आया है, इसके बारे में हम कैसे जानकारी लें? नंबर 1,
4: तो इसका सिंपल आंसर है यूविन। अभी हम लोगों ने एक यूविन ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने सारे बच्चों का टीका इस पे रजिस्टर्ड होता है, और ये ऑल ओवर इंडिया, ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो ये मोबाइल नंबर से लगभग इनका रजिस्टर्ड होता है, आधार लिंक होता है, कहीं भी टीका लगवाएगा तो वो एक मैसेज क्लियर बच्चे के फैमिली के पास भी आता है, और साथ में हमारी उस एनएम के पास आता है कि उसने टीका लगवा लिया है, तो क्लियर हो जाता है कि इसने बच्चे को टीका लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा, ड्यू डेट पे इसकी मैसेजिंग भी आती है, तो अब ये समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया।
5: एक तो जो हमारी हायर सोसाइटी है, वहां भी मैंने देखा है कि जैसे गवर्नमेंट में जो है 7 या 8 टीके हैं, जो भी अभी आपने बताया है 15-16, लेकिन जब आप जाएंगे हायर सोसाइटी में या प्राइवेट सेक्टर में, जब आप जाएंगे टीकों के लिए, तो वहां पे कई सारे टीके हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से और भी ज्यादा है। तो क्या वो सभी भी जरूरी हैं जो एक्स्ट्रा टीके वहां पे लगवाए जा रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि वहां पे एक चीज और भी कही जाती है कि पेनलेस टीके हो गए हैं, जिससे बच्चों को दर्द नहीं होगा, और जो सरकारी टीके जो मुफ्त में लोगों को मिल रही है, उसके लिए वहां पे 2,500-2,500 तक एक टीके के पे करने पड़ते हैं, कहीं 5,000 भी होता है। तो क्या वाकई में ऐसे टीके हैं जो पेनलेस होते हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हैं भी, लेकिन अगर हैं तो प्लीज आप बताइए हमें इसके लिए।
4: देखिए, सवाल सोना जी आपका बहुत ही अच्छा है, मेरा ख्याल है हम सभी लोग इस पे जवाब देना चाहेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अभी हमने आपको एक बीच में आप स्लाइडों में देखा होगा, नटागी की बात की थी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, वो
5: जी
4: डिसाइड करती है कि किसी डिजीज का बर्डन कितना है, उस वैक्सीन को लाने से मैक्सिमम बेनिफिट हमारी जनता को कितना मिलने वाला है। तो
5: जी
4: नेशनल UIP शेड्यूल में, नेशनल शेड्यूल में हमेशा वो टीके लाए जाते हैं जिसमें हम कम पैसों में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे पाए और मैक्सिमम हम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से वो डिसाइड होता है कि उसके बाद डिजीजेस बहुत हैं, वैक्सीन पूरी दुनिया में काफी, जब हमने बात की तो 20 डिजीजेस की बात की जो वर्ल्ड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं, बट हम लोग नेशनल UIP में इसमें 12 डिजीज की बात करते हैं तो यानी 8 अभी भी बची हुई हैं। तो ये चूंकि रिसेंटली अभी ये वैक्सीनेशन अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में है तो डेफिनेटली वो महंगी होंगी। और दूसरा जो सवाल था आपका पेनलेस और उसकी बात कर रही है, तो ऐसी सुई का इंजेक्शन का दर्द तो सभी को होने है, प्लस जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर थोड़ा सा जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से दर्द होता है। डेफिनेटली एक दो वैक्सीन ऐसी हैं, उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि मतलब उसको पेनलेस कह सकते हैं, बट उसमें भी पेन होता है, क्वांटिटी ऑफ पेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो अपनी चीज को जैसे होता है ना, प्राइवेट में अगर हमने दुकान खोल के बैठे तो हमारी चीज बहुत बढ़िया है साहब, और गवर्नमेंट तो ऐसे कर रही है। अगर गवर्नमेंट ये एक साथ देखिए 57 लाख बच्चों को टीका लगा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख, मैंने कई अच्छे अच्छे पीडियाट्रिशियन देखे, वो खुद ही कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई देखो मेरे यहाँ तो ये 3,000 का लगेगा, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें मैं आपसे, और आप सरकारी में चले जाओ फ्री लगता है, तो वो खुद ही मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हारा पैसा है तो आओ मेरे पास लगवाओ, नहीं तो सरकारी में जाओ। कोल्ड चेन का मेंटेनेंस देखा किस तरीके से हम लोग, कितना बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चरर से हमारे पास वैक्सीन बेनिफिशियरी तक जाती है, और हर जगह टेम्परेचर लगल लगा हुआ है कि 2 से 8 डिग्री पे मेंटेन हो रही है।
5: सर एक मिथ और भी है कि ये कहते हैं हर वैक्सीन के बाद हल्का फीवर आना आम बात है, बट उसमें ये भी कहते हैं कि जो पेनलेस वैक्सीन है उससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे मतलब सिकाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, फीवर भी नहीं आएगा, तो ऐसा भी है क्या?
0: केवल पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन है वो मेन फीवर का रीजन है, बाकी बहुत सारे उस पे फीवर नहीं होता है, कम ही होता है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डोज हम 6, 10 और 14 वीक्स पे दे रहे हैं पेंटावेलेंट, उसमें हमारा जो ये फीवर और पेन का कॉम्पोनेंट है वो आता है, बाकी वैक्सीन में फिर हमें ज्यादा पैरासिटामोल सिरप या इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। एक चीज और जो आप

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूले 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज इलाज दोनों संभव है बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
8: गोंडा शहर की धड़कन।
9: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
10: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज जे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? एंड जल्दी से आप सभी को बता दूं कि आज हमारे बीच में एक नया नाम आया है, जो कि है पंखुड़ी। और इतनी प्यारी सी एक पिक्चर भी लगी हुई है, और उस पिक्चर में है, मुझे लग रहा है एक माता जी का फोटो है, राधे राधे। ओ माई गॉड, कल मैंने यही एक्चुअली सीन देखा था। किसकी स्टेटस पे देखा था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये इतनी प्यारी मूरत है। देखो अंशिका
11: जी,
10: कि मैं क्या बता दूं, आंखें देखो जैसे बोल रही हैं बिल्कुल, और लिखा हुआ है राधे राधे। ओ माय गॉड, मतलब देख करके यार क्या ही ये मूरत बना दी है। और अनुष्का जी एंड मीनू जी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो जिसका नाम है
12: सुन सहेली
10: विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड इस प्यारे से मौसम में, क्योंकि धूप तो कहीं ना कहीं निकली ही होगी, आई थिंक सो। और क्योंकि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर बदरी है तो हम लोग, मतलब उस दिन धूप नहीं निकलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। धूप अपने टाइम पर है, और धूप निकल चुकी है प्यारे से मौसम में। आइए एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
12: शुभ दोपहरिया।
13: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और आ गए हैं हम लेकर के फिर कुछ प्यारा सा। एक दिन है, एक प्यारी सी शुरुआत है, लेकिन आज इस प्यारी सी शुरुआत में एक बहुत ही प्यारी सी एक महक भी मिली हुई है, जो कि हमारे रिश्तों की, खुद को बेहतर से और बेहतरीन बनाने की, और कुछ ऐसे पॉइंट्स को उठाने की जिनकी की कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंस भी होती है। लेकिन इन सबसे पहले चलेंगे सीधा हमारी रिश्तों की प्यारी सी एक गलियों में, और उन गलियों में लेकर जाएगी आपको हमारी पोएट्री।
10: और पोएट्री में आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही प्यारा सा है, जो है रिश्तों की महक। रिश्तों की महक कह लें, या फिर हम ये कह लें कि एक चीज़ तो है, आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं अभी इसके बाद में, कि लोग ना, ख़ास करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुरुष हैं, कि रिश्तों को ना वक्त रहते अहमियत नहीं देते हैं। और जब उनके हाथ से वक्त निकल जाता है फिर वो रोना पीटना ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो उन सभी के लिए आज की पोयम कुछ ऐसी है कि उस खूबसूरत रिश्ते को, चाहे वो माँ का है, चाहे वो बहन का है, बीवी का है, प्रेमिका का है, या फिर बिना नाम का भी कोई रिश्ता है ना, उस रिश्ते को, सभी रिश्तों को आप अहमियत दें, उन रिश्तों की महक को पहचानें। क्योंकि एक दिन अगर उस रिश्ते की महक कहीं खो गई ना, तो फिर आप जिंदगी भर आपके पास पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से चलिए हम आज की पोयम को शुरू करते हैं। रिश्तों की महक, वो है, रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे अनमोल। रिश्ते होते हैं मोतियों की माला जैसे अनमोल, इनके आगे फीके पड़ जाते हैं दुनिया के सब बोल। सुख दुख की धूप छाव में ये देते हैं सदा साथ, थाम लेते हैं बिना कहे ही अपनों का ये हाथ। कभी खट्टी मीठी तकरार तो कभी असीम दुलार, रिश्तों की जमीन पर हो ही पनपता है सच्चा प्यार। विश्वास की डोर से बंधा होता है इनका हर सिरा, विश्वास की डोर से बंधा होता है इनका हर सिरा, जैसे अंधेरी रातों में चमकता कोई अनमोल हीरा। दूरियां चाहे जितनी भी आ जाएं जीवन की राहों में, दूरियां चाहे जितनी भी आ जाएं जीवन की राहों में, सच्चे रिश्ते हमेशा महफूज रहते हैं दिल की बाहों में। बिना स्वार्थ के निभाना ही इनकी असली पहचान है, इन्हीं से सचती हर धड़कन और बसती इसमें जान है। वक्त की आंधियों में भी जो कभी ना टूटने पाए, वक्त की आंधियों में भी जो कभी ना टूटने पाए, वही रिश्ते जीवन के हर सफर को बेहद खूबसूरत बनाए। सींचते रहो इन्हें हमेशा अपनी मीठी सी मुस्कान के, सींचते रहो इन्हें हमेशा अपनी मीठी सी मुस्कान से, वही वो सौगात है जो हमें मिलती है आसमान से, वही वो सौगात है जो हमें मिलती है आसमान से। आसमान का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि हमें कहीं से टपकती हैं वो सौगातें, यहाँ पर इस पूरी पोयम का जो एक भावार्थ निकल के आ रहा है कि जो रिश्ते होते हैं वो बड़े ही अनमोल होते हैं। किसी का किसी से रिश्ता होता है, किसी का किसी से बॉन्डिंग, जो अनचाहे रिश्ते भी, अनचाहे का मतलब होता है कि ना उसमें ब्लड रिलेशन होता है, ना हम एक दूसरे को जानते होते हैं, ना हम कभी मिले होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम कितने करीब होते हैं। तो ऐसे रिश्तों को भी संभाल के रखने का जो हुनर रखते हैं, उसकी ये पूरी सौगात हमें ईश्वरीय देन होती है। और जो लोग इस रिश्ते को संभाल के रखते हैं ना, वो उन पर भी ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। आज के इस प्यारे से सेगमेंट में जो कि प्यारी सी पोयम आज मैंने आपको बताई, वो एक सिर्फ पोयम नहीं है, हम सभी के दिलों की भावनाएं होती हैं। एंड मैं बता दूं कि हर दिन जो हम लोग पोयम रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ लेकर के आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ के नहीं सुनाते हैं आपको, हम अपनी फीलिंग जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं आपके साथ में। तो उस फीलिंग को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ना, तो उस फीलिंग में जाकर के आपको एक दो पॉइंट, एक दो मैसेज तो बनते हैं भाई, कि हाँ कुछ फीडबैक देना चाहिए। तो इस प्यारी सी रिश्तों की महक की जो एक बगिया है, आज हमने आपको अभी अभी एक फूल उसमें से तोड़ के दिया है, एंड बहुत सारे अभी बगीचे में फूल बाकी हैं, हम बारी बारी सब बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लेते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
13: तो आज जैसा कि शुरुआत ही बहुत प्यारी और थोड़ी सी इमोशनल भी हुई है, जैसे कि मैम ने अभी आपको पोएट्री बताई, तो आज कुछ रिश्तों की महक को ही सींचते हुए हमारे पास रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी है, जो कि आज का क्या है चलिए जानते हैं। आज का हमारा रियल लाइफ फैक्ट जो है वो रिश्तों को लेकर है कि दूरी से ज़्यादा चुप्पी खतरनाक होती है। कहने का मतलब यह है कि रिश्तों में कभी भी अगर आपके बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, यानी कि आप दूर हैं या कहीं अलग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, तो एक बार को आपका रिश्ता नहीं टूटता है, वो चल सकता है। लेकिन रिश्ते दम तब तोड़ देते हैं जब दो लोगों के बीच आपस में बातचीत बंद हो जाती है। चुप्पी धीरे धीरे गलतफहमियों को बढ़ाती है, जबकि खुल कर की गई बात बड़ी से बड़ी उलझन को भी सुलझा देती है। बिल्कुल सही है, देखिए जिंदगी का आज एक जो सच है, रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है, वो हम आपको रिश्तों से ही कुछ चुरा कर बताना चाहते हैं कि रिश्तों में चुप्पी की कोई जगह नहीं होती। आपको चुप नहीं रहना है, अगर कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्व करना है तो आप खुल करके बात करके सॉल्व कर लीजिए, वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हम रिश्तों में चुप हो जाते हैं कि अरे रहने दो, अगर दो लोगों में नहीं बनती है तो वो बात ही ना करें। बट वो कोई एक सॉल्यूशन नहीं है। आप बात नहीं करेंगे तो उससे आपके रिश्ते कहीं बेहतर नहीं होंगे बल्कि और बिगड़ते चले जाएंगे। स्पेशली तब जब रिश्तों में कोई गलतफहमी हो, कोई शक हो, कोई उलझन हो, वहाँ पर बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हो सकता है कि सिक्के का जो सिरा हम देख रहे हैं उसके अलावा भी कोई सच्चाई हो। हमेशा हम क्या करते हैं रिश्तों में कि हमें जो दिखता है, हमें जो समझ में आता है, हम उसी को सही मान लेते हैं कि यही सही है। लेकिन जब आप दूसरे से बात करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उसकी साइड से क्या है, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है, वो किन बातों को क्लियर आउट करना चाहता है। हो सकता है दो लोगों के बीच कुछ ना हो, सिर्फ सिचुएशन की गलत फहमियां हो।
10: साथ में एक बात मुझे और कहनी है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि 9 और 6, जब आप 9 लिखते हैं तो हमारी तरफ से वो 9 लगता है, लेकिन जो सामने अगर आप खड़ा रहेगा कोई इंसान, कोई भी हो, तो उसको तो वो 6 दिखेगा ना, यानी कि हम अपनी तरफ से भी हम सही हैं लेकिन सामने वाला भी अपनी तरफ से सही ही है, क्योंकि मुझे तो वो 9 लग रहा है और वो बोल रहा है 6 है, तो हम उस पे बहस नहीं कर सकते। या तो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ ले आओ या वो हमारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेकर के आए कि देखो ये 9 है, ये 6 है। और अगर एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं तो हमेशा से भावनाएं गलत नहीं होती हैं, फीलिंग्स गलत नहीं होती हैं, किसी का व्यू गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारी तरफ से वो 9 है और उसकी तरफ से वो 6 है, बात तो दोनों की सही है ना।
13: बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं कई बार रिश्तों में आधा से ज्यादा जो रिश्ते खराब होते हैं या जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पूरी की पूरी सिचुएशन पर डिपेंड करती है। कई बार दो लोग अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं बट वो सिचुएशंस जो होती हैं, देखिए अभी जैसे मैम ने बताया ना कि वो उसकी साइड से 9 है और आपकी साइड से वो 6 है, सिचुएशन दोनों की सही है क्योंकि हम अपनी अपनी जगहों से देख रहे हैं ना, अपने अपने पॉइंट से। दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग होते हैं, ये आप हमेशा मान के चलिए। हमेशा कहा जाता है अरे नहीं रिश्तों में है तो दो लोगों की सोच एक जैसी होगी, बट ऐसा कभी नहीं होगा, रेयरली भी नहीं होगा कि दो लोगों की सोच कभी एक जैसी हो, क्योंकि सोच का अलग होना साइंटिफिक है। अगर दो इंसान अलग अलग हैं तो उनकी सोच, तरीका, सब कुछ अलग होगा। तो एक या तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी साइड को रिस्पेक्ट करें, समझें, अंडरस्टैंडिंग रखें, और अगर वो नहीं हो सकता है तो कोशिश करिए कि अपने रिश्ते में आप सिचुएशंस को मैनेज कर सकें। देखिए कई बार हालात जो होते हैं ना वो रिश्तों को बहुत ख़राब करते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी उन्हें रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, बट अगर कई बार हालात इतने ख़राब हैं कि रिश्ते रिपेयर हो ही नहीं सकते, कहीं कहीं सिचुएशन ये भी आ जाती है कि हम सही नहीं कर सकते, तो जहाँ पर आप सही नहीं कर सकते वहाँ पर छोड़ देना बहुत बेस्ट होता है। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जैसे बहुत लोग कहते हैं ना अरे नहीं खराब हुआ तो क्या हुआ, रिश्ता है। लेकिन जो रिश्ता हद से भी ज़्यादा खराब हो जाता है वो धीरे धीरे निभाने वाले को और रखने वाले को भी खराब कर देता है। आपने आग देखी होगी, आग में से धुआं निकलता है, अगर धुएं के थोड़ा सा नज़दीक हम खड़े होते हैं या आग के बहुत पास खड़े होते हैं तो हमें आँच महसूस होने लगती है, भले वो हमसे दूर है लेकिन क्या मिल रही है, उसकी गर्मी हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। रिश्तों में भी कई बार इसी तरह होता है, जब गलत फहमी, शक या कुछ भी आपके रिश्ते में ये सिचुएशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसकी तपन धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें ही जलाने लगती है। भले आप मत कहिए, आप कहिए बहुत अच्छा है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर जो वो एक फीलिंग फील होती है ना वो सिर्फ निभाने वाला या उस रिश्ते को रखने वाला ही फील कर सकता है।
10: एग्जैक्टली। तो रियल फैक्ट्स में आज एक लाइन में कंक्लूजन क्या होगा इसका?
13: एक लाइन में कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर आपकी अपनी बात है, आपकी सिचुएशन सही है, आप सही हैं अपने अंदर, मतलब हार्ट ऑफ सोल आपको लगता है कि आप ठीक हैं, तो आपको चुप नहीं रहना है, उस पॉइंट को बोलना है। और अगर आपको लगता है कि आप गलत हैं या सामने वाला सही है तो फिर उस हिसाब से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कर सकते हैं रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। एक शब्द में अगर मैं इसको कहना चाहूँ तो चुप्पी तोड़िए, बोलिए। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि अगर मौन से बड़ी कोई ढाल नहीं होती तो आपकी शब्दों से बड़ा कोई अस्त्र भी नहीं होता। तो सोच समझ कर अपने रिश्तों में दोनों ही चीज़ों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। ये मतलब है कहने का।
10: तो अभी आप लोगों ने जाना रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, तो चलिए अब यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि आज सभी को पता है कि फ्राइडे है, फ्राइडे मीन्स ब्यूटीफुल को और ब्यूटीफुल बनाने का डे। तो बस हम यूं गए यूं आए, लेकिन उसके पहले सुनना पड़ेगा आपको एक प्यारा सा गाना। तो बस हम यूं गए और यूं आए, तब तक के लिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अभी एक बात बताने जा रहे हैं जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज जैसा कि हमारा सेक्शन होता है रिश्तों पर काम करने का, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि उन रिश्तों को कैसे ठीक किया जाए जो हमेशा से अपनी मनमानी में चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सब कुछ सही होते होते हुए भी कुछ ऐसे पॉइंट हो जाते हैं जहां पर रिश्ते अपनी मनमानी करने लगते हैं।
1: आप कुछ बता रही थी,
0: तुम दिख नहीं रही हो।
1: नहीं, मैं दिख नहीं रही हूँ, वो तो ठीक है, बट आपने कहा तो मुझे कुछ रिमेम्बर हो गया, इसलिए
0: क्या क्या क्यों हंसी आई बताओ मुझे।
1: जैसे आपने भी बोला ना, तो मुझे किसी का फेस याद आ गया। मतलब मेरी एक फ्रेंड है, थोड़ा वो भी ऐसे ही है। मतलब मैच्योरिटी जो एक रिलेशनशिप में किसी से भी हो, मम्मी पापा सहेली फ्रेंड दोस्त कोई भी हो, उसमें होनी चाहिए
0: मनचाही।
1: थोड़ी यू नो, मतलब थोड़ी क्या कहें, वर्ड
0: मनचली,
1: थोड़ी मनचली
0: मनचली, जो मनचाहे रिश्ते होते
1: हैं। हाँ, वो अपनी तरीके से चीजों को थोड़ा यू नो ढालती है, वैसी है। तो आपने जैसे वो पॉइंट लिया तो मुझे उसी का फेस याद आ गया, तो इसलिए मुझे थोड़ा हंसी आ।
0: तो क्या होता है मुझे बताओ पहले, कि मतलब क्या होता है ऐसे रिश्तों के साथ, फिर क्या होना चाहिए
1: ऐसे रिश्तों के साथ। फिर देखिए, आपकी फीलिंग वो नहीं है, बट जैसे जो लोग मैच्योर नहीं होते हैं, अगर आपको आपका कोई भी रिश्ता चलाना है, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, फैमिली, तो एक मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार रिश्तों में जब हम मैच्योर नहीं होते हैं और हम सोचते हैं सब हमारे मन से होगा, तो वैसा नहीं होता है। और कहीं ना कहीं वो आपके रिश्तों को धीरे धीरे धीरे धीरे ही बट एक ढलान पर ले आता है। और लोग ये सोचते हैं कि इसको रहने दो, और वो फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैच्योर नहीं है। और रिश्तों में जब हम मैच्योर नहीं होते, मान लीजिए कोई सीरियस बात हो, मैं अपनी जगह या अपने को उसकी जगह रखकर सोचूं, तो मुझे शुरू से, मतलब देखिए, बड़े बचपना करें तो नहीं अच्छा लगता है, बचपना बच्चे करें तो ही अच्छा लगता है। अच्छा, कोई बच्चा लॉलीपॉप खाता है तो हम बड़ी क्यूट नजर से उसको देखते हैं कि अरे कितनी प्यार से लॉलीपॉप खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है, उसके ऊपर सुटेबल है कि वो लॉलीपॉप खा रहा है। कोई अभी 25 साल का इंसान हो या 25 साल का लड़का, मेल फीमेल कोई भी हो, वो लॉलीपॉप खा रहा हो, तो अगर अगला इंसान देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा कि ये कोई इनकी एज है लॉलीपॉप खाने की? या आप बारिश में भीग रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, तो बच्चों को लोग बड़े प्यार से उस टाइम ट्रीट करते हैं।
0: लेकिन हम एक तरफ तो ये भी कहते हैं कि अपने दिल को हमेशा बच्चे की तरह रखना चाहिए, दिल तो बच्चा है जी,
1: दिल तो
0: फिर तुम ये क्यों कह रही हो कि वो लॉलीपॉप नहीं खा सकता है, बारिश में भीग नहीं सकता?
1: कहने का सेंस वो नहीं है मैम, सेंस बस इतना निकल करके आता है कि दिल तो बच्चा है, और दिल को बच्चा रखने का मतलब ये नहीं होता है कि
0: आप बच्चों वाली हरकतें करें।
1: दिल को बच्चा रखने का मतलब होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, उनको आप डांटोगे, दो मिनट बाद अगर आप कुछ उनको टॉफी दे दोगे, बिस्किट दे दोगे, तो वो उसका बुरा नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल एक स्मूथ वे में निकल जाता है। लेकिन हम बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो आ जाता है ना कि अरे उन्होंने मुझे कैसे कहा और वो मुझे ऐसे कैसे कह सकते, तो वो नहीं होना चाहिए इंसान में। और न कि बचपन का मतलब ये होता है कि आप इस तरह की हरकतें करें। मेरे हिसाब से अगर अपना कोई भी रिश्ता आप चलाना

0: 5 लोगों के साथ बैठी है और मेरी एब्सेंस में वो उन लड़कों से बात कर रही है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर रही है, या फिर उस लड़की की वाइब्स ऐसी हो जाती है कि जब वो चल रही है तो वो लड़कों की नज़र उस पर पड़ती है और वैसी वाइब्स हो जाती है, मतलब लड़की फिर वो ठीक नहीं है। फिर इस रिश्ते को क्या नाम देते हैं, क्या होना चाहिए?
1: कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मतलब ये देखिए, पहली बात तो कि आप भी तो जा रहे हो ना, 5 लड़कियों के बीच में जॉब कर रहे हो, वो भी आपको देखती है, ऐसा तो होता नहीं।
0: तो ये पुरुष प्रधान देश में ये भी तो है ना कि वो एक पुरुष है, वो एक लड़का है, वो कुछ भी कर सकता है।
1: हाँ, ये होता है मैम, सोसाइटी है, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं, किसी एक को नहीं मैं कह रही हूँ, सभी की थिंकिंग होती है। लेकिन देखिए, एक लड़की जा रही है, जॉब कर रही है, वो आपका एक पॉइंट बनता है कि आप उस अपने ट्रस्ट को बना करके रखिए कि वो भले ही लाख चीजें वो जा रही है,
0: तो मतलब इसमें लड़की की गलती है कि वो ट्रस्ट नहीं बना पाई।
1: नहीं, यहाँ लड़के की गलती है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाया
0: ना,
1: हम बना नहीं
0: पाए। लड़की पूर्ण रूप से कमिटेड है,
1: वो बना नहीं पाए।
0: वो लड़की पूर्ण रूप से कमिटेड यहाँ तक है कि उसने वो जहाँ भी काम करती है, इट मीन्स मैंने देखा है, सुना है कि वो वहाँ के लोगों को कभी किसी को भाई बना लेती है, कभी किसी को बेटा बना लेती है, कभी किसी को मतलब सर की नजर से देखती है, मतलब कुछ नहीं ऐसा है, फिर भी
1: वो एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है,
0: वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और उसकी एक अलग पहचान भी है कि मतलब वो एक ऐसी लेडी है कि भाई कुछ भी हो जाए बट वो ये काम नहीं करेंगे, उनके उन्होंने अपने आप के पूरे दायरे भी बना के रखे हैं, एक बाउंड्री बना के रखी है। फिर भी अगर वो शक के दायरे में है तो उस इंसान के साथ रहना चाहिए या उसको
1: छोड़ देना चाहिए? हम समझ गए मैम, पहले तो नहीं रहना चाहिए। और एक पॉइंट मैं बता,
0: क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत, आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वाली जरूरी
1: एक
0: है।
1: एक कहावत होती है कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, यानी कि जैसी आपके मन में भावना होती है वैसा ही हमें सामने वाला दिखाई देता है। अगर नेगेटिव है तो वो लाख अच्छा इंसान होगा, करोड़ों गुना आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी सिर्फ बुराइयां दिखाई देंगी। अगर आप बहुत अच्छा इंसान समझते हैं किसी को, मान लीजिए किसी का भी पॉइंट ले ले, तो वो मुझे अच्छा लगता है ना, इसलिए मुझे उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देंगी,
0: क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं। मैं हमेशा से बीके शिवानी को सुनती हूँ, मतलब मेरी आदत हो गई है, मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो करती हूँ। तो कल मैंने एक चीज सुना कि पता है, जो चीज अगर ऐसे वाले होते हैं ना, तो वो उसके संस्कार होते हैं, यानी कि उसके संस्कार हैं, वो आपको गलत समझ रहे हैं। घर में भी हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है, भाभी और नंद का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है, माँ बेटी में हो सकता है, बेटे बाप में हो सकता है,
1: किसी
0: कोई भी रिलेशन में आप देख लें। तो अगर आपको जिस मुहूर्त में कोई देख रहा है तो वो उसके संस्कार हैं। आपका अकाउंट सही है, आप उसके अंदर कोई गलती नहीं देख रहे हैं ना, वो आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं दिखती, तो पता है रिप्लाई क्या आता है, मेरे अंदर कोई गलती है ही नहीं, इसलिए आपको दिखती नहीं है।
1: देखिए कहते हैं ना,
0: इसका सलूशन क्या है? फिर लगता है कि यार या तो अपने आप को कुछ कर डालो, जिसने ये मुझे प्रॉब्लम बताई है, मैं अभी वो सुन रही होंगी क्योंकि मैं उनका नाम यहाँ रिवील नहीं करूंगी, तो मुझे लग रहा था कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे ही बात की जाए। आप लोग सुन रही है ना, प्रीति जी, मनी जी, मीनू जी, अनुष्का जी एंड पंखुड़ी एंड और मेरे डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं और प्लीज इसमें प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ये आम जनता में, आम लोगों में ये चीजें बहुत पाई गई हैं, जिसको सफर एक अच्छी लड़की है, मतलब लड़कियां हैं वो सफर करती हैं।
1: जी, तो जैसे कि अभी मैम ने बताया ना, तो मैंने आपको बताया कि देखिए, कोई इंसान खूबसूरत नहीं होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत सुंदर नहीं होता है, लेकिन अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो हम कहते हैं ना, तुम दुनिया में सबसे खूबसूरत,
0: उसकी सारी कमियां छिप जाती
1: आपको दिखती होंगी या बाहरी जो भी है उन्हें दिखती है, लेकिन अगर हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप माँ बच्चे का रिश्ता ले लीजिए, एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बेहतर ही होता है, उसमें उसे कोई ऐप कोई गलतियां नहीं दिखाई देती है, और अगर दिखाई भी देती है तो वो उन्हें सुधारना चाहती है, ना कि अपने बच्चे को हम अच्छा हमारे बच्चे से गलती होती है तो हम उसे एक थप्पड़ मारते हैं, पर हम जान तो नहीं ले लेते हैं, हम चाहते हैं वो बेस्ट में भी बेहतर बन जाए। तो ये ठीक है, लेकिन एक जो हस्बैंड वाइफ का, या हम ये कह लें कि जो दो लोगों में रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप है या जो भी है, बस दो लोगों में रिलेशनशिप है, अगर हम इस तरह इस बात को लें, तो देखिए किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा टोका टाकी करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, ज़रूरत से

0: ज़्यादा शक करेंगे, हर पॉइंट पर पॉइंट आउट करेंगे, एक इंसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि
1: और अगर कोई कर रहा हो तो यानी उसका फेथ और उसका लव जो है वो बिल्कुल प्योर है ना?
0: ना,
1: अरे कोई बर्दाश्त कर रहा है तो उसका प्योर है ना लव,
0: तो वो तो प्योर है, लेकिन वो सीमा कहाँ तक है? आपको कोई पिंच करता जाए कब तक सहोगे? कभी वो पॉइंट आएगा कि हम बोल देंगे, क्योंकि एक सीमा होती है किसी भी रिश्ते में। हम हमारे मम्मी पापा से नहीं लड़ते, हम हमारे घर पे बड़ों से नहीं लड़ते, या जिनसे भी आपका रिश्ता प्योर है उनसे आपकी लड़ाई जम के होती होगी। ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरी होती है,
1: मेरी भी होती है।
0: मेरी फ्रेंड, मेरे मम्मी पापा, मेरे जितने भी सर्कल में है उनसे मेरी बहुत
1: बढ़िया वाली होती है।
0: जब चढ़ जाती है सर पे बात तो फिर लड़ाई होती है, भले हम बहुत अपने आप को वो करते नहीं अरे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये एक एटीट्यूड बाहर वालों के साथ होता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं ठीक है। हम अवॉइड करते हैं कि इनसे हम नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारा वो हक नहीं है, लेकिन जिन रिश्तों पर राइट है उन रिश्तों पर हम खुल के लड़ते हैं और सामने वाले को खुल के 10 बातें भी बोलते हैं कि जाओ जो तुम्हें, क्योंकि हम जानते हैं कि वो रिश्ते कहीं नहीं जाने वाले, वो आज नहीं तो कल हमें समझते हैं। मैं अपनी एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि मेरी फ्रेंड के साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, मतलब 5-6 साल से हम लोग साथ पढ़े हैं और आज इतना टाइम हो गया। मैं उसको खूब सुनाती हूँ, मतलब जी भर के जो भी मेरे मुंह में होता है मैं ये नहीं सोचती हूँ कि वो क्या सोचेगी, और उसका यही रिप्लाई मेरे लिए भी होता है कि वो नहीं सोचती है कि अंशिका क्या सोचेंगी बाद में, उसके जी में जो आता है वो बोलती है। और हम लोगों का रिश्ता ऐसा है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उसके बिना मैं नहीं एग्जिस्ट कर सकती हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो मैं जाती हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ आती हूँ, मतलब मैं अपनी बात भी करूँ, तो उसका मुझ पे प्रॉपर फेथ है, मेरा उस पे प्रॉपर फेथ है, लेकिन हम एक दूसरे के रिश्ते में कभी, आज तक कभी नहीं हुआ है कि मैंने उसको पूछा हो तुम कहाँ गई थी और उसने मुझे पूछा हो कि तुम कहाँ गई थी। एक प्रॉपर फेथ है और हम एक दूसरे की लाइफ में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बस जब मिलते हैं तब बातें करते हैं। देखिए, अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो एक पॉइंट ये भी होता है कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं उनके ज़्यादा पास जाने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। थोड़ी दूरी होगी आपका रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और अगर कोई आपको फिर भी ऐसे पिंच कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं छोड़ देना बहुत बेहतर होता है, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो आप बेटर वे में जा पाएंगे।
1: ठीक है, तो अंशिका यहाँ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के, और इस टॉपिक का जो एक कंक्लूजन निकला है वो बहुत ही खूबसूरत निकला है कि अगर आप किसी से रियल लव करते हैं ना तो थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए।
0: इससे आपके रिलेशनशिप, हम कहते हैं ना दूरियों से खराब होता है, नहीं, दूरियों से
1: एक स्पेस देना भी जरूरी होता है,
0: बेहतर हो जाता है।
1: हाँ, तो चलिए हम भी आपको देते हैं स्पेस क्योंकि हम भी आपसे करते हैं बहुत प्यार। तो इस सॉन्ग के बाद आएंगे, हम लौटेंगे एक नया टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के दिन का नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि आज है ब्यूटीफुल को और ब्यूटीफुल बनाने का एक प्यारा सा मौका। तो भाई आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे केयर पे, अपनी सेल्फ केयर पे बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी केयर करना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे दुनिया वाले क्या, हमारे घर वाले अपने आप को सम्मान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए सेल्फ रिस्पेक्ट करना और सेल्फ केयर करना इट्स अ मोर इम्पॉर्टेंट।
2: बिल्कुल, दूसरों को मनाते मनाते मैं भूल गया हूँ खुद को मनाना। अब जाना कि सबसे पहले और सच्चा रिश्ता खुद से होता है। अपनी भावनाओं का आदर कर अब मैं खुद को गले लगाऊंगा। दुनिया की इस भीड़ में सबसे पहले अपनी शांति बचाऊंगा। अपनी खुशियों के लिए अब किसी का इंतज़ार नहीं है। मैं जैसा भी हूँ अनमोल हूँ। खुद से अब कोई गिला नहीं है। इन बहुत ही प्यारी सी चार लाइनों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि मेरा खुद से नाता है। बिल्कुल, देखिए कई बार क्या होता है ना कि अभी जैसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक पे बात की तो कंक्लूजन क्या था कि रिश्तों में दूरी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक उसी तरीके से आपकी अपने खुद से, जो खुद की एक जो होती है उससे दूरी बहुत खतरनाक होती है। हम दूसरों में इतना उलझ जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं, पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब आप अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। जो खुद खुश नहीं है वो दूसरे को खुश रख ही नहीं सकता है, और खुश रखने की भी बात नहीं आती है। आप अपने रिश्तों में वो एक खुशी वाली फीलिंग तब तक फील नहीं करेंगे जब तक आप खुद को, खुद की केयर नहीं करेंगे। तो आज कुछ टिप्स हैं सेल्फ केयर के लिए।
1: तो सेल्फ केयर में सबसे पहले मैं टॉपिक बोलूंगी और उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टॉक्सिक लोगों से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिविटी। तो भाई टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना मैं क्या बता दूं, मैं मेरी जिंदगी में तो 99.9% टॉक्सिक लोगों से ही मेरी मुलाकात होती है। 1% में मेरी माँ है और मेरे दो बच्चे हैं जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो टॉक्सिक नहीं है। अदरवाइज मेरी लाइफ में सभी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, नेगेटिव फैलाते हैं। और मतलब आज का पॉइंट जो निकला है ना, मुझे लग रहा है वो मेरे लिए ही है कि जो लोग आपको हमेशा कमतर महसूस कराते हैं, अब मैं काउंटिंग करूंगी कि जो मुझे कमतर कौन महसूस, कमतर का मतलब होता है कि आपको दूसरों से कम आंकना, तो महसूस कराते हैं या आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं,
2: होता है
1: सुखा देते हैं आपकी ऊर्जा को, उनसे तो आप जस्ट से जस्ट दूरी बना लें।
2: बिल्कुल,
1: खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपकी सराहना करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तारीफ का मतलब है आपको पुश करना, वो तारीफ नहीं झूठी तारीफ नहीं, पुश करना कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और आज आपने जो काम किया है ना वो आपने बहुत ही बेहतर काम किया है। तो क्या होता है ना, इतनी छोटी सी जो सराहना होती है ना, एक बड़ा वाला काम करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। ठीक है, समझ में आया?
2: जी मैम।
1: आपकी जिंदगी में कितने लोग टॉक्सिक हैं?
2: इंक्लूडेड मी? नो, नॉट इंक्लूडेड यू, बट हाँ हैं कुछ लोग हैं जो काफी टॉक्सिक हैं।
1: मैं अगर आपकी लैंग्वेज में अगर टॉक्सिक मैं अगर कभी बनूंगी भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनको अच्छी बातों के लिए टोकती हूँ।
2: हाँ नहीं, लेकिन वो टॉक्सिक नहीं होता है, उसका कुछ अलग मीन होता है। टॉक्सिक का मीन क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। टॉक्सिक इन द सेंस कि कभी आपने सुनी होगी ना कि किसी की आवाज जो है वो कानों में पड़ती है तो जैसे कर्कश जैसी फील होती है।
1: और मेरी
2: नहीं, आपकी तो नहीं फील होती है?
1: पक्का वाला ऑन एयर है तुम अपनी, जैसे कहते हैं ना कि एक बार पता नहीं क्या रील आने थी, उसको कहते हैं ना मैं अपनी रोजी रोटी पे बैठी हूँ, तो मतलब हम लोग अपनी अपनी अपने कार्यक्षेत्र पे बैठे हुए हैं, तो झूठ नहीं
2: बोलना। अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोल देती, बट ऐसा नहीं है। टॉक्सिक का जैसे
1: मतलब अगर तुम्हें बोलना होता तो तुम ऑन एयर भी मेरी बुराई बोल सकती थी।
2: बिल्कुल, अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोल देती, बट मुझे नहीं बोलना।
1: तो ये फिर ऐसा नहीं है, फिर ये तो फिर लहजा नहीं है बात करने का कि हम ऑन एयर बोल रहे हैं किसी की बुराई कर रहे हैं, वो भी अपने सीनियर की।
2: अरे मैम अगर मैंने कुछ कहा आपको,
1: नहीं तुम कह ही नहीं सकती हो ना,
2: तब फिर
1: तो अगर कहना पड़े तो,
2: कहना पड़े तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं उस पॉइंट पे बात नहीं करूंगी, फिलहाल जिस पॉइंट पे बात करते हो।
1: नहीं, मुझे इसी बात पे, इसी टॉपिक पे बात करनी है कि अगर आपको कहना पड़े तो आप क्या ऑन एयर मतलब बोल देंगी?
2: नहीं मैं नहीं,
1: अभी आपने जस्ट उसको कबूला है कि मुझे बोलना होता तो मैं बोल देती।
2: तो मेरा सेंस ये था कि अगर मुझे आपकी बुराई करनी होती, मतलब अगर मेरे मन में वो चीज होती तो मैं बोलती ना, मन में है ही नहीं। अगर मुझे बुराई करनी ही नहीं है तो फिर ऑन एयर ऑफ एयर का तो सवाल ही नहीं।
1: अभी आपने बोला कि भाई लिसनर्स आप लोग फैसला करो।
2: हाँ।
1: अभी इसने बोला कि अगर मुझे बोलना होता तो मैं बोल देती, मैं किसी से डरती नहीं हूँ।
2: बिल्कुल,
1: तो मतलब अगर बोलना होता मन में आता तो आप बोल देती ऑन एयर। तो ये लहजा जो है ना, ये इसको क्या कहेंगे पता है?
2: क्या कहेंगे?
1: अब वो तुम जानो क्या कहेंगे।
2: अरे मैम आप किस बात को कहाँ लेकर जा रही है? मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि अगर बुराई मन में होगी किसी की तो इंसान कहेगा ना। मेरा लहजा सिर्फ इतना था कि अगर मेरे मन में वो चीज है ही नहीं तो फिर ऑन एयर ऑफ एयर का सवाल ही नहीं उठता, मतलब मैं कहूंगी ही नहीं। आप क्यों उसका मीन नहीं समझे?
1: आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से एक इंसान जब किसी को जब गुस्से में लाना होता है तो देखो ऐसे होता है। हम लोग, मैं अभी इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों को हटा करके इसका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रही थी और देखो ये हो गया। और जस्ट ये फन था क्योंकि मैं जानना चाह रही थी कि अगर इनको बातों में उलझा करके इनके टॉक्सिक विचारों को भरा जाए तो ये कितनी जल्दी प्रभावित होती हैं। और ये हो गई, ये हो गई, और ये एक एग्जामिन था और ये फटाक से हो गई।
2: मतलब मैं ही मिली थी आपको एग्जामिन करने के लिए?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम बिल्कुल अपने काम पे बिल्कुल बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जब बैठे होते हैं और हमें कोई ऐसी बातों से अगर घेर ले तो उसमें से निकल करके ही तो वो फिर वो जीत होती है। तो आप तो बिल्कुल फंस गई, आप हार गई, मतलब तुरंत ऐसे वैसे बोल देना ये वो। खैर चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और टॉक्सिक के बारे में बता रही थी आप।
2: हाँ, टॉक्सिसिटी होती है यानी कि किसी की आवाज में ही वो एक ताने वाली फीलिंग होती है ना। आपने कभी किसी को फेस किया होगा कि कुछ लोग बोलते ही ऐसे हैं कि लगता है कि ये तो ताना ही दे रहे हैं, मतलब वो एक नेगेटिविटी वॉइस में ही होती है। अरे किसी किसी चीज की कभी आपने फील किया होगा कि किसी के पास बैठने का मन तक नहीं करता है कि हम इनके पास जाकर के बैठे। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि वो इंसान पूरा टॉक्सिसिटी से भरा होता है और ऐसे इंसानों से दूर रहना बहुत जरूरी है जो नेगेटिव ऑरा के होते हैं उनसे।
1: जो नेगेटिव उनको देखते ही नेगेटिविटी ना वो आने लगती है, फील आने लगता है। एंड डिजिटल डिटॉक्स, मतलब मैं इसको इसलिए कह रही हूँ डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है कि वैसे तो हम लोग हमेशा से बताते हैं क्योंकि हम योग से जुड़े हैं तो डिजिटल जो हम लोग डिटॉक्स बताते हैं कि मॉर्निंग उठ करके आपको पानी पीना है, इससे आपका पेट साफ होता है, उस आपकी फेस पे स्किन पे ग्लो आता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं। लेकिन डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है आज मैं आपको वो बताऊँगी। डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है कि हफ्ते में एक दिन, हम मान के चलते हैं कि हफ्ते में एक दिन या रोज अगर आप उसको बना रहे हैं, पहले हम हफ्ते में एक दिन पहले मान लें कि हफ्ते में एक दिन आप सोने से एक घंटा पहले सोशल मीडिया से पूरी तरीके से दूरी बना लें। और ये आपके दिमाग को शांत करने और खुद से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका होता है। कैसे मैं बताऊं कि अगर आपने एक घंटा पहले अपनी मोबाइल को किनारे रख दिया तो सोशल मीडिया से दूर हो गए, अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए दूर हो गए, मन को एक सुकून देना, क्योंकि मोबाइल अगर हम रात को चलाते हैं ना तो क्या होता है, मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम हमेशा से आध्यात्मी ही रात में सुनते हैं। कभी कभी रील्स स्क्रॉल करते हैं तो कुछ ऐसी रील भी आ जाती हैं जो मन को विचलित कर देती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसी सास बहू की लड़ाइयों वाले रील्स आ जाते हैं, काफ़ी कुछ आ जाता है। तो क्या होता है कि हमारी मन वृत्ति भी खराब होती है, जिसके कारण से जब हम सोने जाते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो उस समय तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे सपनों में वो सारी चीज़ों का असर घूमता रहता है। क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है उसमें, ये हमारा एक कंप्यूटर होता है, जैसे कंप्यूटर में हम कोई चीज़ अगर सबसे लास्ट में काम करके सोते हैं और अगर आप सुबह देखेंगे तो वो सर्चिंग में पड़ा होता है। कभी भी आपने देखा होगा लैपटॉप पे तो वो सर्चिंग में पड़ा होता है। मोबाइल में भी ऐसा ही है, आप कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप सर्चिंग में आपका, जैसे कहते हैं ना कि जस्ट सर्चिंग लास्ट सर्चिंग, उसमें वो आ जाता है। तो दिमाग में भी वही होता है, उसकी लास्ट सर्चिंग जो होती है ना वो चलती रहती है रात भर, और जब जो आप देखेंगे, जो आप महसूस करेंगे, वो ही क्यों कहते हैं कि आज मैंने ना वो सपना देखा था, क्यों? तो आपने वो रात में सोने से पहले सोचा होगा, पूरे दिन में सोचा होगा, कभी ना कभी सोचा होगा, इसी वजह से वो सपनों में आ जाता है और उसी का असर हमारी पूरी बॉडी पे पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दो चीजें, सबसे पहले तो टॉक्सिक लोगों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें, सेकेंड पॉइंट इज दैट कि डिजिटल डिटॉक्स करना हमारे लिए बेहतर होता है। रात में सोने से एक घंटा पहले अपनी मोबाइल को किनारे रख दें, टाटा बाय बाय कर दें और कुछ अच्छे विचारों के साथ में हम बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल पे कुछ ऐसी धुन चला कर रख दें, किसी भी जो आपको धुन पसंद है, लेकिन मोबाइल की दूरी बनी रहे और आप उसको सोते सोते ही आप सो जाएं।
2: बिल्कुल। और थर्ड पॉइंट है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि हमेशा खुद की तारीफ़ करनी चाहिए और खुद की उन चीज़ों की सराहना करें। अगर दिन भर में भी आपने कोई बेहतर काम किया है या आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है सेल्फ को मोटिवेट करना, खुद की तारीफ़ करें, खुद से कहें कि आपने उस दिन में वो अच्छा किया। और दूसरी बात होती है कि खुद को हमेशा बेहतर मानना चाहिए। अगर आप अपने आप को बेहतर नहीं मानेंगे तो दूसरा भी आपको कभी नहीं मानेगा। खुद की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि नेगेटिविटी हर जगह पे होती है, लेकिन आप उस नेगेटिविटी से किस तरह डील करते हैं ये आपके ऊपर है। ज़्यादातर नेगेटिव कंडीशन में हम क्या करते हैं कि या तो हम बोल देते हैं या फिर हम झगड़ा कर लेते हैं या फिर हम कुछ नहीं बोलते, तो उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे वो धीरे धीरे आपके दिमाग में और गहरी होती जाएंगी। आपको उसे अवॉइड नहीं करना है, आपको बस एक उस पर एटीट्यूड रखना है, कि ये रखना है कि किस तरीके से हम उसे डील करें। तो सबसे अच्छा तरीका होता है नेगेटिविटी को डील करने का कि धीरे धीरे उसे अपने माइंड से हटाते जाइए। और धीरे धीरे माइंड से हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है, हमने आपको ये टेक्निक पहले भी कई बार बताई हुई है, एक बार आज फिर बता देते हैं। बढ़िया सी एक डायरी उठाइए, बढ़िया सा एक पेन उठाइए, उस पर जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हों वो सारी लिख करके उस पेज को फाड़ करके फेंक दीजिए। आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स दोबारा कभी नहीं आएंगे। ऐसा आप रेगुलर भी कर सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में कोई नेगेटिविटी रेगुलर चलती है मान लीजिए, तो वो ऐसा रेगुलर कर सकते हैं, क्योंकि जिन बातों को हम लिखकर हटा देते हैं वो उस टाइम के बाद हमारे माइंड से हट जाती है, फिर हमें कभी नहीं याद आएंगे। लेकिन अगर आप उसे किसी पर लिखेंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं, किसी से शेयर नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो आपके अंदर और गहराती चली जाएगी। आपको लगेगा कि आप उस नेगेटिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे, बट वो नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर और बढ़ती चली जाती है। और कहीं ना कहीं ये तो हम सभी के साथ होता है कि ऐसी कुछ नेगेटिव बातें होती हैं जो हमारे मन को बार बार पिंच करती हैं। हम किसी से कहते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं, तो ठीक है, आप इस टेक्निक को यूज़ करिए और इसका पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा और धीरे धीरे आपका माइंड शांत होगा। और एक टाइम आएगा जब आप उस नेगेटिविटी पे ध्यान दिए बिना अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो आप फैमिली को भी अच्छे से चला पाएंगे बिना उस बात को सोचे।
1: बिल्कुल। और साथ ही साथ में हम ये बताना, और ये हमसे मिस हो गया था, लेकिन मिस क्यों हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने गाने तो लगा दिए थे बट हम लोग निश्चिंत थे कि हाँ अभी बताएंगे। तो आज है हमारी वर्ल्ड क्वीन, यानी कि हमारी क्वीन, डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित का बर्थडे। तो माधुरी जी को बहुत बहुत बहुत बहुत बार हैप्पी बर्थडे। एंड वो जितनी उनकी एज बढ़ रही है ना, वो उतनी खूबसूरत बनती जा रही है। कारण पता है, सिर्फ और सिर्फ फेस को ही लोग जैसे क्रीम लगा करके या कुछ बहुत सारे रेमेडीज लगा करके सुंदर बन सकते हैं, लेकिन जो अंदर से सुंदर होता है ना, उसकी उसका व्यक्तित्व उसके चेहरे पर निखर के आता है। तो माधुरी जी हमारी बहुत सुंदर हैं, ये तो सभी को पता है कि उनकी जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो वैसे वैसे सुंदर होती जा रही हैं। तो आइए उनको आज हम लोग विश करते हैं, और उन्हीं के अभी कुछ टाइम तक, जैसे अभी मेरे पास 15 मिनट है, तो 15 मिनट में हमने अभी एक टॉपिक और लेना है, लेकिन हम गाने सुनाएंगे आपको माधुरी जी के ही। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो माधुरी जी का है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग माधुरी जी का सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
0: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वाला शो सुन सहेली, और फिर से आ गई हैं आपकी सहेलियां, और टाइम जो है वो भागा जा रहा है।
5: 53 हो गया। yes, मुझे लग रहा था कि मैं एक सॉन्ग और अभी सुना दूंगी, लेकिन टाइम जो है वो भागा जा रहा है। लेकिन इतना कह देते हैं कि आज ना जाते जाते ही हम माधुरी दीक्षित का सॉन्ग ही आपके लिए प्ले करके जाएंगे।
4: तो चलिए अब आप इसे टिप ऑफ द डे की तरह ले लीजिए या फिर ब्यूटीफुल टिप्स की तरह। आज हम आपको बताएंगे कि आपके नेल्स को स्पेशली गर्मियों में आप कैसे सही रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारे नेल्स खराब हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है खराब होने का, वो होता है नेल पेंट। कई बार जब नेल पेंट में बहुत ज़्यादा एसिड होता है, बहुत सल्फेट होता है, तो उसी तरीके से जैसे हमारे बाल, हम कहते हैं ना शैम्पू में अगर ये चीज़ें ज़्यादा है तो बाल खराब होते हैं, ठीक उसी तरह अगर आपके नेल पेंट में होते हैं तो नेल्स भी खराब हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी किसी के नेल्स बहुत हार्ड होते हैं, मतलब जल्दी टूटते भी नहीं हैं, और किसी किसी के इतने सॉफ्ट होते हैं कि ज़रा सा वो होता है और वो टूट जाते हैं। तो नेल्स के लिए आज कुछ केयर के लिए टिप बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो टिप्स है वो ये है कि गुनगुने तेल से हमेशा अपने जो नेल्स हैं उन पे हल्का हल्का गुनगुना तेल लगाना चाहिए। रात को सोने से पहले आप नारियल तेल हो आपके पास या बादाम तेल हो, उसको हल्का सा गुनगुना करके नाखूनों पे हल्के हल्के उनके किनारे जो होते हैं ना नेल्स के कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे लगाइए, और थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अगर आप चाहें तो नेल पे भी लगा सकते हैं। कई बार कॉर्नर्स पे हमें पेन होता है, जैसे नेल बहुत अंदर जब चला जाता है तो कॉर्नर्स पे पेन होता है, अगर आप इसे लगाएंगे तो उससे भी आराम होगा। दूसरा बताना चाहूँगी कि नींबू के छिलके, अगर आप लगातार नेल पॉलिश लगाने से आपके नाखून पीले पड़ गए हैं तो आप उनको जो नींबू के छिलके होते हैं ना उसको जब आप पूरा नींबू का रस गार मतलब निकाल लीजिए, उसके बाद जो छिलके बच जाते हैं उनको हल्के हल्के से आप अपने नेल पे अगर हल्का हल्का रगड़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके नेल्स जो बिल्कुल बेजान हो जाते हैं उनमें एक फ्रेशनेस भी आएगी, और साथ ही साथ में पीले पड़ गए हैं तो साफ भी हो जाएंगे।
5: बिल्कुल, और ये ब्यूटी टिप्स जो है ना,
4: हाँ
5: ये ब्यूटी टिप्स जो है ये ना हम लोग हमेशा से आपको आज के दिन बताते आते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बाल कटाने का और फाइल करने का सही तरीका क्या होता है ना जी। तो नेल्स जो है ना वो नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगी, मुझे ये मन नहीं कर रहा है, मेरा ये मन नहीं कर रहा है। टिप ऑफ द डे, देखो बाल, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि ना बाल कभी कटवाने नहीं चाहिए, आपके इतने अच्छे सुंदर से बाल होते हैं ना उसको कटिंग, तो मैं इसीलिए बाल वाला कभी नहीं बताऊंगी। मैं बताती हूँ आज आपको एक टिप ऑफ द डे में कि जब आप अपने घर में गार्डनिंग करते हैं या फिर आप करते हैं अपने घर के डिश वॉश, ठीक है, तो डिश वॉश करें या फिर आप क्या कहते हैं गार्डनिंग करें, उसके लिए अगर आपने हाथ में ग्लव्स पहन लिए हैं तो इससे जैसा कि अभी अंशिका ने बताया नेल्स के लिए, तो उन वो नेल्स कभी भी आपके खराब नहीं होंगे। जिन लोगों को आदत होती है कि नेल्स बढ़ाने की, नेल पेंट लगाने की, उनको हमेशा से फाइल करके रखने की, तो वो नेल्स आपके कभी खराब नहीं होंगे। बस आपको करने हैं दो काम कि जब भी आप डिश वॉश करें यानी कि आप अपने घर के बर्तनों को धोएं और करें गार्डनिंग, तो आपको कोई भी पॉलिथिन हो गई या फिर कोई भी ऐसे ग्लव्स आप अपने हाथ में उसको डाल लें ताकि आपका काम भी इजी हो जाए, आपके हाथ भी ना खराब रहें। सर्फ भी अगर आपके हाथों में लगती है ना, सर्फ जो भी होती है जैसे कोई भी लिक्विड फॉर्म वाली, उससे भी हमारे हाथ में बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं, हाथ जो है वो हार्ड हो सकते हैं। तो ये टिप ऑफ द डे है कि कभी भी अगर आप काम करें, ग्लव्स नहीं है कोई बात नहीं, आप घर में आई हुई कोई भी पॉलिथिन ले लें, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि कि थोड़े थोड़े जगह पर आपने उसको सिल लेना है, जैसे ब्लैक पॉलिथीन आती है बहुत सारी घर में आती रहती है, वाइट आती है, तो हाथ के पंजा हाथ का जो पूरा पंजा रख करके उसमें आप डॉट लगा करके आप मशीन की सहायता से उसको सिल सकते हैं और घर में ही बना सकते हैं ग्लव्स। तो मतलब बिना खर्चे में ग्लव्स बन जाएंगे और उसका जो फायदा होगा वो बहुत गुना होगा, यानी कि आपके हाथों की सुरक्षा हो जाएगी। तो चलिए हम चला देते हैं माधुरी दीक्षित के सॉन्ग को। मैंने कहा था कि जाते जाते आज माधुरी दीक्षित का बर्थडे है तो उनके ही सॉन्ग को सुनते हुए जाएंगे। कल मिलेंगे, कल सुपर से भी ऊपर वाला डे है, यानी कि है कल सैटरडे। हम दोनों लोग कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।
4: बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
11: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
10: और जेंट्स के लिए?
11: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
10: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
11: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

नमस्कार आदाब, शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, ये है आपकी गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति, आप सभी हमारे श्रोताओं का बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। घड़ी के सुइयों ने इशारा कर दिया है कि वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और मकबूल कार्यक्रम का, जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। भाई कहते हैं कि संगीत दिलों को जोड़ता है, और जब ये संगीत आपकी पसंद का हो तो बात कुछ और होती है। हमारे लिसनर्स जो हमें कॉल करते हैं देश के अलग अलग कोने से, और इवन कई लोग तो

अभी हम सुन रहे हैं समरीन जी की फरमाइश पर इश्के जा, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में, एक रूहानी आवाज़ में खूबसूरत नगमा। यकीनन इस गाने ने आपका समा बांधा होगा और आपको इस गाने ने काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया होगा फिलहाल। लेकिन अगली फरमाइश की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मेरी नज़रें इस वक्त लगातार घूम रही हैं हमारे चैट बॉक्स के अंदर, जहां हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं ने, प्यारे प्यारे लिसनर्स ने भेज दिए हैं अपने पैगामात, अपने मैसेजेस, और उनके इस खूबसूरत मैसेजेस की बौछार हो चुकी है। तो आई थिंक पहले चैट बॉक्स में चल लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो हमारे पास जो मैसेज आया था इस शो में सबसे पहले, ओके, तो वो आया था मुस्तफ़ा जी का, एंड जो हमें सऊदी से सुनते हैं, आपका बेहद स्वागत करते हैं कॉलेज इन गोंडा में। मीनू जी हमारे साथ जुड़ी हैं जो हमें गोंडा से सुनती हैं, लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? गुड आफ्टरनून टू यू, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। कॉलेज इन गोंडा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफ़ा जी लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। रामानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं हाय हाय, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग, आपके अपने वाले प्रोग्राम कॉल ट्यून गोना में। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं रति जी गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपका भी बेहद स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो कॉल ट्यून गोना में। अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमें कुछ अल्फाज लिखकर भेजे हैं और लिखा है कि एक दर्द है जो मुझे जीने नहीं देता, दिल सब्र कर जाता है, मुझे रोने नहीं देता। क्या बात है, मैं उसका हूँ ये रोज़ वो जान, ये राज वो जानती है, मगर वो किसी और की है, ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। ओह माय गॉड, बेहद ही हार्ट टचिंग लाइंस आपने लिखी हैं अब्दुल मजीम जी, आपकी बेहद खूबसूरत लाइंस, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक यादव जी, ओके, दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं हथियागढ़ से, जो

जानते हैं ऑफ कोर्स गोंडा से ही, लिखा है गुड आफ्टरनून आरजोती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके अपने शो कॉल ट्यून गोंडा में। सबलू सामंत जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं शुभ गर्मियां शुरू हो गई हैं, घर से बाहर निकलें साथ में छतरी पकड़ के निकलें। बेशक बिल्कुल सही फरमाया है आपने, घर से बाहर जाने का मतलब है इस वक्त कलवा होके घर में आना, तो कोशिश करें सनस्क्रीन के साथ साथ एक छाता भी लेकर जाएं, नहीं तो सीधा वो आपने ग्लूकॉन डी का ऐड देखा होगा जिसमें सूरज ज्यादा स्ट्रॉ डाल के आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, बिल्कुल वही आपके साथ होने वाला है, हालांकि वो स्ट्रॉ आपको नहीं दिखेगा। दीपक जी लिख रहे हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। तो आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून गोंडा 99.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति, और अपनी फरमाइशें भेजने के लिए आपके पास है अभी पूरे 2 घंटे बाकी, क्योंकि आज है फ्राइडे का स्पेशल शो कॉल ट्यून गोंडा, 2 से 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का बैक टू बैक प्रोग्राम। और हमारी अगली फरमाइश आई है देवी प्रसाद जी की, जो सुनना चाहते हैं जहां खुशी मिलती है सोना वहीं तुम रहना। तो आइए थोड़े से हार्ट टचिंग सॉन्ग को आप एंजॉय कीजिए, प्यारे से नगमे को, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अभी आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंगों से सजी वो एक खास धुन। लेकिन जब भी कहते हैं ना किसी के दिल में मोहब्बत होता है तो उस मोहब्बत में दर्द होता है, और जहाँ पे दर्द नहीं होता वहाँ पर वो मोहब्बत मुकम्मल नहीं मानी जाती है। और देवी प्रसाद जी के इस गाने से ये बात साफ नज़र आती है कि इस गाने में बहुत ज़्यादा दर्द है, हालांकि बहुत खूबसूरत गीत की फरमाइश उन्होंने की थी। तो आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, आपकी अपने फरमाइशों का सिलसिला, जो कि कार्यक्रम चलेगा आज पूरे दो घंटे आपकी आर्जुनती के साथ 89.6 FM यही गोंडा शहर की धड़कन पर। हमारी अगली फरमाइश आई है अब्दुल कलाम जी की, जो सुनना चाहते हैं। ओके, मुबारक हो तुमको सबको हज का महीना। तो भाई आप हज पर जा रहे हैं तो जरा चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लस एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से नगमे को जो कि अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया गया गाना है कुली फिल्म से। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। और अगर अभी तक आपकी फरमाइश हम तक नहीं आई है तो उठाइए अपना फ़ोन और डायल कीजिए 6393316429, भेज दीजिए। किसका इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडियो में।

नफरत की तंग गलियों से निकलकर आप सुन रहे थे एक ऐसा नगमा, एक ऐसा गीत, एक आपने कदम बढ़ाया था ऐसी पाकीज़ा मंजिल की तरफ जहां सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं, इबादत है और खुदा का नूर है, क्योंकि आप सुन रहे थे इस कॉलर ट्यून गोंडा में अब्दुल जी की फरमाइश पर मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सभिया जी की और वो सुनना चाहती हैं मोहब्बत को भरे बाजार में यूं ना रुसवा करो। क्या बात है, आज तो काफ़ी सारे बेहतरीन और उर्दू स्पेशलिस्ट गाने आ रहे हैं जहां पर उर्दू के लफ्ज़ ज़्यादा हैं। तो एंजॉय करते रहिए इस खूबसूरत से नगमे को कॉलर ट्यून गोंडा में। हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

संगीत की सबसे खूबसूरत बात पता है, इंसान जमीन बांट सकता है, इंसान बांट सकता है, लेकिन संगीत नहीं बांट सकता। आप संगीत को कभी रोक नहीं सकते हो और संगीत सरहद पार करके आपके दिल को छू लेती है। और यही कुछ था इस गाने में भी। सविया जी की फरमाइश थी, मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया। ये गाना आया था सरहद के उस पार से और आप इंजॉय कर रहे थे खूबसूरत सा नगमा आपके अपने कॉलर ट्यून गोंडा में। आइए वक्त हो चला है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश आई है सुनील कुशवाहा जी की, जो सुनते हैं, जो सुनना चाहते हैं, मेरी तरह तुम प्यार करके देखो। ओके भाई, आइए देखते हैं, इन्जॉय करते हैं इस बेहतरीन से नगमे को, इस बेहतरीन से गीत को, और हम मिलते हैं आपसे अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए भाई, जिनकी फरमाइश अभी तक नहीं आई है वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आज है आपका कॉलर ट्यून गोंडा 2 घंटे का स्पेशल वाला प्रोग्राम, तो उठाइए अपने फोन्स, डायल कीजिए 6393-3564-29 और भेज दीजिए इससे पहले कि वक्त आपके हाथों से गुजर जाए, है कि नहीं? आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आज नदी के साथ कॉलर ट्यून गोंडा। फरमाइश है सुनील कुशवाहा जी की, स्टे ट्यून्ड।

भाई हमारे फरमाइशों का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही चुलबुले और बहुत ही खूबसूरत प्लस रोमांटिक मोड पर आ चुका है। मेरी तरह तुम भी प्यार करके देखो ना, एक खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं, क्या यही प्यार है, अलका जी और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में बोल थे जलीश राशिद के। और ये गाना इतना खूबसूरत है कि भाई आपको भी कहीं ना कहीं अपने पुराने दिन ज़रूर याद आए होंगे, जिस तरह से सबलू सावंत जी ने लिखकर भेजा है, स्कूल वाला प्यार सबकी ज़िंदगी का पहला प्यार होता है, सब कुछ क्या क्या फील करवाता है। स्कूल वाले प्यार में एक अनोखी पवित्रता होती है जो अंतिम सांस तक दिल की धड़कनों को जिंदा रखती है। जी बेशक, सही बात फरमाई है आपने। एंड वहीं पर अब्दुल जी लिख रहे हैं, ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है भाई। एंड ओके, हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आज तरन्नुम, आपका नामकरण हो चुका है आर्जुनती जी। जी हाँ बेशक, थैंक यू। और ये नाम मुझे पहले भी कोई दे चुका है और आई थिंक आप वही हैं, यानी कि जिन्होंने ये नाम हमें दिया था प्रमुख जी, उनका भी स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोना में। और वक्त है हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलने का। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा कॉलर ट्यून गोना अब एक चुलबुले रोमांटिक अंदाज की तरफ वो मुड़ चला है, और हमारा अगला सॉन्ग जो है वो है शाहिद अंसारी जी का, जो सुनना चाहते हैं खूबसूरत संगीत, संग संग चलूंगा मैं बन के तेरा साथ। यानी एक बेहद ही रोमांटिक गाना आपके लिए अगेन पेश करने जा रही हैं अर्जुनती आपकी अपनी फरमाइशों के इस कार्यक्रम में। वो नगमे जो आपके दिल को छूते हैं सीधा, तो इंजॉय करते रहिए कॉल ट्यून गोना। और जिनकी फरमाइशें नहीं आई है वो भेजते रहिए अपनी फरमाइश 6393316429 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM अपनी आर्जुनती के साथ।

हां जी, और सच्ची मोहब्बत की पहचान भी यही होती है, धूप हो छांव हो दुख हो सुख हो हमेशा हाथ पकड़ कर रखते हैं और यही अटूट विश्वास किसी रिश्ते को कायम रखता है। एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइश आई थी शाहिद अंसारी जी की तरफ से, संग संग चलूंगा मैं बनके तेरा साजन, कुमार सानू की आवाज में, बोल थे समीर के और संगीतकार थे नदीम श्रवण। एंजॉय कर रहे थे आप एल्बम दिव्या शक्ति से एक बेहतरीन सा नगमा। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, मेरे दोस्त दिन हुआ तो रात भी होगी, हो मत उदास कभी बात भी होगी, इतने प्यार से चुना है तुमको, जिंदगी रही तो मुलाकात भी होगी। क्या बात है भाई, वैसे आपके अल्फाज बड़े ही बेहद ही खूबसूरत होते हैं। हमारे चैट बॉक्स में जो भी लिसनर्स हमें लिखकर भेजते हैं स्पेशली शायरी या फिर नज्म, तो उनकी शायरी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। एंड कमल एन जी लिख रहे हैं, नाइस लवली सॉन्ग, थैंक यू सो मच, और इसका क्रेडिट जाता है भाई शाहिद अंसारी जी को जिनकी फरमाइश थी है। आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, कॉलोटिन गोना को आगे बढ़ाते हुए अजीज जी की तरफ चलते हैं, जो हमें सुन रहे हैं मुंबई से, और वो कहते हैं कि सफ़र तनहा नहीं करते, तो आइए सफ़र को कायम रखते हैं, आगे चलते हैं और सफ़र को इन्जॉय करते हैं उनके इस बेहतरीन गीत खलील हैदर की आवाज़ में, सफ़र तनहा नहीं करते। स्टे ट्यून्ड।

खलील अहमद की आवाज़ में आप सुन रहे थे अजीज मुंबई जी की फरमाइश पर सफर तन्हा नहीं करते, एक खूबसूरत सा नगमा आपने एंजॉय किया। और अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। अभी तक आप बहुत सूथिंग, बहुत ही प्यारे रोमांटिक गानों को एंजॉय कर रहे थे, और इसी रोमांटिक गानों के बीच में दीपक जी ने सोच लिया है कि भाई अब थोड़ा सा टशन लगाते हैं, थोड़ा सा बीट बढ़ाते हैं, और बीट बढ़ाकर सीधे ले जाते हैं आपको जरा जरा टच मी टच मी टच मी की तरफ। रेस से आप सुनने जा रहे हैं कैटरीना पे फिल्म आया, सैफ अली खान पे फिल्म आया, मोनाली ठाकुर की आवाज़ और प्रीतम के म्यूजिक में जरा जरा टच मी टच मी टच मी। आप सुन रहे हैं कॉलर ट्यून गोंडा, और अब्दुल जी लिख रहे हैं मंजिल दूर और सफर बहुत है, छोटी सी जिंदगी की फिक्र बहुत है, मार डालती ये दुनिया कब की हमें, पर पापा के प्यार और माँ की दुआओं में असर बहुत है। क्या बात है, काबिले तारीफ लिखा है आपने और सच भी लिखा है। आगे आगे हम आपके मैसेज और भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप एंजॉय कीजिए इस गाने को जिससे आपकी भी एनर्जी थोड़ी हाई हो और कैटरीना वाला फील आपको भी आए।

हां जी, बिन तेरे सनम इस जहान में बेकरार हम, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। और आप ये गाना सुन रहे थे दीपक जी की फरमाइश पर। उन्होंने सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर दिया और उन्होंने कहा भाई आज रोमांटिक गाने नहीं, आज सूथिंग सॉन्ग नहीं, आज हम सुनेंगे एकदम जबरदस्त हिट वाला गाना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। तो जैसे उनके गाने थे ना, वैसे ही मेरी आवाज़ भी हो गई है। अभी तक हम बहुत सूथिंग आवाज़ में आपसे बात कर रहे थे, बहुत स्लो मोशन में, लेकिन ये गाना आते ही मेरे अंदर की एनर्जेटिक बॉम्ब जाग उठता है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, क्योंकि अगली फरमाइश आई है कमल जी की। एंड कमल जी से पहले हम आपको बता दें भाई निब्बा जी की फरमाइश थी। निब्बा जी, आप मुझे दोबारा से कॉल कर लीजिए, आपकी फरमाइश में है कुछ प्रॉब्लम यानी कि कुछ कन्फ्यूजन, मैं आपसे क्लियर कर लूँगी एंड इसके बाद आपकी फरमाइश को प्ले कर दिया जाएगा। फिलहाल इन्जॉय कीजिए कमल जी की फरमाइश पर, उनकी फरमाइश का एक गीत आपके अपने कॉल टीम गुना में, क्योंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM कोंडा शहर की धड़कन। और उन्होंने सुना है सातो जन्म तुझको पाते। ओके ओके, गोविंदा एंड करिश्मा के ऊपर फिल्माया गया गाना कुमार सानू की आवाज़ में आप एंजॉय करने जा रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए कमल जी की फरमाइश पर ये गीत। स्टे ट्यून्ड।

हमारे साथ भीम कुमार जी जुड़ गए हैं जो मैं सुनते हैं गुजरात से अंकलेश्वर से। तो आपका स्वागत करते हैं भीम कुमार जी आपके अपने कॉलेज गोंडा में, यानी कि आपके अपने शो में। आप सुन रहे हैं रेडियो।

हाँ जी भाई, तो आप अपने दिलों को थाम के बैठ जाइए क्योंकि वक्त हो गया है अब आपकी स्पीच को बढ़ाने का। स्पीड इसलिए क्योंकि हमारे पास है फरमाइशों की बौछार और वक्त है अब सिर्फ एक घंटा, और एक घंटे के अंदर मुझे इन सारी फरमाइशों को करना है कवर क्योंकि भाई मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती और दिल ना टूटे इसीलिए आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। फिलहाल अभी सुन रहे थे आप कमल जी की फरमाइश पर सातो जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, गोविंदा करिश्मा कपूर के ऊपर फिल्माया गया गाना हीरो नंबर वन से एंजॉय कर रहे थे आप कुमार सानू की आवाज में। संगीतकार थे आनंद विलन साहब और बोल थे समीर के। अगली फरमाइश आई है हमारे पास निब्बर जी की और निब्बर जी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में मतलबी लोग हैं जहां। तो आइए इस मतलबी दुनिया या फिर कहें तो इस मतलबी गाने को एंजॉय करते हैं और हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अगली फरमाइश जो होने वाली है वो है धर्मेंद्र जी की, शहनवाज जी की, राशिद जी की, रमेश जी की, रीतलाल जी की, राम नरेश जी की, शराफत अली जी की और अनिल कुमार की। स्टे ट्यून्ड।

निम्बर जी की फरमाइश पे आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज में इस बेहतरीन से नगमे को। और आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है धर्मेंद्र मोहन जी की और वो सुनना चाहते हैं, आज जा शाम होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई। सलमान खान के ऊपर फिल्माया गया ये गीत भाग्यश्री एंड ऑफ कोर्स बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में है, लता जी की आवाज में है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। 1989 से आपके लिए पेश है। सुनते रहिए कॉलोजी उनगोंडा, एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं आज शाम होने आई और ऑफकोर्स शाम होने भी आ चुकी है। तो आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है शहनवाज जी की और वो सुनना चाहते हैं तेरे दर पर आया फ्रॉम लैला मजनू। एंजॉय कीजिए इस गीत को जो कि है बहुत पुराना, यानी कि काफ़ी ओल्ड इज गोल्ड वाला गाना है और सच में गोल्ड नहीं डायमंड है इस गाने के अंदर, क्योंकि 1976 से हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत। एंजॉय करते रहिए। हम मिलते हैं अगली फरमाइश जो कि है राशिद जी की, रमेश जी की, रीत लाल जी की, राम नरेश जी की, शराफत अली, अनिल कुमार, रितेश, मुस्तफ़ा जी, सुरेंद्र यादव जी के बाद है दिलीप जी, सबलू जी, निशा जी, सुरेश जी, राजेश जी, निब्बर जी एंड राजेश कुमार जी।

तेरे दर पे आया हूँ। आप सुन रहे हैं शहनवाज की फरमाइश पर, वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। ये दिल लगता नहीं तेरे में, अगली फरमाइश आई है राशिद जी की, जो मैं सुनते हैं अहमदाबाद से। तो आप इस गाने को एंजॉय करें।

सुरों के सरताज मोहम्मद रफी साहब और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आवाज में आप सुन रहे हैं एक ऐसा गीत जो है बेहद ही रोमांटिक 1968 फिल्म से लक्ष्मी पाया प्यारे लाल का म्यूजिक था और बोल थे साहिल लुधियानवी जी के। हम आपको बता दें भाई, लता जी और मोहम्मद रफी जिनकी आवाज के बिना आई थिंक भारतीय संगीत का इतिहास कंप्लीटली अधूरा है, तो उनकी आवाज में आप एंजॉय करते रहिए और हम चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है ओके रमेश जी की, जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, और उन्होंने बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और आई थिंक ये गाना उन्होंने इसलिए भेजा है क्योंकि अभी तक वो गिनती ही कर रहे थे कि हम कितनी फरमाइश प्ले कर चुके हैं। ऐसा है क्या वैसे रमेश जी? फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए अलका जी की आवाज़ में माधुरी दीक्षित में फिल्माया गया तेजा फिल्म से खूबसूरत सा गीत। स्टे ट्यून्ड।

महाराष्ट्र की गलियों से आई हुई फरमाइश 1 2 3 तेजा फिल्म से 1988 में माधुरी दीक्षित ने फिल्माया गया वो गाना, जहां से माधुरी दीक्षित का पूरा करियर बदल गया था, प्लस बदला था साथ में अलका जी का भी करियर। और इसी के साथ आइए चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है रीतलाल जी की, आएगा कब मेरा बंजारा। तो भैया आइए सुनते हैं, श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया एक गाना, और इस गाने की बात इतनी है कि ये गाना सुपरहिट है। श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया है तेरी बंजारा रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं अगली फरमाइश पर। अलका जी की आवाज़ में आप इस गाने को सुन रहे हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल हैं इस गाने के संगीतकार।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं श्रीदेवी पर फिल्माया गया गाना तेरी बंजारा रास्ता, देखिए कब आएगा मेरे बंजारे। और इसी के साथ आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश पर। ये फरमाइश थी रीतलाल जी की और अगली फरमाइश आई है राम नरेश जी की, जो सुनना चाहते हैं सासू जी तूने मेरी बात न मानी। रेखा पर फिल्माया गया गीत आप इंजॉय करने जा रहे हैं। बीबी हो तो ऐसी फिल्म का नाम है और हम आपको बता दें म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बोल हैं समीर साहब के। स्टे ट्यून्ड।

राम नरेश जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं सासू जी तूने मेरी कद्र न जानी, और वक्त है अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश है शराफत अली जी की और वो सुनना चाहते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। एंड मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिखा है आगे, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलेज इन गोंडा में। ओके, और बाय बाय बोला है हमारे एक लिसनर ने, बाय बाय आपको भी, ख्याल रखिएगा आप। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन से नगमे को, एक रोमांटिक सॉन्ग को, और उस इंसान को भेज दीजिए जिनसे आप कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा साथ है तो मुझे किस चीज़ की कमी है। एंजॉय करते रहिए कॉलेज इन गोंडा अपनी आरजी के साथ। स्टूडियो

शराफत अली जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं तेरा साथ हो तो मुझे क्या कमी है। वक्त है अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश आई है अनिल कुमार जी की, जो सुनना चाहते हैं कोठे ऊपर कोठरी। तो इस गाने को आप इंजॉय कीजिए और हम मिलते हैं अगली फरमाइश आने की, रितेश जी की, मुस्तफ़ा जी की, सुरेंद्र जी की, दिलीप जी की, सबलू जी की, सुरेश जी की, राजेश मीना जी, निब्बर जी, राजेश कुमार, काजल, राजू सलमानी और अल्फिया जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं कोठे ऊपर कोठरी उस पर रेल चला दूंगी, और ये गाना था अनिल कुमार जी की फरमाइश पर। अगली फरमाइश आई है भाई रितेश जी की, और वो सुनना चाहते हैं पालकी में होके सवार चली रे, माधु दीक्षित अपने साजन के द्वार चली रे। तो आइए एंजॉय कीजिए खलनायक फिल्म से अलका जी की आवाज में, और आप भी जरा थोड़ा सा उठाइए अपना पल्लू और डांस करते हुए बताइए भाई क्या आप भी फील कर रहे हैं माधु दीक्षित वाला।

जी भाई, रुतेश जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं पालकी में होके सवार चली रही है। और हमारी अगली फरमाइश आई है मुस्तफा जी की, जो मैं सुनते हैं सऊदी अरेबिया से। तो आइए उस गाने को एंजॉय करते हैं भाई, उनको सुनना है सारे शहर में। दिलीप कुमार और लीना जी पर फिल्म आया आशा जी की और मोहम्मद रफी की आवाज में बैराग फिल्म से 1976। सुनते रहिए आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा। और भाई जिनकी भी अब शिकायत आने वाली है कि गाने बहुत कम बज रहे हैं, उनसे माफी चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और फरमाइशों का बौछार बहुत ज्यादा है सभी के दिल को रखते हुए, और आपकी फरमाइशों को थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है। स्टे ट्यून्ड।

मुस्तफा जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं सारे शहर में आप जैसा कोई नहीं। और बात तो सही है भैया, आप जैसा कोई भी नहीं है सारे शहर में, हमने पूरा गोंडा घूम के देख लिया है। आइए चलते हमारी अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश आई है सुरेंद्र जी की और वो सुनना चाह रहे हैं हाले दिल। तो भैया आइए, आपके हाले दिल को समझते हैं और इस गीत को इंजॉय करते हैं सबके साथ, यानी कि मेरे, आपके और हमारे लिसनर्स के साथ, आपके अपने कॉल ट्यून गोंडा रेडियो ज्ञान स्लीपर।

सुरेंद्र जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं जब हाले दिल और वक्त है अगली फरमाइश का। अगली फरमाइश आई है दिलीप जी की और वो सुनना चाह रहे हैं अक्षय पाल जी का वो आइकॉनिक गाना जिसे हम कहते हैं भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक। सुनते रहिए कॉल ट्यून को, एंजॉय करते रहिए इस बेहतरीन से गीत को या फिर कहें तो हाई बीट सॉन्ग को। स्टूडियो

राम और हरे राम करते हुए हम आ चुके हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो की है सबलू सावंत जी की। और सबलू सावंत जी ने लिख के भी भेजा है, ये दिल उसका कैदी है और कहाँ जाएगा, उसके लिए परियों से गजलें लिखवाएगा। और क्या कहूँ क्या चाहता है ये दिल, वो एक दफ़ा बस छू ले सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, तालियां आपके लिए स्पेशली। एंड मैं तो डांस कर रहा हूँ भाई, धर्मेंद्र मोहन जी दिख रहे हैं, और सच बताऊँ तो मैं भी चेयर पे बैठ बैठ के डांस कर रही हूँ। आइए एंजॉय करते हैं सबलू सावंत जी की फरमाइश पर हमारा अगला गीत, यानी कि अगली फरमाइश, मेरे ख्वाबों में तू मेरी बातों में तू। स्टे ट्यून्ड।

सावन जी की फरमाइश में आप सुन रहे हैं मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी बातों में तुम, और तुम करते हुए हम चलेंगे मैं अगली गाने पर, क्योंकि निशा जी इंतजार कर रही हैं। निशा जी की फरमाइश आई है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। भाई किसने तोड़ा आपका दिल, मुझे नाम बताइए उनका, और मैं फिर उनको जाके बताती हूँ कि किसी का दिल यूँ नहीं तोड़ना होता है। और फिलहाल एंजॉय करते रहिए, अगर पत्थर का जमाना है तो शीशे का दिल मत रखिए, थोड़ा फाइबर का कर दीजिए ताकि पत्थर मारे कोई टूटे ना, और अगर टूट गया है तो फिर उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल कीजिए, यानी कि पावरफुल बनाइए।

भाई ये गाना मैंने सुना है 12 सालों बाद, निशा जी की फरमाइश पर। आइए चलते हमारी अगली फरमाइश। और ओके, अगली फरमाइश भी थोड़ा सा आपको उदास कर देने वाली है, लेकिन बेहद ही प्यारी है। प्रेम रोग से हम आपके लिए लेकर आए हैं सुरेश जी की फरमाइश पर, जो मैं सुनते हैं चौक से। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में 1982 का बहुत ही बेहतरीन गीत, बहुत ही बेहतरीन नगमा आप सुन रहे हैं कॉल ट्यून आपके अपने गुना शहर की धड़कन पर।

0: जी, सुरेश जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। और ये गाना था सुरेश वाडकर और लता जी की आवाज में, प्रेम रोग फिल्म से 1982 में आई एक बेहतरीन सी फिल्म, जिसके अंदर आपको सोसाइटी और विधवा विवाह जैसी प्रथा को देखने का मौका मिलता है। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना आया है बैंगलोर से, बैंगलोर से हमें सुन रहे हैं राजेश मीना जी, और वो सुनना चाहते हैं कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये आज हमें मालूम हुआ। एक लड़का एक लड़की फिल्म से आप इस गाने को एंजॉय करने जा रहे हैं। 1992 का फिल्म, नीलम कोठारी और सलमान खान के ऊपर फिल्माया कुमार सानू की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।
1: कितना प्यार तुम्हें करते हैं,
0: क्या बात है भाई, कुमार सानू की आवाज

कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, एक लड़का एक लड़की फिल्म से 1992। ये फरमाइश आई थी बैंगलोर से राजेश मीना जी की, और वक्त है अगली फरमाइश की तरफ चलने का। अगली फरमाइश है राजेश कुमार शुक्ला जी की, जो सुनना चाहते हैं कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला। आशा जी की आवाज़ में है, यानी कि लता जी की बहन की आवाज़ में है। तो भैया आइए इनकी आवाज़ को इन्जॉय करते हैं, आशा जी को याद करते हैं, प्लस इस बेहतरीन से नगमे को इन्जॉय करते हुए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो होने वाली है काजल जी की, राजू सलमानी जी की, अल्फिया जी की एंड राजेश सिंह जी की, जो हमें सुनते हैं अम्बेडकर नगर से, अम्बेडकर चौराहे से।

0: झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे
1: पर। आप सुन रहे हैं कजरा मोहब्बत वाला, राजेश कुमार शुक्ला जी की फरमाइश पर। वक्त है हमारी अगली फरमाइश का, जो कि है काजल जी की, और वो सुनना चाहती हैं गुलाबी शरारा। उत्तराखंड से उत्तराखंडी सॉन्ग आप एंजॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे अगली फरमाइश राजू सलमानी जी की, जो कि है गोरी गोरे बुखड़े पे काला काला चश्मा। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: सुनरी तेरी।
1: काजल जी की फरमाइश पे आप सुन रहे हैं गुलाबी शरारा, और वक्त है अगली फरमाइश आने की, राजू सलमानी जी की फरमाइश की तरफ चलने का, और वो सुनना चाह रहे हैं गोरी गोरी मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो चश्मे को लगाते हुए गोरे गोरे मुखड़े को चेहरे को अपने आईने में देखते हुए सुहाग फिल्म से एंजॉय करते रहिए उदित जी और अलका जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो आप सुन रहे हैं राजू सलमानी जी की फरमाइश पर गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और चलते हैं अब हमारी आखिरी फरमाइश की तरफ, यानी कि हमारे शो का वक्त हो गया है अब विदा लेने का। विदा लेने से पहले हम आपको बता दें, अब्दुल मुजीम जी हमारे साथ लिख रहे हैं, सबसे बुरा एहसास अकेलापन नहीं होता बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भुला दिया जाना होता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते हैं। बेहद सच और बखूबी बात लिखी है आपने, आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं। वैसे आपको बात पता है, अगर नहीं पता है तो आज आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप बहुत सच और बहुत दिल के करीब वाली बातें लिखते हैं। एंड जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं चैट बॉक्स से, जो भी लिसनर हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, फ्रिक्वेंसी से या रेडियो गार्डन से, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ 2 घंटे तक लगातार बने हुए थे, तो ये आखिरी गाना आप सभी को डेडिकेट करते हुए मैं आपसे चाहूंगी अब इजाजत, वक्त है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। ये गाना अल्फिया जी प्लस हमारे उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने आज अपनी फरमाइश हम तक नहीं भेजी है लेकिन लगातार हमारे साथ 2 घंटे बने हुए थे। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोना शहर की धड़कन, आपकी आरजे मौजूद थी अभी तक आपके साथ। रखिए अपना ख्याल, अगला कार्यक्रम है आपका गोधूली, सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में, और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज, सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और समय हो चुका है आपके अपने गोंडा हलचल का, जिसमें हम लेकर आते हैं गोंडा से जुड़ी हुई सभी छोटी से बड़ी खबरों को। गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बेटी के घर से चले जाने से नाराज होकर एक महिला और उसकी बेटी पर हमला कर दिया। इस हमले में माँ बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना रविवार रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच में बताई जा रही है। पीड़िता राजेश कुमारी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव का एक युवक अपनी बेटी के घर से कहीं चले जाने से लेकर नाराज था। इसी नाराजगी के चलते वह अपने परिवार के दो अन्य सदस्यों के साथ उनके घर जा पहुंचा और गाली गलौज करने लग गया। जब राजेश कुमारी ने इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। शोर सुनकर जब उनकी बेटी बीच बचाव करने पहुंच तो उसे भी हमलावरों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वो भी घायल हो गई। हमले के बाद जाते समय आरोपियों ने मां बेटी को जान से मारने की भी धमकी दे दी है। प्रभारी थाना अध्यक्ष विश्वास चतुर्वेदी ने बताया कि मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला पहलवान विनेश फोगाट और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच वार पलटवार तेज हो गया है। हालांकि दोनों ने बिना एक दूसरे का नाम लिए ही इशारे इशारों में अपनी बात कहना शुरू कर दिया। यूपी के गोंडा में रविवार ब्रजभूषण सिंह के नंदिनी नगर महाविद्यालय में सीनियर नेशनल रैंकिंग कुश्ती प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इसमें विनेश फोगाट को शामिल नहीं किया गया है। इसमें विनेश फोगाट ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, जिंदगी फंसी है किसी मझधार में, जमाना ढूंढता है खामी मेरे किरदार में, जिंदगी तेरा सर सदा बुलंद रखा है, झुकाने की ताकत नहीं है किसी तलवार में। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसका जवाब देते हुए उन्होंने अपनी एक्स आईडी पर लिखा, शौहरत की बुलंदी भी पर भर का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो भी टूट सकती है। विनेश फोगाट चाहती थी नेशनल ओपन रैंकिंग इवेंट के जरिए उन्हें कुश्ती में वापस लाया जाए, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विनेश पर अनुशासनहीनता और एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन करने का आरोप लगा हुआ है। विनेश को 26 जून तक घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गोंडा के कौड़िया बाजार स्थित जैसमय माता पैड़ीबरा में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का सोमवार देर शाम विश्राम हो गया है। कथावाचक राजन जी महाराज ने 9वें दिन सुंदरकांड और श्री राम राज्याभिषेक का प्रसंग सुनाया। उन्होंने घोषणा की मार्च 2029 में इसी स्थान पर पुनः श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा के दौरान महाराज ने प्रभु श्री राम और हनुमान मिलन, बाली प्रसंग तथा जामवन संवाद को भावपूर्ण से वर्णित किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांध बनाकर कृपा की और युद्ध से पहले रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा था। गोंडा पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे टियाथोक पुलिस ने बगाही मोड़ पर राजकुमार उर्फ अन्नू कश्यप नामक अपराधी को पकड़ा और उसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अजीत कुमार रजक के प्रवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में की गई है। आरोपी राजकुमार उर्फ अन्नू कश्यप थाना कोतवाली नगर के पंजीकृत एक मामले से संबंधित था। दिनांक 12 मई 2026 को थाना इटियाथोक के उप निरीक्षक अविनाश कुमार विद्यार्थी अपनी टीम के साथ शांति व्यवस्था और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर गोंडा बलरामपुर मार्ग पर बगाही मोड़ के पास एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसके बाद आरोपी राजकुमार उर्फ अन्नू कश्यप पुत्र राम प्यारे निवासी मनिहारी थाना करनैलगंज जनपद गोंडा, उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, को बगाही मोड़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। गोंडा के रिजर्व पुलिस लाइन को उत्कृष्ट प्रबंधन और गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र मिला। मंगलवार देर शाम पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल ने DGP राजीव कृष्ण से मुलाकात की और उन्हें यह प्रमाण पत्र भेंट किया। ये प्रमाण पत्र रिजर्व पुलिस लाइन को उनकी बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रणाली, अनुशासन, संसाधनों की प्रभावी प्रबंधन और गुणवत्ता मानकों के सफल अनुपालन के लिए प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि आधुनिक कार्य प्रणाली, बेहतर प्रबंधन प्रणाली और प्रशिक्षण गुणवत्ता के निरंतर सुधार के प्रतीक है। इस सम्मान से जनपद पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। यह कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की अध्यक्षा मीनाक्षी सिंह की प्रेरणा से और गोंडा की वामा सारथी अध्यक्षा डॉक्टर तन्वी जायसवाल की देखरेख में किया गया है। गोंडा जिले की आवास विकास कॉलोनी में स्थित मंगलम भारत गैस एजेंसी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने जांच के आदेश दिए। जिला पूर्ति अधिकारी की जांच में एजेंसी की कई बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। जांच के दौरान रिकॉर्ड और असली स्टॉक में अंतर पाया गया है। इसके अलावा कुछ LPG सिलेंडरों के डायवर्जन से जुड़ी अनियमितताएं भी सामने आई हैं। उपभोक्ताओं से मिली जानकारी यह बताती है कि गैस वितरण प्रक्रिया और रिकॉर्ड रखने में खामियां थी। जांच रिपोर्ट में इन मामलों को मार्केट डिसिप्लिन गाइडलाइंस के तहत गंभीर माना गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जांच रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने श्रावस्ती जनपद के दौरे के दौरान जन सुनवाई, विभागीय समीक्षा, निर्माण कार्यों के निरीक्षण तथा संध्या संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग कर आम जन से सीधा संवाद। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति एवं गुणवत्ता का गहन निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त ने जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ आम जन की समस्याएं सुनी तथा कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों का गुणवत्ता पूर्वक, पारदर्शी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। जन सुनवाई के दौरान आयुक्त ने संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों का विस्तृत समीक्षा भी की। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य की तैयारियों, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, राहत सामग्री की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों का समन्वय की जानकारी प्राप्त की। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ जैसी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु देवीपाटन मंडल ने लोगों की शिकायत को जल्द ही और अच्छे तरीके से समाधान करके अप्रैल महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इस सफलता पर आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये मेहनत, अच्छी निगरानी और जनता के लिए ईमानदारी से काम करने का नतीजा है। आयुक्त ने कहा कि लोगों की शिकायतों को सिर्फ कागजों पर ही खत्म ना किया जाए बल्कि उनकी समस्याओं का सही ढंग से समाधान भी निकाला जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि IGRS और अन्य माध्यमों से आने वाली शिकायतों का समय पर निपटारा किया जाए, साथ ही बिना जांच किए किसी भी शिकायत को बंद ना किया जाए। अपर आयुक्त मीनू राणा ने कहा कि शिकायतों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को लोगों से बात करके उनकी समस्या का स्थायी समाधान करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग मिलकर काम करें ताकि देवीपाटन मंडल आगे भी प्रदेश का पहला स्थान बनाए रखे। अधिकारियों ने कहा कि जनता की समस्याओं का सबसे पहला महत्व दे ताकि लोगों का प्रशासन पर भरोसा और भी मजबूत हो सके। जन्म से कटे होंठ और कटे तालू वाले बच्चे के लिए 11 मई से 15 मई तक मुफ्त पंजीकरण शिविर लगाया जाएगा। ये शिविर राष्ट्र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्माइल ट्रेन संस्था की ओर से आयोजित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संत लाल पटेल ने बताया कि जिले के साथ साथ अलग अलग ब्लॉकों में भी ये शिविर लगवाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को इलाज मिल सके। 11 मई को मनकापुर, 12 मई को तरबगंज, 13 मई को करनैलगंज, 14 मई को जिला महिला अस्पताल गोंडा, खरगोपुर, मुजैना, इटिया थोक, झंझरी और पंडरी कृपाल के ब्लॉकों के मरीज तथा 15 मई को सभी छूटे हुए व शहरी क्षेत्र के मरीजों का आकलन किया जाएगा। अपर मुख्य जिलाधिकारी डॉक्टर CK वर्मा ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके घर या आसपास कोई ऐसा बच्चा है तो उनका पंजीकरण जरूर करवाएं। पंजीकरण के बाद मरीजों का पूरा इलाज लखनऊ के हेल्थ सिटी

घड़ी मंदिर मालवीय नगर से बाबा दुखरणनाथ मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। बैठक में अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई, पीने का पानी, बिजली, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक रखने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने कहा है कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका और सफाई और लाइट व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है। वहीं पर्यटन विभाग को कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में ये भी तय किया गया कि स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी ताकि जिले की कला और सामान को बढ़ावा दिया जाए। जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत और पंचायती राज विभाग से जुड़े लंबित ऑडिट मामले की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऑडिट से जुड़े सभी जरूरी कागज को समय पर उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायत सचिव और अधिकारियों के पास ऑडिट का काम रुका हुआ है उनसे तुरंत संपर्क किया जाए और सभी रिकॉर्ड को पूरे किए जाए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि ऑडिट मामले में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने समय पर कागज उपलब्ध नहीं कराए या काम में देरी की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी लंबित मामलों की लगातार समीक्षा करें और काम समय पर पूरा करें ताकि विभाग में पारदर्शिता बनी रहे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा में परिवहन विभाग ने तेज आवाज करने वाले बुलेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाया है। यह अभियान ARTO RC भारतीया के नेतृत्व में किया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वाले वाहनों को पकड़ा गया। कुल 32 बुलेट बाइक पर चालान की कार्रवाई की गई है, जबकि नियमों का ज्यादा उल्लंघन करने पर 3 बाइकों को सीज भी कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है और लोगों को इससे परेशानी होती है। ये सड़क सुरक्षा के नियमों के खिलाफ है। ARTO ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले वाहनों पर आगे से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों में सिर्फ मानक वाले साइलेंसर का और उपकरणों का ही इस्तेमाल करें। जिलाधिकारी के निर्देश पर गोंडा की मंगलम भारत गैस प्रतिष्ठान की जांच की गई। जांच में कई गड़बड़ियां मिलने के बाद एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान गैस एजेंसी में रिकॉर्ड और असली स्टॉक में अंतर पाया गया, साथ ही कुछ गैस सिलेंडरों में गलत तरीके से दूसरी जगह भेजने का भी मामला सामने आया है। उपभोक्ताओं से पूछताछ में वितरण व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने में भी अनियमितताएं मिली हैं। अधिकारियों ने इन गड़बड़ियों की गंभीर माना है तथा प्रशासन ने एजेंसी के करीब 3,00,000 का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही एजेंसी संचालक को कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि आगे से अगर ऐसी गलती हुई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। प्रशासन ने कहा है कि गैस एजेंसी की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी तथा नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गोंडा के रिजर्व पुलिस लाइन को बेहतर व्यवस्था और अच्छे कामकाज के लिए ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र मिला है। यह प्रमाण पत्र पुलिस लाइन की अच्छी ट्रेनिंग, अनुशासन और बेहतर प्रबंधन के लिए दिया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को यह प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा सौंपा गया है। इस उपलब्धि के बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में खुशी का माहौल फैल गया है। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के लिए कई आधुनिक सुविधाएं बनाई गई हैं। इनमें आधुनिक लाइब्रेरी, आदर्श बैरक, मेस, बच्चों के लिए क्रेच, कैफे, हॉल, चिल्ड्रन पार्क तथा क्रिकेट और फुटबॉल के लिए ग्राउंड भी शामिल है। ये सभी सुविधाएं उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी के प्रेरणा से तैयार की गई है। इसमें मीनाक्षी सिंह और तन्वी जायसवाल की विशेष भूमिका रही है। गोंडा में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में जागरूक किया गया है। यह अभियान पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में चलाया गया है। अभियान के दौरान महिला पुलिस कर्मियों और एंटी रोमियो टीम ने मंदिर, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर महिलाओं और बालिकाओं से बातचीत की है। उन्हें सुरक्षा, आत्मरक्षा और पुलिस सहायता सेवाओं की जानकारी भी दी गई है। महिलाओं को साइबर अपराध से बचने के तरीके, कानून द्वारा दिए गए अधिकार और सार्वजनिक जगह पर सतर्क रहने के बारे में भी बताया गया है। महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं की समस्या सुनी और उन्हें किसी भी खतरे या परेशानी की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने की सलाह भी दी गई।
है। अभियान के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल लोगों को चेतावनी भी दी गई है ताकि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोका जा सके। पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों को भरोसा दिलवाया है कि गोंडा में पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर जो सभी महिलाओं को बताए गए हैं, जैसे कि 112 पुलिस सहायता, 1090।

महिला हेल्पलाइन 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 108 एम्बुलेंस सेवा 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 102 स्वास्थ्य सेवा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान का मकसद महिलाओं को सुरक्षित बनाने और साथ ही साथ उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना भी है। गोंडा पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने साइबर ठगी के शिकार एक युवक को 40,000 रुपए वापस करवाए। पैसे मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस का धन्यवाद किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर कवच के तहत किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार रजक के मार्गदर्शन पर थाना कोतवाली देहात की साइबर हेल्पडेस्क टीम ने कार्रवाई की है। पीड़ित अब्दुल वाहक ने शिकायत की थी कि उनके खाते से साइबर ठगों ने 44,635 रुपए निकाल लिए हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम ने बैंक से संपर्क किया और 40,000 रुपए वापस पीड़ित के खाते में पहुंचा दिए। पैसे वापस मिलने पर पीड़ित ने खुशी जताई और गोंडा पुलिस की सराहना की। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। देर होने पर ठग पैसे निकाल लेते हैं और रकम वापस मिलने की संभावना भी कम हो जाती है। सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी बातें भी पुलिस ने लोगों को बताई है, जैसे कि किसी को भी OTP, बैंक डिटेल और आधार पैन की जानकारी न दें। अनजान लिंक पर बिल्कुल न क्लिक करें। सोशल मीडिया पर निजी जानकारी शेयर करने से बचें। ऑनलाइन लेन देन में सावधानी रखें। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। पुलिस ने कहा है कि किसी भी साइबर फ्रॉड की जानकारी तुरंत बैंक, पुलिस और साइबर हेल्पलाइन पर दें। सोमवार को कृषि वैज्ञानिकों ने मनकापुर क्षेत्र का दौरा किया और किसानों को सब्जियों और अच्छी खेती के बारे में जानकारी भी दी। वैज्ञानिकों ने किसान को बताया कि सब्जी की खेती में संतुलित मात्रा में खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही पॉलिथीन मल्चिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करने की सलाह दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक राम लखन सिंह ने कहा कि तरोई और दूसरी सब्जियों में अच्छे बीज भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और कृषि विश्वविद्यालयों से मिल सकते हैं। उन्होंने किसानों को मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद डालने की सलाह दी है ताकि फसल की अच्छी पैदावार हो सके। वैज्ञानिकों ने बताया कि पॉलिथीन मल्चिंग से खेत में खरपतवार कम उगते हैं और सिंचाई के लिए भी कम पानी की जरूरत पड़ती है। इससे खाद और उर्वरक का सही उपयोग होता है और फसल भी ज्यादा होती है। गोंडा जिले के तरबगंज थाना क्षेत्र में एक 14 साल की किशोरी का अपहरण का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक पर किशोरी को भगाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार रात आरोपी रईस उनकी बेटी को अपने साथ ले गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बेटी के साथ 11 थान जेवर और 70,000 रुपए नगद भी ले गया है। तरबगंज कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और किशोरी की तलाश भी जारी है। गोंडा के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में किराए को लेकर के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दो लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले की शुरू से जांच की। जानकारी के अनुसार बालूपुर का निवासी प्रेम कुमार तिवारी के भाई राजू तिवारी का ई रिक्शा चालक से किराए को लेकर के विवाद हो गया था। आरोपी ने कहा कि ई रिक्शा चालक ज्यादा किराया मांग रहा था, इसीलिए गाली गलौच हो गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोंडा के इटिया थोक कोतवाली क्षेत्र में मदनपुरवा गांव में दीवार बनाने को लेकर के दो पक्षों में भारी मारपीट हुई। घटना में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए जिनमें एक महिला और एक युवती भी शामिल है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये घटना सोमवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार गांव में जमीन के एक नंबर को लेकर दोनों पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। सोमवार को एक पक्ष के बल्लू सिंह विवादित जमीन पर दीवार, इसी दौरान दूसरे पक्ष के कांति सिंह ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पक्ष में कहासुनी शुरू हो गई, जो कि बाद में गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ गोंडा हलचल समाप्त हुआ।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 98 38 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
2: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। व चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
1: छाछ, लस्सी, नमक चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
2: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहने, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
1: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
2: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
1: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: अच्छा ये बताओ।
4: हाँ सर।
3: तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई नेक काम किया है?
4: हाँ बिल्कुल किया ना सर।
3: क्या किया?
4: एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे और मैंने उनके पीछे एक कुत्ता छोड़ दिया और जल्दी से उन्हें उनके घर पहुँचा दिया।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आईके श्रीवास्तव
5: और मैं आयुषी
4: लेकर हाजिर हूं गोंडा कल्चर। गोंडा की छोटी बड़ी घटनाओं से आप सभी जनपद वासियों को कराते हैं रूबरू। जनपद गोंडा में सड़क पर गिरे पेड़ से टकराकर बाइक सवार दो दोस्तों की दर्दनाक मौत। वहीं हादसे में भाजपा के जिला कार्य समिति सदस्य की गई जान, चार लोग हुए घायल।
5: गोंडा में मंगलवार बुधवार दरमियान रात करीब 1 बजे बारात से लौट रहे बाइक सवार पेड़ से टकराकर मौत हो गई। दोनों शराब के नशे में थे। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाते समय दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर महाराजगंज की।
4: गोंडा के जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय का डेमो चेक का किया गया वितरण। बता दें कि शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र, जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री अकबाल बहादुर तिवारी, माननीय सांसद गोंडा के प्रतिनिधि श्री राजेश सिंह, सांसद कैसरगंज के प्रतिनिधि श्री संजीव सिंह तथा जिला विकास अधिकारी आदि लोग मौके पर उपस्थित। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सामूहिक रूप से सुना, जिसमें शिक्षा मित्रों के योगदान और उनके मानदेय वृद्धि में संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में उपस्थित शिक्षा मित्र को बढ़े हुए मानदेय के डेमो चेक वितरण किए गए। इस दौरान अतिथियों ने शिक्षा मित्रों के समर्पण, निष्ठा और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में शिक्षा मित्रों के सम्मान से जुड़ा यह पहल उनके मनोबल को बढ़ाने वाला बताया गया है। कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अमित कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी तथा शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी आदि संबंधित लोग उपस्थित रहे।
5: गोंडा जिले में खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी का काला कारोबार चरम पर है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग द्वारा हालिया आंकड़ों में आम जनता की सेहत को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ा दी। 449 नमूने संग्रहित किए थे, इनमें से 334 नमूनों की प्रयोगशाला में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राप्त रिपोर्टों में से लगभग 172 नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, जो दर्शाता है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्री का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक।
4: जनपद गोंडा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी पहल की जा रही है। कटे ओठ व तालू वाले बच्चों के इलाज के लिए पंजीकरण शिविर 11 मई से 15 मई तक कराया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्माइल ट्रेंड संस्था के सहयोग से जन्म से कटे ओठ और कटे तालू वालों बच्चे के ऑपरेशन के लिए 11 मई से 15 मई तक निःशुल्क पंजीकरण शिविर लगेगा। बच्चों को मुफ्त इलाज का अवसर मिलेगा। CMO डॉक्टर संतलाल पटेल ने बताया कि शिविर का आयोजन जिला मुख्यालय के साथ विभिन्न ब्लॉक में किया जाएगा। ACMO डॉक्टर CK वर्मा ने बताया कि पंजीकरण के बाद चयनित मरीजों का इलाज लखनऊ के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर वैभव खन्ना की देखरेख में किया जाएगा।
5: गोंडा के कचरा बाजार थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में पिस्टल लहराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास एक 12 बोर का अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। 2 मई को घटना की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। मंगलवार को ब्रह्मचारी बाबा स्थान के पास कच्ची सड़क से आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया गया है।
4: गोंडा में श्रमिकों के योगदान को किया गया। बता दें की अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशानुसार विभिन्न ग्राम पंचायतों तथा श्रम विभाग के तत्वावधान में श्रमिकों के साथ जिला पंचायत सभागार में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्र एवं अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान अटल आवासीय विद्यालय सिसवा मनकापुर में अध्ययनरत तथा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र एवं छात्राओं एवं श्रमिकों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया है। जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान मनरेगा श्रमिक को फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र भेंट कर तथा मिष्ठान वितरण कर सम्मानित किया गया। खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति में श्रमिकों को सम्मानित करते हुए उनके परिश्रम और समर्पण की प्रशंसा की गई है। कार्यक्रमों में स्थानीय प्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल रहे।
5: गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक

देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम है आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
7: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज, 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-306।

से। वैसे इस गाने को सुन के हमें बहुत सारे लोग याद आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इशारों से हमारा दिल चुराया, लेकिन वो जिसने आपका दिल नहीं मेरा दिल भी चुरा लिया है, वो है आजकल की मूवीज़। हाँ हाँ हाँ, मूवीज़, स्पेशली कुछ 3 मूवीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगी। उन मूवीज़ के बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। अगर मैं मेकर्स की बात करूँ तो आजकल मेकर्स कमाल धमाल कर रहे हैं, और

सीरियसली बताऊं तो कुछ अलग। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है आरजे बीना के साथ आपके आरजे बीना वाले शो गुंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला में। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज है आपका स्पेशल स्पेशल, मतलब कहते ना कि फ्राइडे, फ्राइडे मींस मूवी डे। एंड मूवी डे पे अगर हम लोग बात ना करें तो मुझे लगता है कि बात ही बेकार हो जाएगी। और आज बात करने वाली हूँ मैं उस मूवी की जिस मूवी ने रिलीज होते ही सबके छक्के छुड़ा दिए। सबने सोचा कोई एमी एमी एमी एमी मूवी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी ना सिर्फ एक मैसेज है बल्कि उन लोगों के लिए एक सीख भी है जो सालों से मूवी बना रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि कंटेंट क्या होना चाहिए, सिनेमैटिक्स हैं तो वो कैसे होने चाहिए। तो आज बात करूंगी मैं एक खास फिल्म जिसका नाम है कृष्णा अवतारम द हार्ट हृदयम। ठीक है, इसका पार्ट वन रिलीज हुआ है 7 मई 2026 को। ठीक है, तो मैं आपको इस मूवी के बारे में ही बात करूंगी, इसके बारे में ही बताऊंगी क्या है एक्चुअली में इसके, मतलब लोगों ने जो कहते हैं ना कि वर्ल्ड वाइड जो इसकी जो कहते हैं ना कि प्रेजेंस है उसने इतनी ज़्यादा क्यों अपनी छाप छोड़ रखी है और क्यों लोग इतना इसको पसंद कर रहे हैं, क्या वजह है इस मूवी में, ऐसा क्या खास है, हर जगह सेंसेशन बनी हुई है, तो इसकी बात करूंगी। वैसे आजकल नीट एग्ज़ाम के कैंसिल होने से तो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी इस मूवी के बारे में जिस मूवी ने ना सिर्फ हम सबको बल्कि पूरी की पूरी बॉलीवुड को भी हिला के रख दिया है। ठीक है, कृष्णा अवतारम भाग एक द हार्ट हृदयम। ठीक है, तो ये है हार्दिक गज्जर द्वारा निर्देशित एक भव्य पौराणिक फिल्म जो कृष्ण के मानवीय और भावात्मक रूप यानी कि उनके बचपन, प्रेम, राधा के साथ रासलीला जो उनकी थी उन सबको केंद्रित करके बनाई गई है। ठीक है, सिद्धार्थ गुप्ता ने कृष्ण की भूमिका इसमें अपने शांत मुस्कान और अभिनय के साथ निभाई है। और अगर बात करूं तो इस मूवी में आपको विजुअल्स, संगीत, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो पौराणिक तथ्य हैं उन सबको एक अलग नज़रिए से दिखाया गया है। जैसे वृंदावन छोड़ने की उम्र, ये सारी चीज़ें सब एकदम अलग लेवल का है। मतलब अगर आप इसको देख लेंगे ना तो आपका देखना जो है ना वो आपको मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो चलिए अब आगे भी बताना चाहूँगी कि देखिए हमने फिल्में तो बहुत सारी देखी हैं और भगवान श्री कृष्ण पे तो बहुत सारे सीरियल्स भी बने हैं और सब में अलग अलग रूप में कृष्ण भगवान अच्छे ही लगते हैं। ठीक है, और अब श्री कृष्ण की उन्हीं लीलाओं को निर्देशित करके जब हार्दिक गुर्जर ने फिल्म बनाई है तो फिल्म जो है ये ट्रायोलॉजी है। ऐसे में पहला पार्ट आ चुका है जिसमें उनके दिल की बात हो रही है, वो जो इस दुनिया में छोड़ गए हैं। जहाँ श्री कृष्ण के दिल की बात होगी उसमें राधा, रुक्मणी, सत्यभामा सबकी बात होगी। ये फिल्म कहानी जो है ये भगवान कृष्ण के ही इर्द गिर्द घूमेगी और ना सिर्फ घूमेगी बल्कि हम सभी को कुछ ऐसे तथ्यों से भी जोड़ेगी जिनसे शायद हम बहुत दिनों से जुड़ नहीं पाए। ठीक है, और इसका रिलीज होना एक अलग दुनिया को दिखाता है। इसमें सिद्धार्थ गुप्ता के साथ साथ सुष्मिता भट्ट हैं, इसके साथ निवासिनी कृष्णन हैं, संस्कृति जैना हैं, इसके लेखक हैं हार्दिक गुज्जर, प्रकाश कपाड़िया और राम मोरी। ठीक है, निर्माता है साजन राज कुरूप और शोभा संत। ठीक है, अगर रेटिंग की बात करें तो इसको रेटिंग बहुत अच्छी मिली है, 4.5/5। और भगवान की लीलाओं को इस पूरी की पूरी जो कहते ना कृष्ण अवतारम पार्ट वन में दिखाया गया है, ना सिर्फ दिखाया गया है बल्कि महसूस कराया गया है। इसके 3 भाग निकलेंगे ऐसा कहा जा रहा है, मेकर्स बता रहे हैं। अब पहले भाग ने तो हम सभी को एकदम अलग की दुनिया दिखा दी है। यहाँ पे फिल्म शुरू होती है भालका तीर्थ से, ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्यागे थे। आगे बताया जाता है कि श्री जगन्नाथपुरी में जो कृष्ण की मूर्ति में उसमें आज भी उनका दिल धड़क रहा है, जो स्वामी जैकी श्रॉफ जो स्वामी है वो जैकी श्रॉफ बने हैं, इसमें श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण की कथा सुनाते हैं। वो विज्ञान और आस्था के बीच बहस शुरू होती है और उसी

बहस से कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद कहानी को द्वापर युग में ले जाया जाता है, जहां श्री कृष्ण सिद्धार्थ गुप्ता का रूप निभाते हुए अपने जन्म गोकुल से वृंदावन जाते हैं। द्वारिकाधीश का बनना, राधा जिसमें सुष्मिता भट्ट ने अपनी अदाकारी दिखाई है, उनसे मिलना, रुक्मणी से मिलना, सत्यभामा से मिलना, ये सब विवाह का रूप, और ये फिल्म महाभारत की शुरुआत पर ख़त्म होती है। अभी इसके दो पार्ट आने बाकी हैं जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में आपको अभिनय की अगर बात करूं तो सबका अभिनय एकदम लगेगा कि एकदम फिट है। ना बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें दिखाई गई हैं, ना ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड। जितना भी है, जो भी है, वो पर्याप्त है। सो आप लोग बताइए कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद आपका मन करता है ना कि भाई, एक इंसान जिसने बहुत बड़े पर्दे की फिल्में ना दी और वो इतना बढ़िया सा मैटर दे जाए हमको, तो क्या बात होगी। ठीक है, तो मैं चलिए आपको कृष्ण अवतारम से जुड़ी बातें बताते हुए और भी आगे ले जाऊंगी, लेकिन पहले सोच रही हूँ कि म्यूजिकल ब्रेक दे दूँ। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, प्रेम की लीला कृष्ण अवतारम से ही है, मुझे बहुत प्यारा लगा। सुनाऊंगी दो तीन गाने इसके, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं। एक सुनिधि चौहान की आवाज़ में है, एक श्रेया घोषाल की आवाज़ में, तो दोनों ही गाने मैं बैक टू बैक सुनाती हूँ, और आप लोग सुन के बताइएगा कि ये सच में कैसा लगा आपको, या मेरे हिसाब से अच्छा है, या आप लोग को भी ये मतलब जो पूरे के मतलब कहते हैं ना कि गानों से जो मैसेज देना चाह रही है फिल्म, वो दे पा रही है कि नहीं।

कृष्ण अवतारम की बात करते करते मैं थोड़ा रुक से गई थी, क्योंकि मैंने सोचा इसके म्यूजिक से भी आपको रूबरू करा दूं। लेकिन सच्ची बताऊं ना कि एक ऐसा मेकर जिसने टीवी सीरियल्स बनाए हो, महाभारत और आपके कहते हैं ना देव के देव महादेव जैसे टीवी सीरियल्स को बनाने वाला इंसान जब फिल्म बनाएगा तो क्या आपको नहीं उम्मीद थी कि इसमें टीवी सीरियल वाली वाइब आएगी? लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट अगर रिव्यू देना चाहूँ मूवी का, तो वो रिव्यू यही होगा कि पूरी की पूरी फिल्म में आपको कहीं से ये वाइब नहीं आएगी कि ये एक टीवी सीरियल मेकर ने फिल्म बनाई है, वो भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। अब देखिए, इस फिल्म की जो मेन मोटो है वो ये है, विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी को, यानी कि विज्ञान और आस्था को जोड़ना। और बिल्कुल जब जो सब चीज़ें जुड़ के चलेंगी ना तो विकास भी अच्छा होगा। अध्यात्म में भी अपनी शक्ति है और विज्ञान में भी शक्ति है, और दोनों को समझने के लिए दोनों को एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस इसी से शुरुआत होती है इस फिल्म की। और अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म हुई है 3 भाषाओं में रिलीज़, हिंदी, तमिल और तेलुगु। अच्छा, तीनों में रिलीज़ होने के फ़ायदे क्या हैं कि कोई भी अपने मतलब भाषा में इनकनेक्टेड या नॉन कनेक्टेड ना फील हो। बॉलीवुड मेकर्स ने बहुत सारी भगवान के ऊपर फिल्में तो बनाई हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद आपको सीरियसली लगेगा कि मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेहरों में भगवान को देख लेते हैं तो उन्हीं की इमेज बनी होती है, लेकिन इस फिल्म में आपको मेकर्स ने कहीं भी ये फील नहीं होने दिया है कि कृष्ण अवतारम में श्री कृष्ण का रोल करने वाला या राधा को रोल करने वाली कोई भी ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो आपको डिसअपॉइंट कर रही है। मूवी के साउंड, मूवी का जो सिनेमेटिक व्यू है, इसमें जो VFX यूज़ हुआ है, ये सारे के सारे आपको सिर्फ और सिर्फ शांति देंगे। पूरे 2.5 घंटे आप बंधे रहेंगे, पलके नहीं झपकाएंगे, हाँ आंसू ज़रूर बहेंगे। शुरुआत होती है फिल्म की उस समय से जब भगवान श्री कृष्ण अपना मतलब मनुष्य जीवन छोड़ रहे होते हैं, प्राण को त्याग रहे होते हैं बेसिकली। और कहा जाता है कि भगवान मूवी के अकॉर्डिंग मतलब जो बात है वो ये डिलीवर की गई है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय पृथ्वी पर इसलिए छोड़ा गया जिससे लोग प्रेम करें, और वो भगवान कहते हैं ना बद्रीनाथ के अंदर समाहित है, ऐसा लोगों का मानना है। और कई बार डॉक्टर्स ने चेक भी किया, उन्हें धड़कन सुनाई दिया और वो अभी तक कोमा में है। डॉक्टर्स को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान का दिल धड़क रहा है धरती पर, तो बिल्कुल भगवान थे तो साक्ष्य भी मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें, महाभारत की भी कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी, लेकिन नहीं, इसमें ज़्यादा पार्ट आपको प्रेम का ही दिखेगा और प्रेम से आपको जुड़ना है। और जो इस मूवी की जो डिमेरिट्स हैं वो मैं बता देती हूँ कि सेकेंड हाफ में मूवी थोड़ी स्लो

हो जाती है, म्यूज़िक ज़्यादा है, गाने ज़्यादा हो जाते हैं, डांस ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा कम लगता है। बाकी इस मूवी को मैं भी अगर 10 में से पॉइंट्स देना चाहूँ तो 9 पॉइंट्स तो बिना सोचे समझे, बिना मतलब कुछ भी आंख बंद करके दूंगी। तो ये मूवी जो है ना, सिर्फ मूवी है, इसके 2 पार्ट्स और आएंगे और उम्मीद है कि उसमें महाभारत और आगे की चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बताइए कि अगर कुछ अच्छा देखने का मन है तो आप लोग क्या देखेंगे कि नहीं देखेंगे। इतिहास को जब भी दिखाया जाता है बड़े पर्दे पे तो वो कुछ ना कुछ नया ही लेके आता है। और अभी मैं बात कर लेती हूँ शिवाजी की, भाई हाँ हाँ हाँ वही शिवाजी जो अभी अभी रिलीज़ हुई है और आपके प्यारे देशमुख साहब यानी कि रितेश देशमुख ने अपनी मतलब कास्ट की है और इसमें राजा शिवाजी के नाम से इस मूवी को दिखाया गया है और निर्देशन भी रितेश देशमुख का है। फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। फिल्म का निर्माण जो है जिनेलिया देशमुख और ज्योति देशपांडे द्वारा किया गया है। फिल्म में रितेश देशमुख शीर्ष भूमिका निभाते नजर आएंगे। उनके साथ संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजिकर, सचिन खड़ेकर, भाग्यश्री फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनेलिया देशमुख ये सब मुख्य किरदार के रूप में दिखेंगे। फिल्म मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज़ हुई है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको सिनेमा घरों में जाने के बाद पता चल जाएगा कि ये फिल्म कमा कितना रही है। भाई अभी तक इसने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड, पहले हफ्ते में इसने 50 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी फिल्म कैसे बन जाती है। भाई बन जाती है, बनाने वाले मेकर्स अगर अच्छे हो ना तो फिल्में बन जाती है। और जब इतिहास की बात आती है तो इंसान बस सच देखना चाहता है और सच उसे अगर दिखा दिया जाए बड़े पर्दे पे तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत है। तो चलिए हम राजा शिवाजी की तरफ से गाना भी सुन लेते हैं और आप लोग बताइए कि ये फिल्म आपने अभी तक देखी या नहीं देखी। जो भी हिस्ट्री लवर्स होंगे उनके लिए फिल्म एक मतलब कह सकते हैं कि जेम स्टोन से कम नहीं है। हम हिस्ट्री पसंद करते हैं तो हमें हिस्ट्री से जुड़े गाने देखना और हिस्ट्री से जुड़ी मूवीज़ और जो भी मतलब नई चीज़ मिल जाए हमें वो सब पसंद होता है। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गाना राजा शिवाजी से।

सो भाई, ये रही बात शिवाजी की, और शिवाजी की बात के साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर शिवाजी की बात करें तो डे वाइज इनका कलेक्शन जो रहा है, पहले दिन 11 करोड़ 35 लाख की कमाई करने वाली फिल्म, दूसरे दिन 10 करोड़ 55 लाख की कमाई करती है, तीसरे दिन कमाई हो जाती है 12 करोड़ की, और चौथे दिन 5.5 करोड़, छठे दिन 4.5 करोड़ और सातवें दिन 4 करोड़, और इसी तरह पहले हफ्ते 52 करोड़ से ऊपर की कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है, और वहीं 8वें दिन 3.5 करोड़, 9वें दिन 5.5 करोड़, 10वें दिन 6.5 करोड़ और 11वें दिन 2.5 करोड़ और 12वें दिन 2.5 करोड़ की कमाई करके राजा शिवाजी जो है वो अभी तक काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन जाती है इस मंथ की। और भाई देखिए, अगर बात करें तो यार, मतलब कुछ फिल्में हमें लगता है कि यार एवरेज ही होंगी, लेकिन जब बात हिस्ट्री की होती है ना, तो मैंने हमेशा से देखा है कि मूवीज़ एकदम रिकॉर्ड तोड़ देती हैं। सच्चाई, जब भी कोई मूवी लेके आती है अपने साथ ना, तो वो मूवी मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट एंड बेस्ट मूवी होती है। तो चलिए, मैं अब इधर की आज की मूवीज़ की बात कर लेती हूँ, इधर कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं और आप लोग के मन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इधर उधर कर रही है, उथल पुथल मचा रही हैं, लेकिन आपका मन कर रहा है कि नहीं यार, कुछ नॉलेज और हो जाए।

और नॉलेज हो जाए। तो भाई देखिए, नए नए चेहरे नई नई मूवीज़ के साथ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन भी अलग लेवल का ही होगा। तो अमेज़न प्राइम पे और इधर भी आपको OTTs पे बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। फ़िलहाल एक और मैं बात करना चाहूँगी कि पति पत्नी और वो दो, पति पत्नी और वो था, पत्नी पत्नी और पति पत्नी और वो दो, ये मूवी भी आ चुकी है सारा अली खान, वमिका गब्बी और रकुल प्रीत की और आयुष्मान खुराना की मूवी है। मज़ेदार मूवी है, आज ही रिलीज़ हुई है, 15 मतलब आज 15 तारीख है ना, आज ही रिलीज़ हुई है। और आप, मैंने तो फ़िलहाल नहीं देखी है, जहाँ तक मुझे पता है कि मूवी का जो कंटेंट है वो बढ़िया रहा है। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये मैं बता दूं कि फ़न वाली मूवी है, आपको देख के मज़ा ही आएगा। ठीक है, इसके साथ कर्तव्य सैफ अली खान की भी रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें रसिका दुगल, संजय मिश्रा, सौरभ सैफ के साथ दिख जाएंगे। ये क्राइम और थ्रिलर की, अक्सर मैंने देखा सैफ अली खान क्राइम और थ्रिलर वाली मूवी में ज़्यादा फिट बैठते हैं, तो इसलिए ये भी इधर उधर का ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करते। कहते हैं ना भाई, जिसमें मैं सेट हूँ वही करूँगा। किसी किसी की आदत नहीं होती, जिसको जो ड्रेस अच्छी लगती है वो वही पहनता है कि भाई मुझ पर यही सूट करता है, मैं तो यही पहनूंगा और मैं कुछ इधर उधर का नहीं पहनने वाला। आखिरी सवाल भी, संजय दत्त की, नमाशी चक्रवर्ती की, नीतू चंद्रा की फिल्म रिलीज़ हो चुकी है 15 मई 2026, यानी कि आज ही के आज रिलीज़ हो चुकी है। तो कुछ नया देखने का मन है तो बिल्कुल घुस जाओ थिएटर में और वीकेंड पूरा चाट डालो फिल्मों को। ठीक है, दादी की शादी भी रिलीज़ हो चुकी है 8 मई को, अगर आपने नहीं देखी है। फिलहाल आजकल ये सारी मूवीज़ बहुत ज़्यादा मज़े लेके आ रही हैं कि एक एक मूवी बीच में आई थी जिसमें वो क्या कहते हैं, एक बेटा अपने पिता की पहले शादी कर रहा था, फिलहाल दादी की शादी हो रही है। दादी की शादी करने के पीछे क्या रीज़न है तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नीतू कपिल शर्मा और सारथ सादिया के साथ ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी और ड्रामा के साथ आपको एंटरटेन करेगी, लोगों को पसंद आ रही है। इसी के साथ, मैं एक्टर नहीं हूँ, ये फिल्म अगर आपने नहीं देखी तो बिल्कुल कुछ नहीं देखा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में वैसे ही अच्छी होती हैं, इसमें चित्रांगदा सतरूपा के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की क्या एक्टिंग है, क्या मॉडलिंग, मतलब क्या बताऊँ, एकदम फिल्में कुछ है तो ना जान ले जाती हैं, तो इस टाइप की फिल्म है ये। ठीक है, एक दिन रिलीज़ हो गई है 1 मई को, सई पल्लवी और जुनैद की, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे ये फिल्म बहुत खास नहीं लगी। जुनैद की जो केमिस्ट्री है सई पल्लवी के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठी, ऐसा लग रहा था किसी को भी किसी के साथ बिठा दिया गया है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सी फिल्म आपने देखी और आपको कौन सी फिल्म कितनी ज़्यादा अच्छी लगी, और कौन सी इस वीकेंड आप देखने वाले हैं। कोई वेब सीरीज़ देखिए तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं, और मैं आगे बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कुछ ही मिनटों में। आगे चलिए गाने सुन लेते हैं आप लोग के साथ कुछ बढ़िया वाले से, और बढ़िया गानों की जब बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारे गाने तो आ ही जाते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारे गाने सुनाने का कोई ऑप्शन नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक कान में हम एक गाना सुने, दूसरे कान में दूसरा गाना? क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा है जो मतलब ऐसा कुछ कर सकता है? वैसे पति पत्नी और वो, पति पत्नी और पंगा, ऐसी बहुत सारी फिल्में बन गई है यार। मतलब क्या है, पति पत्नी से सबको क्या मतलब दिक्कत रहती है? लेकिन चलिए, हम लोग भी एंजॉय करते हैं, मूवीज़ बनेंगी तभी तो पूरा फुल एंटरटेनमेंट होगा। तो चलिए, हम भी ऐसे ही कुछ एंटरटेनिंग और कुछ मज़ेदार एनर्जेटिक मूवीज़ का इंतज़ार करते हैं, और वीकेंड में अगर ऐसी मूवीज़ रिलीज़ होती है ना तो लगता है कि कुछ बढ़िया देखने को मिल गया। तो इस फिल्म में मुझे लगता है कि पहली बार मुझे आयुष्मान के साथ दिखने वाली हैं सारा सारा सारा सारा, जी हाँ। फिलहाल चलिए एंजॉय करते हैं सारा अली खान के साथ ये मूवी। 3 हीरोइनें हैं, एक हीरो है, क्या ही गुण खिलाएंगे ये लोग, भगवान जाने।

0: सारेगामा कारवा द परफेक्ट।
1: बेकरार करके हमें यूं न चाहिए, आपको हमारी कसम लौट आई। जी हाँ, पुराने गानों को नया रूप देना हमारे बॉलीवुड का अंदाज रहा है हमेशा से, और ये अंदाज बॉलीवुड का हमें दीवाना कर देता है, क्योंकि कोई पुरानी बेडशीट को रीयूनियन करके उसको थोड़ा कलर पेंट करके नया बनाने का काम कर सकता है तो वो हमारा बॉलीवुड ही कर सकता है। तो बॉलीवुड की इस अदाकारी पर तो भाई हम लोग मर मिटते हैं, और मैं सच्ची बताऊँ कि जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी। देखिए, हर चीज़ में कोई कमी और अच्छाई तो ज़रूरी होती है, और ऐसे ही हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, चाहे वो हमारी सरकारें हों, चाहे हमारे मम्मी पापा ही क्यों ना हो, सब में कोई ना कोई अच्छाई और बुराई क्यों ना होती है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम सब में अच्छाइयाँ देखने लगेंगे ना तो दुनिया खूबसूरत लगेगी। फिलहाल चलिए, हमें तो ये याद आ रहा है कि शरारत तो हम सभी ने बहुत सारी की होगी, लेकिन एक गाना जिसके शरारत से पूरी दुनिया शरारत करना सीख गई। और धुरंधर के तो सारे गाने यार, चाहे आपका हो क्या कहते हैं कि सानू सारियां, क्या बताऊँ, इस आवाज़ को तो मैं पूरा निभा भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे से बढ़िया गाने वाले लोग पड़े हुए हैं। फिलहाल मैं आप लोग को बता देती हूँ कि आप सभी को मतलब म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और मैं आज आप लोग को कुछ म्यूज़िक सुना सुना के उनकी मूवी का नाम पूछूंगी, और जो आंसर देगा वो अपनी पसंद के गाने सुनेगा। गाने सुनने के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि कुछ ऐसे भी मतलब हमारे मेकर्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ मूवीज़ बनाई हैं बल्कि कुछ नई नई चीज़ें भी करके बताई हैं, उन सभी को बारे में आज बात होगी। लेकिन बात करने के साथ साथ कुछ जज्बातों की भी बात हो जाए, कुछ फैक्ट्स भी लेके आई हूँ मैं हमारे कुछ मेकर्स के बारे में, कुछ मतलब आप सभी के लिए कुछ अलग अंदाज वाले। तो मैं इसका धुरंधर का वो गाना गाना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा कैरोके के साथ, क्योंकि आप लोग का भी मन कर रहा होगा कि इस गाने को गा के क्यों ना ट्राई किया जाए, और मेरा भी मन कर रहा था बहुत दिन से गाने का, तो मैं चाह सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ ट्राई करूँ, और आई होप मैं निभा पाऊँगी। फिलहाल इस गाने को गाने वाले दो सिंगर्स हैं, एक फीमेल और मेल। आप लोग से सवाल यही है कि सानू सारियां ये जो गाना है धुरंधर का, ये किन दो सिंगर्स ने गाया है? ठीक है, आप जल्दी से बताइए, आप लोग बताएंगे तब तक मैं गाने सुनाते रहूँगी।

तो नीला समंदर बाहर निकालने से पहले चलिए गाना मैं सुनाती हूँ आपको। बहुत छोटी सी कोशिश, वैसे मुझे गाना आता नहीं है, ट्राई ही कर रही हूँ।

0: थे कोई ना। ओह माय गॉड, मेरी तो ब्रेथ जा रही है। सो ऐसे ऐसे गाने बनाने वालों के लिए भाई सैल्यूट करती हूँ मैं, और दिस इज़ द मैजिक ऑफ बॉलीवुड। और गुड इवनिंग गौरव, क्या लिखते हैं गौरव, के एक इंसान है जो एक समय पे दो काम से, दो कान से अलग अलग गानों को सुन सकता है, और वो है शादी में गाना बजाने वाला डीजे वाला बाबू। वो एक कान में हेडफोन लगा के दूसरा गाना सुनता है और उसके बाद गाना चेंज करता है। वाह वाह, क्या एक्सपेरिमेंट है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। ओहो, क्या बात है। एंड आंसर गेस करने की बात आई, यार मुझे खांसी आ गई, इतना डिफिकल्ट गाना था। सो हमारा गेस करने वाला आंसर जो है हमेशा से पहले, मतलब सबसे लड़कियाँ ही आती हैं, तो लड़कियों ने भाई बाजी मार ली है। और फिलहाल हमारी आशु जी ने बिल्कुल सही गेस किया है सतिंदर सरताज के साथ जैस्मिन। यार जैस्मिन सैंडल्स सैंडलास की जो आवाज़ है ना, मुझे एकदम दीवाना कर दिया। मैंने जब से ये गाना सुना है ना, तब से मैं दीवानी हो गई बंदी की। तो चलिए सुनते हैं डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: चला तो गाना बजा दूं।
1: तो वैसे आशू जी गाना कौन सा सुनने वाले हैं आप ज़रा बताइएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से अगले सवाल के लिए म्यूज़िक प्ले कर चुकी हूँ। वैसे ये गाना कौन सा है आप लोग को गेस करना है, ये गाना कौन सा है जो गेस करेगा अपनी पसंद का गाना सुनेगा। बिल्कुल भी मैं स्टार्टिंग का कुछ भी म्यूज़िक नहीं सुनाऊँगी। आप लोग की सहूलियत के लिए म्यूज़िक मैं तीसरी बार प्ले कर रही हूँ, जिससे कोई भी मुझे ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था। गौरव जी चाय आ गई है, दो कप वैसे दो चार कप चाय आ चुकी है चाटू में, तो चलिए एक एक कप चाय उठा लिया जाए और फटाक से पी लिया जाए। और कैसे हैं आप, हाल चाल बताइए अपना। और शायरी नहीं बहुत दिन हो गया आपने भेजी, और क्या बात है, इंतज़ार है आपके शायरी का। और चलिए हम सुनते हैं गाना। सुन सब सुन सुन प्यार की धुन। इसे प्यार की धुन तो वही है जो दो दिल मिला दे एक साथ। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार की धुन वुन कोई नहीं होती, बस वही होती है जिससे प्यार हो जाए। फिलहाल मुझे तो आजकल कोई भी म्यूज़िक सुना दो, बस मेलोडियस हो और सुन के वाइब आ जाए, बस वही प्यारा है। तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

भाई आंसर आ चुका है सृष्टि का, और इसके बाद हम लोग सृष्टि की फरमाइश सुनेंगे। और गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप, क्या हाल है? और बॉलीवुड या शाम में आप सभी का स्वागत है।

की धुन। फिलहाल प्यार की धुन बजाने के बाद वापस मैं आप लोगों को कोई दूसरी धुन सुनाना चाहती हूँ जो हमारे देश के बाहर है। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे गाने होते हैं, ना सिर्फ गाने, ना कुछ ऐसे मेकर्स होते हैं जो ना सिर्फ मेकर्स होते हैं बल्कि एक समय को जीते हैं, और वो समय उनके आने से फिर जिंदा हो जाता है। तो मैं फिलहाल आज बात करने वाली हूँ हमारे स्पेशल BTS बैंड की, जिन्होंने वापसी अपनी इस साल यानी कि 2026 में कर ली है, मार्च में। जी हाँ, BTS यानी कि बैंगटन बॉयज के नाम से जाना जाने वाला बैंड, जो कि दक्षिण कोरिया का विश्व प्रसिद्ध 7

सदस्यीय बॉयज का बैंड है, ठीक है। 2013 में इन्होंने शुरू किया था ग्रुप, जिसमें आरएम, जिन, सुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंग कूक शामिल थे। ये अपनी हिप हॉप शैली और कह सकते हैं कि एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के लिए फेमस थे। इनके फेमस जो क्रिएशंस हैं वो है डायनामाइट, बटर। ये मानसिक स्वास्थ्य के विषयों पर भी लिखने का काम करते थे। पूरा नाम है इनका बैंगटन सोनियोडन, इसका मतलब होता है बुलेट प्रूफ बॉय स्काउट्स, ठीक है। 13 जून 2013 को इन्होंने बिग हिट एंटरटेनमेंट के तहत नो मोर ड्रीम्स गाने से शुरुआत की थी और इसी के साथ फेमस हो गए। इनके जो फेमस, जो कहते हैं ना, इनको फैंस जो होते हैं, जो इनको समर्थक करते हैं, जैसे मुझे बहुत पसंद है तो मैं अपने आप को आर्मी कह सकती हूँ, जो भी इनको पसंद करता है वो अपने आप को आर्मी कहता है। और ये पहला के पॉप ग्रुप था, यानी कि कोरियन पॉप ग्रुप था, जिसने अमेरिका के बिलबोर्ड चार्ट में टॉप किया था। ग्रैमी अवार्ड्स में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और सैन्य सेवा में इनके जाने के बाद काफ़ी सन्नाटा सा आ गया था। फिलहाल 2026 मार्च में इन्होंने अपनी सैन्य सेवा पूरी की और कम बैक किया और फिर से एक नए अंदाज में विश्व को कुछ नए मैसेजेस देने आए। बैंड की खासियत ये थी कि ये ना सिर्फ गाने गाते थे बल्कि ये सेल्फ लव करना भी सिखाते थे। और इनका आना वापस इनके लवर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी साबित हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी BTS को प्यार करते हैं तो आप भी भाई भेज दीजिए आर्मी लिख के, क्योंकि आप अगर लवर हैं उनके तो आप भी अपने आप को आर्मी ही समझिए, BTS आर्मी, यस। सो इनकी जो लेटेस्ट एल्बम आई है उसमें इन्होंने टोटल 14 गाने रखे हैं। खास बात ये है कि ना सिर्फ इन्होंने अपने गानों को रिलीज़ किया बल्कि इस बार ये नए अंदाज में आए हैं, ठीक है। और 2026 और 2027 में इन्होंने कहा है कि ये विश्व दौरा करेंगे, जिसमें भारत सहित अन्य देशों में शो की संभावना है, यानी कि इंडिया भी ये लोग आने वाले हैं। विश्व दौरा मतलब पूरे एक साल तक ये लोग जगह जगह जाके अपने शोज करेंगे। इसके अलावा BTS जो है 26 फीफा वर्ल्ड कप में भी धमाल मचाने वाला है, ठीक है। 4 साल का ब्रेक रहा और 20 मार्च 2026 को एल्बम रिलीज हुआ, गानों के साथ वापसी हुई, वर्ल्ड टूर में आने की घोषणा हुई, इंडिया टूर भी शामिल है इसमें। BTS आर्मी यानी कि भारतीय जो आर्मी है वो भी तैयार रहेगी उन लोगों से मिलने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी बड़ी मतलब चीज़ है जिसके बारे में हम लोगों को पता तो था लेकिन इतना डीपली नहीं पता था। अब मैं BTS ने जो इस बार वापसी की उसमें कोई नई चीज़ें भी बताना चाहूँगी कि इस बार ये लोग आए तो हैं लेकिन एक नए अंदाज में आए हैं। अरे भाई, नया अंदाज कौन सा? जी हाँ, नया अंदाज वही जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मतलब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को यूनाइट करके ये सामने आए हैं और ये इनका एक कह सकते हैं कि बड़ा एक कह सकते हैं कि चेंज ओवर था जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाने वाला है। एनीवे, बदलाव ज़रूरी है लेकिन कुछ ऐसे बदलाव जिनसे हम सभी के सोचने का नज़रिया अगर बदल जाए तो वो अलग ही होगा। तो इनकी जो नई एल्बम आई उसका नाम है एरीरंग। एरीरंग बेसिकली एक लोकगीत है जो कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों में गाया जाता है और ये बेसिकली रिटर्न और रीयूनियन है दोनों जगह के फैंस के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इनका नया एल्बम जो है इन्होंने जो यूनाइट किया है दोनों कोरियाज को, साउथ नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि आर्मी में रहने के साथ इनकी वापसी जो हुई है वो एक अलग मतलब इनके अंदर मैच्योरिटी का लेवल भी बढ़ गया है। और एरीरंग आने से लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं क्योंकि भाई आपका लोकगीत गा के कोई आपको खुश कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें, जैसे मैं किसी के घर जा रही हूँ और वो मेरे पसंद की चीज़ मुझे परोस दे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मज़ा आएगा। तो BTS को मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और आप भी अगर सपोर्ट करते तो आप लोग बताइए कि आपने BTS की कौन सी एल्बम का कौन सा गाना सुन लिया है। तो फिलहाल एरीरंग को लोकगीत के तौर पे गाया जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और BTS की जो एल्बम

नंबर 29 ऐसे ऐसे करके लास्ट जो है इनका इनटू द सन, ये इनका 14th सॉन्ग है। वैसे आप लोग बताइए आपने कौन सा वाला सुना है। मैंने तो भाई एरिरंग, मुझे इसका जो टाइटल ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हाँ, जो सबसे ज़्यादा इनका बिकने वाला कहते हैं ना कि एल्बम है, उनमें से एक बन चुका है एरिरंग। तो आप भी सोचिए कि आपने कुछ नया देश के बाहर ट्राई किया या फिर नहीं। अगर आप नहीं ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि फोक सॉन्ग्स हर जगह के अच्छे होते हैं, हर जगह का म्यूज़िक अच्छा है, बस हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ एक दायरा नहीं बनाना चाहिए, अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए। बाकी गुड इवनिंग बंटी, कैसे हैं? मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और रेडियो भी सुन रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो चलिए, तो मैंने बताया था 4.17 मिनट में इनकी तकरीबन मुझे लगता है कि 4.5 मिलियन कॉपीज बिकी। ओके सॉरी, मैं आपको गलत बता रही थी, 4.5 मिलियन कॉपीज बिक गई इनकी हार्ड कॉपीज इनके म्यूज़िक एल्बम की। तो भाई ये बहुत बड़ी बात होती किसी भी, मतलब आज के टाइम में कोई हार्ड कॉपी जल्दी नहीं खरीदता है, लेकिन अगर बिक रही है इसका मतलब आपका ऑरा जो है ना वो बरकरार है। तो चलिए हम सुनते हैं सृष्टि की फरमाइश का गाना और मैं आपको सुना देती हूँ। वैसे BTS ने जो वापसी की है वो किस तारीख को की है इस साल, आपका क्वेश्चन है। आंसर जो देगा वो अपनी पसंद का गाना सुनेगा।

0: जाने कितने दिनों के बाद। मैम आंसर नहीं सुन पाई, फिर से रिपीट कर दीजिए आंसर। किसका आंसर आप पूछ रही हैं फिलहाल? आंसर आंसर आंसर, कौन सा आंसर आप सुनने की वो कर रही हैं फिलहाल? जिस म्यूज़िक को मैंने प्ले किया था वो गाना था बोडो लुकर बिटिलो लंबो लंबो चूल आमे देबे लाल गेंदा फूल। हाँ यस, ये गाना था। और इसके बाद सवाल मेरा ये था कि BTS का जो लेटेस्ट एल्बम आया है एवरी रंग, ये किस तारीख को रिलीज़ हुआ है 2026 में? तारीख बतानी थी आपको, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख बदलती ज़रूर है, क्योंकि अगर आपने स्थान लिया है कि जज्बात बदलने हैं तो जज्बात के साथ साथ तारीख भी भाई साहब बदल जाती है। और इसी तारीख के साथ मुझे याद आ रहा है एक गाना जिसके बारे में मैंने आप लोगों से एक बार जिक्र तो किया था लेकिन इसकी कहानी बताना पूरी पूरी भूल गई थी। जी हाँ, आपने गाना सुना होगा, जब प्यार के आ तो डरना क्या, जब प्यार के आ तो डरना क्या। जी हाँ, मुगले आज़म फिल्म का ये गाना बहुत ही सस्ता गाना नहीं है। जी हाँ, इस गाने को रिकॉर्ड करने वाला इंसान जिसने मौके का फ़ायदा उठा लिया और मेकर से 50 गुना पैसे ले लिए इस गाने को गाने के लिए। भाई जब कहते हैं ना मजबूरी होती है ना तो हम कुछ भी कर लेते हैं। एक कहावत हमारे चलती है, कल से मैंने कहावतें ही बोलना शुरू कर दिया है कि गर्ज पे गधे को दादा कहना। तो ये काम हमारे मेकर्स ने, मतलब मूवी मेकर्स ने भी किया। और इसी के साथ क्या कहते हैं, मुगले आज़म का ये गाना सबसे महंगा गाना बन गया फिल्म से, तो फिल्म में मतलब सबसे महंगे गानों में से एक बन गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, कोई गाना इतना महंगा क्यों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब आपको पता चल जाए कि इट्स बेसिकली फॉर द नीड देन। वैसे जो सिंगर थे उनका मानना ये था, फिलहाल मैं आपको पूरी कहानी बता देती हूँ भाई, आपके मन में क्यूरोसिटी क्यों रह जाए कि आरजबीना ने शुरुआत की और कहते ना अंजाम तक नहीं ले गए। तो देखते किसी का कॉल आया है, शायद कोई आंसर देना चाहता है, आंसर सुन लेते हैं पहले। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: पहचानी नहीं?
0: नहीं, मैं तो आपको पहचान नहीं पाई, ज़रा अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो
0: निशा जी, शुभ संध्या। आप देखिए फ़ोन पे तो चेहरा आपका आ नहीं रहा और इतनी सुरीली आवाज़ है, आपकी आवाज़ किसी सिंगर से कम तो लग नहीं रही, तो इसीलिए गेस करने में थोड़ा टाइम तो लग ही गया। चलिए बताइए, आपने आंसर गेस किया या फिर अभी नहीं?
1: मैम हमने नहीं सुना।
0: अरे तो म्यूज़िक कहाँ सुनाया? मैंने पूछा कि BTS की जो पहली एल्बम है एरी रंग, ये किस तारीख को रिलीज़ हुई, सवाल तो ये था। आप म्यूज़िक का इंतज़ार कर रही थी क्या मोहतरमा? सुनिशा जी,
1: बताएं कौन सा गाना
0: है? म्यूजिक सुनेंगी तब? अच्छा ठीक है, म्यूजिक वाले राउंड के लिए आप थोड़ा वेट करिए, मैं म्यूजिक आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ। ओके, थैंक यू। सो भाई सवाल की जब बात होती है तो हम लोग सवाल थोड़ा सा आराम से सुनने लगते हैं और इसी के साथ जो मामले है ना वो थोड़े से पेचीदे हो जाते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें तो लगी रहेंगी और लगने की बात जब मुझे याद आती है तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम गलतफहमियों के शिकार अक्सर हो जाया करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को एक तरफ कर देते हैं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोग हैं और आप लोगों से जो कनेक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो है म्यूज़िक, और म्यूज़िक यानी कि गाने, और गाने सुन सुन के ही हम लोग सीखते हैं कि यार कैसे इतिहास बना म्यूज़िक का। और इसी के साथ म्यूज़िक जो है हमेशा से ख़ास रहा है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे शादी ब्याह क्यों ना हो, सब जगह गाने जो हैं वो हमें ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। कहते हैं ना, ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। फिलहाल बात हो रही थी मुगले आज़म फिल्म के उस गाने की, जिसके लिए मैंने बताया ना कि एक सिंगर ने दोगुने पैसे मांग लिए थे और उस लेजेंड सिंगर का नाम था के आसिफ, ठीक है। तो इन्होंने सीधे 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग लिए और कहा भाई कि ये गाना तो मैं रिकॉर्ड करूँगा लेकिन इतने पैसे लूँगा। अब गाना जो था वो गाएगा कौन, इस सवाल को लेके सबसे पहले तो टेंशन लोगों को ही, मेकर्स को ही, कि गाना जो है वो मतलब तानसेन के टाइप का गाना है, और तानसेन की तरह गाना गाने वाला कौन हो सकता है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी जो थे, तो उनका ये मानना था कि इस गाने को वो, मतलब लोगों का मानना था कि वो गाना गाए, तो ठीक है, तो का करूँ सजनी आरे ना बलम ऐसे करके ठुमरियाँ गाया करते थे। और उसी के साथ उनके, कहते हैं ना, उस्ताद साहब ने भी किसी फिल्म का गाना गाने से मना कर दिया था, और के आसिफ ने कहा कि देखिए उस्ताद गाना तो आप ही को गाना पड़ेगा, और उस्ताद ने मना कर दिया था। लेकिन क्या करें, बड़े ग़ुलाम अली साहब जो थे वो इतने एक्सपेंसिव तो कभी थे नहीं, लेकिन वो गाना ये गाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि गाना भी ना गाना पड़े और मैं मना भी कर दूं, इसलिए उन्होंने 10 गुना पैसे मांग लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कोई 10 गुना पैसे दे देगा। 10 गुना पैसे देने का मतलब ये था कि पूरे 25,000 रुपये, और वो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। और उस्ताद साहब की ये रकम जो थी, उनको लगा कि कोई दे नहीं पाएगा, पर जैसे ही रकम की बात हुई तो उन्होंने कहा आप तो अनमोल हैं, आपके लिए तो इतना क्या, मैं 25 की जगह 50,000 रुपये भी इस गाने के लिए दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे बड़े ग़ुलाम अली साहब ने इस गाने को गाया। तो गाने का क्रेडिट जो जाता है वो के आसिफ को जाता है, जिन्होंने फिल्म को हिट बनाने के लिए पैसों की कीमत नहीं सोची, उन्होंने सोचा गाना जो है वो फुल टू फुल अपने अंदाज में जाना चाहिए, और जिसकी आवाज़ में गाया जाना चाहिए वही गाए। मतलब तानसेन तो मिलने से रहे थे, लेकिन हाँ, बड़े हमारे जो कहते हैं ना ग़ुलाम अली साहब थे, उन्होंने गाना गा दिया। तो इस गाने को सुन के भाई हम सभी को मज़ा तो ज़रूर आया होगा, और मैं इस गाने को सुना भी देती हूँ। और आंसर आशु जी आपका गलत है, आंसर है मार्च 2026। और आप सभी को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए था, मैंने आंसर में तारीख भी बताई थी 13 मार्च 2026। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना करें, और मैं चलिए सुना देती हूँ आपको वो लेजेंड गाना जिसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे मेकर्स को पे करने पड़े थे, और गाना था जो

हम लोग खुश नसीब है कि ऐसे लेजेंडरी गाने को हम लोग विटनेस कर रहे हैं। और अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन है, मुगले आजम फिल्म में एक्ट्रेस कौन है, सोच के बताइए।

जब प्यार किया तोड़ना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। मधुबाला एंड दिलीप कुमार इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज कपूर भी इसमें थे तो ये भी आंसर सही है, लेकिन मैंने एक्टर एंड एक्ट्रेस पूछा था, लेकिन आंसर कमल जी का भी सही है। तो गाना दोनों को ही सुनने का मौका दूंगी। सो यू गाइज, मतलब अशु जी एंड कमल जी दोनों, आप अपनी फरमाइश का गाना सुन सकते हैं। फिलहाल सविता दुबे जी कैसी हैं आप, आपका भी स्वागत है। और आज मैं एक इंसान के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके बारे में शायद आपने कभी ना सुना हो। और भाई सुनते हुए, जब गाने सुनते हैं ना हम लोग, तो मज़ा आता है। और कुछ नया ऐसा जिसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया, हमारे इतिहास में है लेकिन हमने कभी सुना नहीं, तो मैं आज उनके बारे में बताना चाहती हूँ। एक ऐसी औरत जिसके आगे शायद करोड़ों का भविष्य था, लेकिन उसने अपने एक पैशन, अपने एक सपने के लिए उस मतलब करोड़ों के भविष्य को छोड़ दिया। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ चंद्रिका टंडन जी की। क्या आपने कभी नाम सुना है चंद्रिका टंडन जी का? अगर नहीं सुना है तो जल्दी से नो नो नो टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको इनके बारे में पूरी की पूरी कहानी इनकी बता दूं। आपने सोचा होगा कि रवीना टंडन का नाम तो सुना था, लेकिन ये चंद्रिका टंडन कौन है, इनके बारे में तो कभी हमने नाम सुना ही नहीं। देखिए, कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने ना सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि हमें ये एक मैसेज दिया है कि भाई जब दुनिया कुछ नहीं कर सकती है ना, तब हम दुनिया का एक बड़ा काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई, ये आरजीबी ना क्या बता रही हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी औरत चंद्रिका टंडन है जो कि एक एंटरप्रेन्योर थी और अपना एक बड़ा कहते हैं ना कि व्यवसाय चला रही थी। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं और साथ ही साथ परोपकारी भी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ चैरिटी वगैरह करती हैं। ठीक है, चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन इनका पूरा नाम है और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार विजेता बनाया गया संगीत, एज ए संगीत कलाकार। मतलब इन्होंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस छोड़ के अपना करियर म्यूजिक की तरफ बनाया। उन्होंने मुख्य रूप से मैकिन्से एंड कंपनी की भागीदारी चुनी और उसी के साथ भारतीय अमेरिकी महिला बनी जिन्होंने व्यावसायिक उपक्रमों को शुरू किया। 2015 में चंद्रिका टंडन और उनके पति रंजन टंडन ने NYU पॉलिटिकल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, अब जिसे NYU के नाम से भी हम लोग जानते हैं, को $100 मिलियन दान दिया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भारतीय अमेरिकी द्वारा किया गया सबसे बड़ा दान माना गया। टंडन ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और अमेरिकी इंडिया फाउंडेशन को एक नया रूप दिया। अब मैं इनके बारे में बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चंद्रिका टंडन एक संगीतकार और एक गायिका भी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी, कर्नाटक और पश्चिमी परंपराओं के जो कहते ना एंशियंट म्यूज़िक है, उन सब के साथ कुछ रीमेक किया, कुछ नया बनाया। ठीक है, और जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हमारी पहचान भी नई हो जाती है। कहते हैं ना, भीड़ से हट के चलो, तो इन्होंने यही काम किया। भीड़ में भागने की शुरुआत तो की, लेकिन अपना रास्ता बदल लिया जिससे इनकी पहचान अलग हो। टंडन ने अपना पहला स्टूडियो एल्बम जो है वो सोलो कॉल 2009 में रिलीज़ किया, जिससे 2011 में समकालीन विश्व संगीत के लिए ग्रैमी नामांकन मिला। 2024 में उन्होंने अपना नवीनतम एल्बम जिसे त्रिवेणी रिलीज़ कहा किया और जिसके लिए उन्होंने अपने 70 वर्ष की आयु में श्रेष्ठ न्यूज एज एम्बिटन्स चैट एल्बम और इसी के साथ इन्हें अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार भी मिल गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रैमी पुरस्कार होता कौन सा है। भाई, ग्रैमी पुरस्कार जल्दी किसी को नहीं मिलता है एंड ये म्यूज़िक के क्षेत्र में अच्छा करने वाले लोगों को मिलता है, यानी कि ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के उद्योग में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को मिलता है। और अमेरिकन रिकॉर्डिंग एकेडमी, यानी कि रिकॉर्डिंग एकेडमी की तरफ से ये पुरस्कार दिया जाता है, ना कि ये भारतीय, बल्कि ये संगीत जगत का ऑस्कर है, समझ लीजिए। अगर आपको संगीत जगत में ग्रैमी मिला हुआ है तो आपको समझ लीजिए संगीत जगत में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 4 मई 1959 में हुई थी और विजेताओं को एक ग्रैमोफोन मिलता है जिसपे सोने की परत चढ़ी होती है, एक विशेष ट्रॉफी मानी जाती है। ठीक है, और
स्लम डॉग के लिए एआर रहमान को 2 बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। जाकिर हुसैन को शक्ति बैंड और एकल एल्बम के लिए कई बार ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। रिकी केस 3 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं। शंकर महादेवन और राकेश चौरसिया 2024 में शक्ति एल्बम के लिए ग्रैमी जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में सिर्फ इन्हीं को मिला, बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन ग्रैमी पुरस्कार एक बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो आप लोग बताइए कि क्या आपको पता था ग्रैमी पुरस्कार के बारे में? अगर नहीं तो सविता जी ने भाई लिख भी दिया, क्या बात है सविता दुबे जी, क्या बात है। तो चलिए, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान आया होता तो किनारा मिल गया होता। और बिल्कुल ज़िंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि यार लगता है कि ये वाली चीज़ ना हुई तो ना मेरी लाइफ बड़ी सही होती। और कुछ चीज़ें यार ऐसी होती हैं ना, मैं आप लोगों से बताऊँगी कि अनप्रिडिक्टेड होती हैं, और उन अनप्रिडिक्टेड चीज़ों के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, नेवर, हम कभी कुछ नहीं कर सकते, बस कह सकते हैं कि यार जो चल रहा है सही है। रंगीला गुड इवनिंग, ट्रिपल एस गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? खेले थे तो ना दिलीप, सॉरी दिलीप जी कह रही हूँ, कमल जी आप भी अपने पसंद का गाना भेज सकते हैं, और आप भी एज अ आंसर आपने भी दिया, सो यू कैन लिसन योर फेवरेट म्यूजिक।

एंड इतना सारा सुनने के बाद आप लोगों को अब मैं कह देती हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैप्पी फीमेल्स डे आपको भी। और गौरव जी लिखते हैं कि हाय आई एम बैक अगेन, शाम से पूरी रैन, आप जाने मुझे क्या समझोगे, हम तो बीना जी की बातों से ही मिल, हमें तो बीना जी की बातों से मिल जाता है चैन, और उस पर उनको गुनगुनाते सुनता हूँ, जी करता है सुनता जाऊँ अगेन अगेन एंड अगेन। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे शो गुंडा मैसे मसाला आरजे बीना वाला एंड बारी है गीत आपके नाम से सुनने की, तो आरजे सिंबल के साथ सुनिए अपने पसंद के गाने और मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलते हैं डॉक्टर लव के साथ आपके दिल के जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए। फिलहाल तूफान आएगा नहीं क्योंकि गोंडा शहर में ऑलरेडी 13 तारीख को इतना तगड़ा वाला तूफान आ चुका है कि बहुत सारी जगह तबाही मच चुकी है। फिलहाल आप बताइए कि आप भी ऐसी जगह थे जहाँ कुछ भी उड़ उड़ गया, भाई इस बार तो एक इंसान भी उड़ गया था अपने घर का टीन शर्ट पकड़ने के चक्कर में। फिलहाल आप लोग पकड़ के रहिएगा और पैरों में हो सके तो भारी जूते पहनिए जिससे उड़ने का डर खतरा कम रहे। बाय, टेक केयर।

So very very good evening and welcome in your show for my Shibidio RJ Simple who is not so simple. Stay tuned everyone, enjoy करते हैं ये वाला गाना और dedicate करती हूँ ये गाना मैं आप सभी को और अपने सभी अपनों को.

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। So, कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में खास खास बहुत खास बहुत खूबसूरत बात जज्बात जरूर चैट बॉक्स में बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही बेहतरीन सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए। डेफिनेटली जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका जज्बात आपकी यार जी सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा के लिए आपकी, और गीत तो आपके नाम से बजते ही रहेंगे और आपकी आज सिंपल बज जाती ही रहेगी। सो कैसे हैं आप सब, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एंड इस्तकबाल है अनिल वर्मा जी सैदापुर से, सबलू सावंत बोरीवली मुंबई से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, जुगल किशोर वर्मा मींस जग्गू दादा जी एमपी से, गौरव इंडिया वाले प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आप सभी का स्वागत है। सुमित मिश्रा स्टे ट्यून्ड, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, रिंकू जैन, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, विजय पाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से, क्या हाल चाल है हाँ पब्लिक। सो एंजॉय करते हैं आज की फरमाइशी महफिल का ये पहला नगमा, पहली फरमाइश। और ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई है अनिल वर्मा जी की तरफ से, जो कि हैं सैदापुर से, और उनको सुनना है गाना मेरा सनम सबसे प्यारा है आए हाय। आजकल मेरी प्लेलिस्ट में ये गाना तो जरूर बजता है दोस्तों। सो एंजॉय कर लेते हैं आशा जी कुमार सानू की आवाज में दिल का क्या कसूर का ये गाना अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए ना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑलवेज रोमांटिक हैप्पी एंड हेल्दी।

है आरज़ू तुझमें खो जाऊं मैं। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि इसी लाइन को सुनने के लिए मैंने शायद हजारों बार इस गाने को सुना होगा। सो हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा दोस्तों, किसकी फरमाइश पर? ऑब्वियसली अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि हैं सैदापुर से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो निशा पटेल नगर गोंडा से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से, उनको सुनना है गाना हम अपनी तरफ से। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानुअल का याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। और इतना ही नहीं, इनका कहना है कि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे, हम टूटे हुए दिलों को जोड़ने में मशहूर थे, जब अपना दिल टूटा तो हुनर ही भूल गए। ऐसा ही होता है, हम जिस चीज़ में मशहूर होते हैं अक्सर जो हमारा स्ट्रेंथ होता है हमारी वीकनेस ही वही बनता है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। स्टे ट्यून्ड। टडन टडन।

ये फरमाइश थी सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इस फरमाइश से आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को कुछ याद आया है। मैं बस यही इतना कहना चाहूंगी कि दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं। सबलू सावंत जी, दर्द के फूल भी खिलते हैं बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हों कुछ रोज में भर जाते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशा मिश्रा जी के लखनऊ से, उनको सुनना है गाना फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। सो एंजॉय करेंगे उदित नारायण की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनाड़ी मूवी का, सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून।

सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना जेठ की दोपहरी में पांव जले है सैया पांव जले। अगर जेठ की दोपहरी में पांव जलते हैं तो इसीलिए तो मैं आपको आपकी फरमाइशी महफिल में इवनिंग में बुलाती हूँ, क्योंकि तब तो मौसम बहुत ही ठंडा रहता है ना, और माहौल भी एकदम रंगीन रहता है, क्यों सही कहा ना। सो एंजॉय करते हैं ये समर के लिए सबसे बेहतरीन सा नगमा, थोड़ा सा एनर्जी से भरा हुआ, गोविंदा और करिश्मा कपूर का, पूर्णिमा और कुमार सानू जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सो जग्गू दादा की फरमाइश पर एमपी से जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास

बस में है निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना तेरे लिए। तो आतिफ असलम और श्रेया घोषाल का ये गाना एंजॉय करते हैं सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही बेहतरीन सा नगमा तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों बिना किसी देरी के, और अगली फरमाइश हमारे पास में है रिंकू जैन की, और उनको सुनना है गाना दिल मेरा तोड़ दिया उसने बुरा क्यों मानूं, और उसको हक है कि वो मुझे प्यार करे या ना करे। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम संतोष कुमार जी गिलौली से आपका स्वागत है, और एंजॉय कर लेते हैं हम सभी साथ में मिलकर ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड। ऑब्वियसली सबको हक है कि वो हमें प्यार करे या ना करे, क्यों दोस्तों। हर तरफ जिक्र है मोहब्बत का पर कहीं भी मोहब्बत नहीं मिलती। स्टे ट्यून्ड।

दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं, बुरा क्यों मानूं। कसूर का ये गाना अलका याग्निक की आवाज में हमने इंजॉय किया है। रिंकू जैन की फरमाइश पर बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना दिल से निकाल कर दिल खो गया। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा निगाहें मूवी का, सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम, प्रशांत शर्मा आपका स्वागत है, स्टे ट्यून्ड।

से निकल कर दिल को गई हैं। हमने इंजॉय किया है निगाहें मूवी का ये सुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि भुला पाना बहुत मुश्किल है चाहत की हकीकत को, भुला पाना बहुत मुश्किल है चाहत की हकीकत को, किसी को भूल जाने में जमाने बीत जाते हैं। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है कृष्ण कुमार मिश्रा की, गोंडा से शायद, और कृष्ण कुमार मिश्र जी को सुनना है गाना दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सो हमारे पत्रकार साहब के लिए एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा दर्द भरा नगमा निकाह मूवी का सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टर साहब जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही दर्द भरी सी गजल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण कुमार मिश्र जी की फरमाइश पर, जो कि हैं पत्रकार। और बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इनकी फरमाइश से कुछ याद आया है मुझे। बशीर बद्र जी का कहना है कि सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। रिपोर्टर साहब, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, उनको सुनना है गाना मेरी जिंदगी के मालिक। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक जी की आवाज में सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर ये गाना। स्टे ट्यून्ड।

सो बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, और इस नगमे की फरमाइश आई भी मुमताज अंसारी जी की तरफ से। इस नगमे के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज़ की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 FM गोंडा की शहर की धड़कन पर। मिलते हैं सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्यवाही का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
6: अंडर द थ्री पिलर्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले 2 दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और भीड़ में, तन्हाई में, दर्द में, रसवाई में मुझे तुम याद आते हो, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। इसकी फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी सुरेश कुमार जी की तरफ से, जो कि हैं चौक गोंडा से। चलिए एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम रजत राम चौरसिया और मनी शर्मा खुरासा गोंडा से। मुस्तफ़ा जी आपका भी स्वागत है। इसी के साथ में आशु मिश्रा जी का लखनऊ से कहना है कि कितने चेहरे हैं इस दुनिया में मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में मगर हमको एक चेहरा ही नजर आता है। दुनिया को हम क्यों देखें, उसकी याद में सारा वक्त गुजर जाता है। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन दोस्तों हमारे पास में आज स्टूडियो में एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही क्यूट सी बच्ची है जो बहुत देर से आप सभी से बात करना चाह रही है, और मेरे नाक में तो उसने दम करके रखा है भाई, तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना आप लोगों से उसकी बात करवा ही दी जाए। सो हेलो, बोलो, अभी बोलो ना, अभी तो आप बोल रहे थे बोलने के लिए। आपका क्या नाम है?
1: आलना।
0: सही से बोलो, तेजी से बोलो ना।
1: आलना पांडे।
0: आपका नाम आलना पांडे है? हाँ। अच्छा, आप कितने साल के हो?
1: 9।
0: जूते 9 साल के हो, इतने बड़े हो आप। अच्छा जी, कहाँ से हो आप?
1: मैं हूँ बलारकोठी।
0: अच्छा जी, हाँ हाँ। सो आपको क्यों बोलना था, आपको कोई गाना सुनना है क्या? सो दोस्तों ये हमारे पास में एक छोटी सी लिसनर थी जो इतनी देर से मुझसे कह रही थी कि तैनु शरारत दिखावा जदो नैना लड़ावा, ये गाना मुझे सुना दो सुना दो सुना दो। सो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे बात करवाने के बाद में इसको ये गाना सुना देती हूँ। क्या आप तैयार हैं अपना ये वाला गाना सुनने के लिए?
1: हाँ।
0: कौन सा गाना, एक बार फिर से गा के सुनाना आप मुझे। अच्छा जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं कच्ची कली साड़ा मासूम चेहरा आरना पांडे की फरमाइश पर। स्टे ट्यून, बाय बाय।
1: ओके।

बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी कमल नैन जी की तरफ से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रशांत शर्मा की। उनको सुनना है गाना कोई तो साथी चाहिए, सो एंजॉय करते हैं ये गाना प्रशांत शर्मा की फरमाइश पर, और ये गाना है कसूर मूवी का, सो एंजॉय करते हैं ये नगमा। स्टे ट्यून्ड।

प्यास से जिंदगी कोई तो साथी चाहिए, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा प्रशांत शर्मा की फरमाइश पर। बढ़ते अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की, और मनीष शर्मा को सुनना है गाना अपने लिए। उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया है अपने आप को, सो एंजॉय करते हैं ये सेल्फ लव वाला फरमाइश मनीष शर्मा की तरफ से, जो कि है खुरासा गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दुआ ख्वाहिशों की दुआ हमने एंजॉय किया है ये गाना मनीष शर्मा की फरमाइश पर जो कि है खुरासा गोंडा से उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था अपने आप को। सो बढ़ते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ जिसके साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आपसे अलविदा दोस्तों। सो हमारे पास में अगली और आखिरी फरमाइश है राजेश मीना की, उनको सुनना है गाना हाँ तू है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आपसे अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑलवेज हेल्दी, स्टे ऑलवेज रोमांटिक एंड स्टे ऑलवेज हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। एंजॉय करते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद है, किसको पसंद है जरूर बताना। और सबसे प्यारी लाइन, कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है, मैं सो भी जाऊं रातों में भी लेकिन तू है मुझ में सोता नहीं है।

0: मेरी गजल को मेरी जहां फकत गजल न समझ, एक आईना है जो हरदम तेरे मुकाबिल है, वो गुजरे जमाने की बातें, वो पुरानी यादें, गजल शेर व शायरी रात की महफिल, वाह क्या बात। तो अब आप भी बनिए ना इन महफिलों का हिस्सा, हर सैटरडे टू थर्सडे अपने आरजे मनु के साथ और फ्राइडे स्पेशल आरजे अदनान के साथ, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।
1: मैं बज़्म तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था। हम दिन भर लोगों के बीच में रहते हैं, हजारों बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी खुद के लिए वक्त मिलता है? आज की शब हम आपको उस जगह ले चलेंगे जहां कोई भीड़ नहीं है, सिर्फ आप हैं और आपके तसव्वुर यानी कि कल्पनाओं की वो अंजुमन जिसे बरसों से आपने अपने दिल के किसी कोने में सजा रखा है। यहां हकीकत का दखल नहीं, सिर्फ ख्यालों की हुकूमत है। आदाब, इस्तकबाल करते हैं आपका आज के इस खास शो बहारे गजल में, आपके अपने आरजे अदनान। आज के इस शो का उन्वान है बज़्मे तसव्वुर यानी कि ख्यालों की महफिल। इसी तसव्वुर को कुछ अनवर शऊर साहब अपनी गजल में इस तरह पिरोते हैं कि मैं बज़्मे तसव्वुर में उसे लाए हुए था, जो साथ ना आने की कसम खाए हुए था, दिल जुर्मे मोहब्बत से कभी रह न सका बाज, हालांकि बहुत बार सजा पाए हुए था। हम चाहते थे कोई सुन ले बात हमारी, ये शौक हमें घर से निकलवाए हुए था, होने न दिया खुद पे मुसल्लत उसे मैंने, जिस शख्स को जी जान से अपनाए हुए था। बैठे थे शऊर आज मेरे पास वो गुमसुम, बैठे थे शऊर आज मेरे पास वो गुमसुम, मैं खोए हुए था ना उन्हें पाए हुए था।

सोचते हैं और कई बार खुद भी ख्याल आता है कि ये तसव्वुर है क्या। तसव्वुर ना कारीगरी है, जहां हम अपनी यादों के धागों से उम्मीद की रेशम बुनते हैं। बज्म का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां अपने अजीज लोग इकट्ठा हों। और देखिए ना, इस महफिल में आपके अजीज आपके ख्याल हैं। इसी जगह हम हकीकत के उस नकाब को उतार देते हैं जो हमें दुनिया के लिए पहना हुआ है। यहां तो हम वो बनते हैं जो असल में होना चाहते हैं। एक साहब ने बड़ा ही खूब कहा था, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, वो तो तसव्वुर में भी आए तो महक उठे रूह, सोचो अगर सामने होते तो क्या आलम होता। तसव्वुर की इसी कैफियत को सीमा शर्मा साहिबा अपनी इस खूबसूरत सी गजल में कुछ यूं पिरोती हैं कि लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, लैला का अगर मुझको किरदार मिला होता, मजनू सा कहानी को आधार मिला होता, सहरा में निकल जाता दरिया भी सराबों से, गर कल्पना को मेरी आकार मिला होता, पल भर की मोहब्बत में जा तक भी मैं दे देती, अफसोस नहीं होता गर प्यार मिला होता, होती ना महाभारत या कोई बगावत फिर, हकदार को जो उसका अधिकार मिला होता। अय्याश अमीरों के लड़के न बिगड़ते गर, औरत को न फिर कोई बाजार मिला होता, भूखे न भटकते फिर दिन रात परिंदे ये, जो इनको शजर कोई फलदार मिला होता। और लिखती हैं कि मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, मैं नूर जहां होती उस दौर की ऐसी माँ, गर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता, कर मुझको जहांगीरी दरबार मिला होता।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
6: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
9: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
10: नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, नादानों कम निगाह रहा बेकमाल में, किरदार से जिंदगी पे बना एक सवाल में। हर इंसान के अंदर एक फनकार छिपा होता है, और उस फनकार की एक जगह चाहिए होती है, जहां उसे कोई टोकने वाला ना हो। वही पनाहगाह है बज़्म-ए तसव्वुर। बेशक जब हकीकत की दीवारें हमें कैद करने लगती हैं, जब दुनिया की जिम्मेदारियां हमें थका देती हैं, तब हम तसव्वुर यानी इसी हुजरे कमरे की तरफ आते हैं। यहां हम हकीकत की सरहदों को लांघ कर अपनी तन्हाई में आजाद होते हैं, और यहां न कोई सही होता है न कोई गलत। यहां से मिला सुकून हमें जिंदा रखता है, और हम खुद को तैयार करते हैं अगली सुबह को सामना करने के लिए।

रात के इस मोड़ पर बज़्म-ए- तसव्वुर और भी गहरी होने लगी है। एक अजीब सी कैफियत महसूस हो रही है ना। आप जानते हैं कि हम इस महफिल में बार बार क्यों आते हैं? क्योंकि यहां वो सब कुछ मुमकिन है जो जिंदगी ने हमसे छीन लिया। यहां बिछड़े हुए यार मिलते हैं, यहां वो मोहब्बतें मुकम्मल होती है जो अधूरी रह गई, और तो और यहां के सपने पूरे होते हैं जिन्हें दुनिया ने नामुमकिन करार दिया था। ये तसव्वुर ही तो है जो हमें एक नई उम्मीद देता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका दरवाजा सिर्फ आपके पास है। आइए ये खूबसूरत सी गजल आपको उसी तसव्वुर की दुनिया में ले जा रही है। गजल कुछ यूं है कि

मेरे होंठ सीने वाले, कभी तूने ये भी सोचा, वहां खामोशी से हासिल जहां खामोशी जुबां है। हुए एक चमन में पैदा मगर अपनी अपनी किस्मत, कोई खार बन के खटका, कोई हुस्न गुलस्तां है। कोई बज्म ये ना पूछे, ये मामला है दिल का, कि जहां कदम वो रख दे वो जमी भी आसमां है। जहां कदम वो रख दे कि वो जमी भी आसमां है।

इस बज़्म-ए तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गां के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं। वैसे तो वक्त ने इशारा कर दिया है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन मुझे यकीन है बहारे गज़ल की ये महफिल आपके जहन में सजी रहेगी। जाने से पहले एक बात कि बज़्म-ए तसव्वुर को कभी वीरान मत होने दीजिएगा, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए, अपने ख्यालों की, अपनी इस बस्ती की दुनिया को आबाद रखिएगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां आपकी रूह खुल कर सांस लेती है। अपने तसव्वुर हमेशा जिंदा रखिएगा ताकि जिंदगी में अंधेरा महसूस ना हो। और जाकिर खान जाकिर साहब लिखते हैं कि इस बज़्म-ए तसव्वुर में बस यार की बातें हैं, मिज़गां के कसीदे हैं, रुखसार की बातें हैं, होंठों के दरीचों पर दिलदार की बातें हैं, पर्दा भी है पर्दे में दीदार की बातें हैं, इजहार मोहब्बत का अंदाज निराला है, इनकार के लहजे में इकरार की बातें हैं, दिन रात तसव्वुर में तस्वीर तुम्हारी है, इस पार की दुनिया में उस पार की बातें हैं, यूं कैफ नुमाया है गजलों में मेरे जैसे, आफाक की वसअत में फनकार की बातें हैं, आंखों की मेरी पढ़कर साकी ने कहा हंसकर, ईफान जरा मुश्किल में ख्वार की बातें हैं, ये इश्क तुम्हें जाकिर किस मोड़ पे ले आया, जंजीर है पैरों में झनकार की बातें हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अगले हफ्ते इसी वक्त किसी नए मौजू के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और आपकी धड़कती हुई सांसें। स्वागत है आप सभी का 89.6 FM पर। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं खौफ की दस्तक। दोस्तों, रात की दुनिया बेहद अजीब होती है। दिन में तो जो रास्ते साधारण लगते हैं, वही रात के अंधेरे में रहस्य बन जाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं रहते, वहां यादें रहती हैं, दर्द रहता है और कभी कभी रूहें भी रहती हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही हवेली की है, एक पुरानी वीरान हवेली जहां 20 साल पहले मोहब्बत को जिंदा जला दिया गया था। कहते हैं आज भी उस हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी की सिसकियां सुनाई देती हैं और कभी कभी पायल की आवाज भी, छन छन छन छन, जैसे कोई किसी का इंतजार कर रहा है। सूरज एक धार्मिक शहर काशीपुर में रहता था। सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज और शाम को मस्जिद से उठती आजान उस शहर की पहचान थी। सूरज का जीवन बाहर से बिल्कुल सामान्य था। एक साधारण नौकरी, कुछ पुराने दोस्त और बेहद शांत दिनचर्या। मगर उसके अंदर हमेशा एक अजीब सा खालीपन रहता था। उसकी जिंदगी के कई साल ऐसे थे जिसे याद ही नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा था 20 साल पहले उसे एक गहरा मानसिक आघात लगा था और उसी सदमे में उसकी याददाश्त के कुछ हिस्से हमेशा के लिए खो गए। सूरज खुद भी नहीं जानता था कि उन खोए सालों में आखिर हुआ क्या था, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, उसके सपने। हर रात वही सपना, एक पुरानी हवेली, टूटी दीवारें, जंग लगा दरवाजा और हवा में जले हुए धुंध की गंध। उस धुंध के बीच एक लड़की खड़ी होती, चेहरा जला हुआ, आंखों में दर्द, पैरों में पायल, और वो धीरे से कहती, सूरज। सूरज हर बार पसीने में भीगा हुआ उठ जाता। वो समझ नहीं पाता कि ये लड़की कौन है और ये हवेली कहाँ है, मगर सपना हर रात और साफ होता गया। कभी कभी उस लड़की की आवाज और भी करीब से सुनाई देती, तुम वापस क्यों नहीं आए सूरज, कहाँ हो तुम। सूरज के सीने में एक चुभन होती, जैसे कोई गरम सलाख उसके दिल के पार हो रही हो। वो दर्द असहनीय था, जैसे उसकी रूह का कोई हिस्सा आज भी उस आग में सुलग रहा हो। सालों तक सूरज ने इस सपने को नजरअंदाज किया, मगर एक दिन अखबार में एक खबर छपी, नूराबांध की पुरानी हवेली फिर चर्चा में। साथ में तस्वीर थी। जैसे ही सूरज की नजर उस तस्वीर पे पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। वही हवेली, वही टूटा दरवाजा, वही खिड़कियां जो वो सपनों में देखता था। उसी पल उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी, कुछ यादें लौटने लगी, टूटे हुए टुकड़ों की तरह। एक नाम, एक चेहरा और एक मुस्कान, जोया। हाँ, यही नाम तो था उसका। सूरज को धीरे धीरे याद आया कि 20 साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, जोया। वो अलग धर्म से थी। सूरज मंदिर जाने वाला लड़का था और जोया नमाज पढ़ने वाली लड़की, मगर दिल को धर्म की सीमाएं नहीं रोक पाई। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत बन गई। वे दोनों अक्सर शहर के पुराने पुल पर मिलते, घंटों बातें करते और सपने देखते कि एक दिन वे सबकी परवाह किए बिना साथ रहेंगे। मगर समाज को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों परिवारों ने सख्त विरोध किया। लोगों ने कहा, यह रिश्ता हमारे धर्म के खिलाफ है। नफरत की दीवारें खड़ी कर दी गई। फिर एक दिन सब कुछ अचानक खत्म हो गया। एक रात जोया को धोखे से नूराबाद के उस हवेली में बुलाया गया और वहां उसे जिंदा जला दिया गया। सूरज को याद आने लगा कि कैसे उसने जोया की चीखें सुनी थी, कैसे उसके हाथ उस बंद दरवाजे को पीटते पीटते लहू लुहान हो गए थे। सूरज, बचाओ मुझे, आग मुझे खा रही है। वो आवाज आज भी उसके कानों में तेजाब की तरह उतर रही थी। जब सूरज को खबर मिली और वो वहाँ पहुँचा, तब तक आग सब कुछ निकल चुकी थी। चारों ओर धुआं, चीखें और राख थी। उस भयानक दृश्य ने सूरज की याददाश्त छीन ली। वो बेहोश होकर गिर पड़ा और जब होश आया, उसे कुछ भी नहीं याद था। लेकिन अब 20 साल बाद वही हवेली उसे फिर से बुला रही थी। उस रात सूरज नूराबाद पहुंचा। डरिएगा मत, जाइएगा मत प्यारे श्रोतागण, मेरा इंतजार करिएगा, जल्द ही मिलूंगी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक और आपकी तेज होती हुई सांसें। स्वागत है आप सभी का 89.6 FM पर। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं खौफ की दस्तक। आज रात का आसमान बेरहम है दोस्तों, चांद बादलों के पीछे छुप गया है, जैसे कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। हवाओं में आज नमी नहीं है, किसी पुरानी रूह की सिसकियां घुली हुई हैं। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत का सामना करने के लिए जिसे दुनिया अंधेरा कहती है? चलिए मेरे साथ उस हवेली की ओर जहां मौत की खामोशी आज भी चिल्लाती है, जहां मोहब्बत और मौत एक ही बिस्तर पर सोते हैं। सूरज ने जैसे ही उस पुरानी हवेली का जंग लगा दरवाजा धकेला, एक ऐसी ठंडी लहर उसके बदन को चीरती हुई निगल गई, जैसे हजारों बर्फीली सुइयां एक साथ चुभी हो। चारों ओर मकड़ी के जाले नहीं थे, वो यादों के फंदे थे। धूल से सनी हुई उन तस्वीरों में आंखों से उसे ही देख रही थी। सूरज खुद से बुदबुदाया, ये जगह खाली नहीं है, यहाँ की दीवारें सांस ले रही हैं। तभी पायल की हल्की सी झंकार सुनाई दी, छन छन छन छन। सूरज के पैर जम गए, उसे लगा जैसे फर्श की लकड़ी नहीं बल्कि किसी की सूखी हड्डियां उसके जूते के नीचे चरमरा रही है। सूरज ने बोला, जोया जोया क्या तुम यहीं हो? देखो मैं वापस आ गया, उस वादे को निभाने जो बरसों पहले आग की लपटों में जल रहा था। क्या तुम मुझे सुन सकती हो, या ये मेरा वहम है जो तुम्हारी खुशबू को आज भी इस खंडहर में ढूंढ रहा है? मुझे सजा दो जोया, मुझे वो दर्द दो जो तुमने उस रात सहा था। मैं इस जिंदा लाश की तरह जीते जीते थक चुका हूँ। प्यारे श्रोतागण, डरिएगा मत, जाइएगा मत, मेरा इंतजार करिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

नंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे इशारे झुका दे सितारे मैं ही आत्मा मैं परमात्मा अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर मेरे

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सूरज ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई, पर रोशनी उस फटे हुए पर्दे पर जाकर ठिटक गई जो बिना हवा के हिल रहा था। तभी कमरे के कोने से एक ऐसी आवाज आई जो इंसान की नहीं हो सकती थी, ठंडी, फटी हुई और दर्द से लदी हुई। सूरज की टॉर्च की रोशनी में दीवार पे चिपकी हुई काली राख किसी इंसानी साए की तरह हिलने लगी। जोया की रूह ने बोला एक अजीब गूंज के साथ, तुमने मुझे ढूंढ लिया सूरज। 20 साल मैंने इस अंधेरे को पिया है, मेरी खाल जलकर राख हो गई, मेरी आंखें धुंध में खो गई, पर तुम्हारी याद वो आज भी मेरे सीने में दहक रही है। क्या तुम सह पाओगे उस चेहरे को जिसे तुमने आखिरी बार खूबसूरती की मूरत कहा था? देखो देखो, क्या मुझे अब तुम देख सकोगे, या मेरी जली हुई खाल को देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी? सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस दीवारों पर उसका साया बड़ा होता जा रहा था। और तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ, वो हाथ जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था, जिसमें जली हुई मांस की गंध आ रही थी। सूरज को महसूस हुआ कि उसकी शर्ट की जगह काली पड़ रही है जहां जोया ने उसे छुआ था। दर्द ऐसा था जैसे कोई जलता हुआ कोयला उसके कंधे पर रख दिया गया हो। जाइएगा मत, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, जल्दी मिलेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: जोया की रूह अब उसके ठीक सामने थी। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून की तरह लाल, पर उनमें आंसू बह रहे थे। सूरज घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा, जोया मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो। मैं उस रात तुम्हें उस आग से नहीं निकाल पाया, पर मैं अपनी रूह को रोज उसी आग में जलते हुए देखता हूँ। ये जुदाई की मौत से बदतर है जोया। देखो मेरे हाथ, ये आज भी उसी आग की जलन को महसूस कर रहे हैं। मुझे अपने साथ ले चलो इस दुनिया की नफरत से दूर, जहाँ सिर्फ हम और हमारी ये अधूरी कहानी पूरी हो सके। जोया ने चीखते हुए कहा, मोहब्बत? क्या खाक मोहब्बत? जब मैं चिल्ला रही थी, जब आग मेरी हड्डियों को चोट कर रही थी, तब तुम कहाँ थे सूरज? लोग कहते हैं मौत सब मिटा देती है, पर देखो मेरी नफरत ने मौत को भी हरा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें पल पल मारूंगी, ताकि तुम जान सको कि तड़प कर मरना क्या होता है। क्या तुम तैयार हो मेरे साथ इस राख की सेज पर सोने के लिए? यहाँ सिर्फ दर्द है सूरज, सिर्फ दर्द, अंतहीन पीड़ा। हवेली का कोना कोना थरथराने लगा, खिड़कियों के कांच टूटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत सब कुछ तबाह करना चाहती हो। बाहर आसमानी बिजली कड़की और हवेली की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। जोया ने सूरज का गला अपने कांपते हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां सूरज की खाल में धस रही थी और उंगली के निशान से धुआं निकल रहा था। जोया ने कहा, अगर अब हाथ छोड़ा तो कयामत के दिन भी हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे। बोलो, क्या तुम मेरी इस जली हुई रूह को गले लगाओगे? क्या तुम इस अंतहीन दर्द का हिस्सा बनोगे? सूरज ने बेहद दर्द और प्यार भरी आवाज में कहा, मैं मरने से नहीं डरता जोया, मैं तो बस तुम्हारे बिना जीने से डरता था। लो मैं आ गया हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हमारी मोहब्बत इस आग से बड़ी है। सूरज ने जोया के उस डरावने साए को कस कर गले लगा लिया। हवेली की दरारें खुद ब खुद बंद होने लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और सन्नाटा पसर गया। जब सुबह की पहली फीकी किरण उस मलबे पे पड़ी, तो वहाँ कुछ नहीं था, न शोर न रूह, बस धूल में दबी एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें जोया और सूरज एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे थे। पर गौर से देखने पे पता चला, तस्वीर में उनके चेहरों पर आज भी ताजा आंसू के निशान थे और तस्वीर के किनारों से आज भी हल्का सा धुआं उठ रहा था। तो दोस्तों, क्या ये लव स्टोरी थी या एक डरावना अंत? शायद दोनों ही। याद रखना, अगर कभी रात के अकेले में आपको जली हुई लकड़ी की गंध आए या पायल की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म होने के लिए नहीं, हमें डराने के लिए लिखी जाती हैं। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। खौफ तब तक है जब तक दरवाजा बंद है और दस्तक बाहर है। शब्बा खैर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

हेलो एंड वेलकम इन योर फेवरेट शो भूले बिसरे गीत विद आरजे अनोखी। नाउ यू आर लिसनिंग रेडियो ज्ञानस्ली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मुसर्रत नजीर। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। आज के अंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक खूबसूरत आंखों, दिलकश चेहरे और दराज कद्र की मालकिन, अदाकारा और प्लेबैक के साथ साथ फोक सिंगर मुसर्रत नजीर ख्वाजा से। आज हम इनकी कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले पंजाबी विवाह में गाया जाने वाला बेहद खूबसूरत और प्रचलित गीत इन्हीं की आवाज में।

श्रोताओं, आपको बता दूं कि 60 के दशक की खासा प्रचलित और हर दिल अजीज अदाकारा मुसर्रत नजीर ने मात्र 10 साल के उर्दू और पंजाबी फिल्मी करियर में ही अपनी खास जगह बना ली। इनके जिंदगी के बाकी पन्नों को खोलने से पहले क्यों ना मुसर्रत नजीर की आवाज में कुछ पंजाबी फोक सॉन्ग सुना दें आपको।

मुसर्रत नज़ीर ख्वाजा का जन्म 13 अक्टूबर 1940 में हुआ। ये एक पाकिस्तानी गायिका और फिल्म अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया है। इन्हें सिल्वर स्क्रीन के स्पार्कलिंग स्टार के रूप में भी जाना जाता है और उन्हें 1950 और 1960 के दशक के दौरान पाकिस्तान के सिनेमा में उनकी भूमिका के लिए पहचाना जाता है। कई वर्षों के बाद उन्होंने सोलो भी गाया, अधिकतर विवाह और लोकगीत इनके प्रचलित हैं।

यादें, बीते हुए दिनों की यादें दिलों में ऐसे निशान छोड़ जाती हैं कि उन्हें दोहराने से एक सुकून और चैन मिलता है। जिस जमाने में मैं फिल्मों में काम करती थी तो अच्छे अच्छे मौसीकारों के नगमे स्क्रीन पर पिक्चराइज करवाती थी तो मुझे अक्सर गाने बहुत पसंद आते और मेरा जी चाहता कि मैं उन्हें खुद गाऊं। उन मौसीकारों में से रशीद अत्रे साहब, फिरोज निज़ामी साहब और बाबा चिश्ती साहब के नाम खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। उस बेवफा का शहर है अपने वक्त का बहुत ही मकबूल गाना था, अब भी है और हमेशा रहेगा। फिल्म शहीद की तकमील के दौरान ही मेरी शादी हो गई, इस वजह से ये गीत मेरी जिंदगी में एक खास मकाम रखता है। वो दिन भी कुछ अजीब थे जब मैं ये गाना फिल्मा रही थी तो कई बार मेरी आंखें भर आईं। आज ये गीत खुद गाते हुए फिर आंसू बह निकले। इस गुलशन में मेरी यादों के फूल सजे हैं, इसमें मसरतों के हजूम हैं, हसरतों के दाग हैं और यादों के तूफान हैं।

अब बात होगी मुसर्रत नज़ीर के प्रारंभिक जीवन यानी शुरुआती जीवन की। इनके माता पिता लाहौर के कश्मीरी मूल के एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनके पिता ख्वाजा नज़ीर अहमद लाहौर नगर निगम में एक पंजीकृत ठेकेदार के रूप में काम करते थे। इनके जीवन के आरंभ में इनके माता पिता चाहते थे कि ये एक डॉक्टर बने और इन्हें यथावत सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान की। जी हाँ, यथावत सर्वोत्तम शिक्षा का मतलब है इन्हें पूरी तरह की शिक्षा दी गई जो कि इन्हें एक डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी थी। मुशर्रत ने मैट्रिक परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की और इंटरमीडिएट परीक्षा लाहौर के किंडर कॉलेज से उत्तीर्ण की।